मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 27वीं तिथि, तदनुसार 18 जुलाई सन 2026 ईस्वी, प्रातः के 5:56 हो रहे हैं। अब हमारी आज की सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में प्रसारित किए जाएंगे। समाचारों को हम अपने

आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में प्रसारित किए जाएंगे। समाचारों को हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से कल लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1,570 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है।
1: अब जैसे जालंधर है, यहाँ की पहचान खेलकूद से है, तो जालंधर कैंट स्टेशन में पंजाब की खेल परंपरा और लोक संस्कृति के दर्शन होते हैं। आप आनंदपुर साहब स्टेशन जाएंगे तो वहाँ तख्त श्री केशगढ़ साहब की झलक दिखाई देती है। कालका स्टेशन पर श्री काली मंदिर के दर्शन होंगे। यानी हमारे स्टेशन अब हमारी संस्कृति सभ्यता के प्रतीक भी हो गए हैं।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अंबाला रेल सेवा और अमृत शेरहटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता लोगों की सेवा, उनके जीवन स्तर में सुधार और प्रगति के नए अवसर सृजित करना है। उन्होंने कहा कि सरकार नागरिक देवोभव के मंत्र के साथ कार्य कर रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्यशाला सभी हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करते हुए पेंशन संबंधी मुकदमों के प्रबंधन में सुधार करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे तथा पौधारोपण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार होगा, यात्रा समय में कमी और यातायात जाम में कमी आने के साथ साथ पुणे में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीवी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। खेलों में हॉकी इंडिया आज से देश भर में कोचिंग और रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी देना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉ. दिलीप तिर्की ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आयोजित ये कार्यशालाएं देश में हॉकी की मजबूत नींव तैयार करने और खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में आज सुबह पीवी सिंधु का सामना विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन

यूफेई से होगा। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के हटने के बाद अंतिम चार में पहुंची। इसके परिणाम स्वरूप क्वार्टर फाइनल मुकाबला शुरू होने से पहले ही रद्द कर दिया गया, जिसे सिंधु को वॉकओवर मिल गया। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना इस समय आप सुन रहे हैं कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। अब सुने राजेंद्र जैन को इस भक्ति रचना में।

0: अभी आप भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। आज का चिंतन सुनिए स्वामी अशोक भारती से, विषय है समर्पण।
1: जीवन को जीने के दो ढंग है। एक तो ढंग है संघर्ष का, दूसरा ढंग है समर्पण का। संघर्ष अहंकार की यात्रा है और समर्पण खो जाने की यात्रा है। संघर्ष में सदा ही व्यक्ति तनाव में, चिंता में, दुख में, विपत्तियों में घिरा रहता है। समर्पण में व्यक्ति आनंद की अवस्था को प्राप्त करता है। मनुष्य को छोड़ दें तो सारा अस्तित्व करीब करीब समर्पण में जी रहा है। कहीं भी कर्ता होने का भाव नहीं है, सिर्फ मनुष्य में कर्ता होने का भाव है कि मैं करता हूं। और जितना ज्यादा ये बोध हमारे भीतर आता है कर्ता होने का, उतने हम दुखी हो जाते हैं। तो धर्म की यात्रा है अपने कर्ता भाव से मुक्त होना और उसकी रजा में रजामंद रहना। और जितना ज्यादा समर्पण में डूबता है साधक, उतना भार मुक्त होने लगता है, हल्का होने लगता है, क्योंकि अहंकार बहुत भार लाता है और समर्पण तुम्हें निरहंकार बना देता है, भार मुक्त कर देता है। और एक बार तुम भार मुक्त हो गए, फिर बिना प्रयास के जिंदगी चलने लगती है, फिर प्रयास की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही समझे कि चील आकाश में उड़ती है, जब वो बहुत ऊंचाई पे चली जाती है तो सिर्फ पंख फैला देती है और कुछ नहीं करती, फिर प्रयास नहीं करना होता। एक ऊंचाई पे जाकर के चील सिर्फ अपने पंखों को खोल देती है और बहने लगती है। ऐसे ही हमारा जीवन होना चाहिए। और समर्पण बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ी। और संघर्ष सदा ही अतीत और भविष्य में है। अगर संघर्ष की यात्रा हम देखें तो सदा अतीत में होती है या भविष्य में होती है, लेकिन समर्पण सदा ही वर्तमान में होता है, अभी और यही होता है। समर्पण में अतीत और भविष्य दोनों समाप्त हो जाते हैं, मात्र बचता है निखालिस वर्तमान, अभी और यही। कृष्ण जब मथुरा छोड़कर द्वारका गए, कृष्ण के आयाम में एक आयाम को ये समझे, ऐसे तो बहुआयामी व्यक्तित्व है कृष्ण। जो सारथी लेने आया था उन्हें, तो जब गोकुल छोड़कर मथुरा की तरफ जाने लगे वो, तो गोपियों को पता चला कि कृष्ण जा रहे हैं और गोपियां भावविवल होकर रोने लगी और दौड़ती दौड़ती राधा देवी के पास पहुंच गई। बोला कि हमारी बात तो कहना सुनता नहीं है, तुम जाकर उसे मनाओ कि वो जाए नहीं यहां से। राधा जाकर के रास्ते में खड़ी हो

0: गई जहां से कृष्ण का रथ गुजरता है मथुरा जाने के लिए। रास्ते में जैसे ही कृष्ण राधा को खड़े देखते हैं रास्ते में, फौरन रथ रुकवाते हैं। सारथी पूछता है उनसे, इनका क्या परिचय है? तो कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं कि दुनिया जब दुखी होती है, उलझन में पड़ती है, तो वो मेरे पास आती है, और मैं जब कोई उलझन में पड़ता हूं तो मैं इनके पास जाता हूं। स्त्री के प्रति इतना सम्मान ये कृष्ण के व्यक्तित्व में देखने को मिलता है।
1: अभी आपने चिंतन सुना स्वामी अशोक भारती से। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है।

आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। खेतिहर आवास्ती कार्यक्रम में प्रातः 7:10 पर किसान भाइयों के लिए जानकारी का विषय रहेगा, पशुओं के लिए संतुलित आहार। खेत खलिहान में दोपहर 12:50 पर किसान भाई जानकारी सुनेंगे, असली नकली खाद की पहचान कैसे करें। चौपाल में संध्या 7 जानकारी के विषय रहेंगे, सोलर पैनल सही दिशा और आंधी से सुरक्षा। किसान भाइयों के लिए जरूरी जानकारी, दीमक से बचाओ। इसके अलावा वार्ता सुनवाई जाएगी, कपास की फसल में कीट रोग नियंत्रण। वार्ताकार होंगे हरजिंदर सिंह। बाजार भाव व मौसम संबंधी जानकारी भी दी जाएगी। लोक भजन आप सुन सकते हैं 7:15 पर। मोरमंगल में 9:10 पर कलाकार होंगे सदीक खां। मानस गान आप सुना करते हैं प्रातः 7:20 पर, भाग संख्या होगी 308। सुप्रभात कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 7:30 पर। भजन आप सुन सकते हैं 8:45 पर। फिल्म संगीत का समय रहेगा 9:30, 10:00, 11:00 और दिन में 2:30। अनुरोध गीत कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 12:05 पर। फिल्मी भक्ति संगीत आप सुनेंगे 7:45 पर। एक ही फिल्म से कार्यक्रम होगा रात 8:00। सुगम संगीत का समय रहेगा 12:30 और रात 9:15। महिला जगत कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा दिन में 1:05 पर। चर्चा के विषय रहेंगे सोशल मीडिया पर वाद विवाद, समय की बर्बादी, परिवार में संवाद का महत्व, शीलन और कीड़ों से अनाज की सुरक्षा, पेट को ठंडक, जीभ को स्वाद दे चटपटे रायते। फिल्मी गीत भी सुनवाए जाएंगे। युवा साथी युववाणी कार्यक्रम सुनेंगे 5:00। सरायकी का समय रहेगा 6:05। एपिसोड संख्या होगी 10। जिले की चिट्ठी

0: 6:40 पर हम अपने जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। उर्दू सर्विस के कार्यक्रम दिन में 3 बजे, स्पोर्ट्स कैंड रात 8:30 पर, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका रात 9:30 पर और संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात 10 बजे। ये सभी कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रातः के 6:55 हो रहे हैं। अब आप समाचार सुनेंगे। समाचारों को हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः सायंकाले पंजाबस्य जालंधर नगरात् आभासीय माध्यमेन देशस्य 20 राज्येषु पुनर्विकसितानां 75 रेलस्थानकानां उद्घाटनम् अकरोत्। एतेषां स्थानकानां अमृत भारत स्थानक योजनायाः अन्तर्गतं आधुनिकीकरणं जातम्। एषा योजना विश्वस्य बृहत्तमासु स्थानक पुनर्विकास योजनासु अन्यतमा अस्ति। प्रायः 70.5 लाख करोड़ रुपयेकाणां व्ययेन विकसितानि एतानि स्थानकानि यात्रिसौविध्यैः समलंकृतानि सन्ति। पुनर्विकसितेषु स्थानकेषु पंजाबस्य जालंधर कैंट, SAS नगरम, श्री मुक्तसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब इत्येतेषां स्थानकानां समावेशः अस्ति। तद् अतिरिक्तं गुजरात, ओडिशा, दक्षिण रेल क्षेत्राणां अनेकानि स्थानकानि अपि अत्र सम्मिलितानि सन्ति। अस्मिन् अवसरे प्रधानमंत्री करटोली अंबाला रेलसेवां, अमृतसर वाराणसी संत रविदास एक्सप्रेस चेत्येताभ्यां हरितध्वजं प्रदर्शितवान्। ह्यः जालंधरे प्रधानमंत्रिणा लोकार्पितानि, राष्ट्राय समर्पितानि च एतानि पुनर्विकसितानि स्थानकानि एते द्वे रेलसेवे च रेलमार्गावसंरचना परियोजनानां भागाः सन्ति। एतासां परियोजनानां व्ययः 70.4 लाख करोड़ रुपयेकाधिकः अस्ति। अवसरेस्मिन् प्रधानमंत्री अवदत् यत् 75 पुनर्विकसित रेलस्थानकानां उद्घाटनं भारतीय रेल विभागस्य विगतेषु कतिपय वर्षेषु अभवत्, तीव्र परिवर्तनस्य द्योतकं च अस्ति।
2: केंद्र की भाजपा सरकार की भी प्राथमिकता है भारत के हर नागरिक की सेवा, भारत के हर नागरिक का जीवन आसान बनाना और उसे आगे बढ़ने के लिए नए नए अवसर उपलब्ध कराना, और इसलिए हम नागरिक देवो भव इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
1: पूर्वाह्ने एव प्रधानमंत्री हरियाणा राज्यस्य जिंद रेल स्थानकात् भारतस्य प्रथमाय हाइड्रोजन इत्यनेन चालित रेलयानाय अपि हरितध्वजं प्रदर्शितवान्। एतत् रेलयानं जिंद सोनीपत रेलस्थानकयोः मध्ये संचरिष्यति। अथ 91 किलोमीटर मिता दूरता प्रायः द्विहोरायां पूर्णं करिष्यति। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ह्यः एस्टोनिया देशस्य राजधान्यां ताल्लिन नगरे तत्रत्य विदेश मंत्रिणा मार्गुत साह्यकना इत्यनेन सह मेलनं विहितवान्। उभाभ्याम नेतृभ्याम भारत एस्टोनिया देशयोः मध्ये व्यापार, निवेश, अंकिकीय परिवर्तन, साइबर सुरक्षा प्रौद्योगिकी चेत्येषु क्षेत्रेषु सहयोगस्य सुदृढ़ीकरण विषये विचार विमर्श कृतः। अनन्तरं साक्यकना इत्यस्य उपस्थितौ मंत्रिणा भारत एस्टोनिया व्यापार मंचम् अपि अभिसंबोधितम्। केन्द्रीयः गृहमंत्री अमितशाहः गतरात्रौ पश्चिम बंगाल राज्यस्य त्रिदिवसीयायां यात्रायां सिलिगुड़ी इत्यत्र सम्प्राप्तवान्। सिलिगुड़ी नगरस्य बागडोगरा विमानस्थानके आगमनावधौ पश्चिम बंगालस्य मुख्यमंत्रिणा

0: सुवेन्दु अधिकारिणा तस्य स्वागतं विहितम्। श्रीशाहः अद्य जुमागाच नगरस्य सीमाचौकी इत्यत्र VSF इत्यस्य 18वां बटालियन इत्यस्य भ्रमणं करिष्यति। बैडमिंटन क्रीडायां भारतीय क्रीडिका तथा द्विवारं ओलंपिक पदक विजेत्री पीवी सिंधुः अद्य प्रातः टोक्यो नगरे जापान ओपन क्रीडायाः महिला एकलस्य उपांत्य चक्रीय स्पर्धायां चीन देशस्य चेन युफेई सम्मुखी करिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से कल 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1000

0: क्रीडायाः महिला एकलस्य उपान्त्यचक्रीय स्पर्धायां चीनदेशस्य चेन युफेई सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से कल 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1,570 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अम्बाला रेल सेवा और अमृतसर छेहरटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार नागरिक देवो भव के मंत्र के साथ कार्य कर रही है।
2: हम नागरिक देवो भव इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ये कार्यशाला सभी हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय से पेंशन संबंधी मुकदमों के प्रबंधन में सुधार करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे और हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से भी मिलेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार एजेंसी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौत की त्वरित, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। श्री तुर्क ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और हिंसा की घटनाओं के लिए जवाबदेही तय करने का आग्रह किया है। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज सुबह पीवी सिंधु का सामना विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई से होगा। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के हटने के बाद सेमीफाइनल में पहुंची हैं। और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में ये मुकाबला भारतीय समय के

0: in the semi-final of the women's singles in Tokyo this morning. Sindhu advanced to the last four after former world champion Nozomi Okuhara of Japan withdrew from her quarter-final match yesterday. And that is the end of this news bulletin.
1: यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। खेती और आवासीय कार्यक्रम में किसान भाइयों के लिए जानकारी का विषय है पशुओं के लिए संतुलित आहार।
2: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों आपनों जी को जीवन है वो आपने पशुधन गए इर्द गिर्द घूमते रहे। दूध होगी दही होगी राबड़ी होगी छाछ होगी ऐ सब को जी को मुख्य स्रोत है वो आपनों पशुधन ही तो है। तो अपने भी पशुधन ने स्वस्थ राखण खातर अच्छो बिंगो दूध को उत्पादन बनाए राखण खातर आपा भी ने के हिसाब संतुलित आहार देश का आज आपा ई बात पे चर्चा करांगा। पशुओं को जिको स्वास्थ्य है और उत्पादन है वो मुख्य आपा जिको भी बिना आहार देवा बिंगी मात्रा पर और बिंगी गुणवत्ता पर निर्भर करें। बैलों का दूध उत्पादन पे कुल लागत को लगभग 70% खर्चो आवे। इन खातर दूध उत्पादन को जिको भी लाभ है या हानि है वह अपने पशुधन ने जिकी भी आपा खुराक खुआ बैंग ऊपर निर्भर करें। कई किसान भाई अपना हिस्सा है जिका पशुओं ने आमतौर पर एक ही तरीका को चारो देवे ज्यों के वह अपना जिका पशुधन ने संतुलित आहार मिल को नहीं पावे और जिको अपनो पशु है बिंगो स्वास्थ्य तो खराब हो वह सागे सागे बिंगो दूध को उत्पादन है वो भी गिर जाए। किसान भाइयों आपा देखन भी लाग रहे हैं आजकल की शहरीकरण गए और बढ़ती हुई आबादी के कारण जिको अपने चारा के अधीन क्षेत्रफल है बाजिकिया भी धीरे धीरे घटने लाग रही है। तो इन वास्ते आज अपने वास्ते आज चीज बहुत जरूरी है कि आपा अपने पशुओं ने संतुलित आहार जरूर देवा। संतुलित आहार में भाई लोग आपा बात करें तो इसो आहार है जो अपना जिका पशु के शरीर है पशु का जिका भी शरीर का काम धंधा है जिका देखा अपना जीवन निर्वाह हो गया दूध उत्पादन हो गया या और भी जिकी जरूरी आवश्यकता है बैंग खातर आवश्यक पोषक तत्व हो गया जिया कार्बोहाइड्रेट हो गया प्रोटीन हो गया वसा खनिज और विटामिन आदि जिका है वह उचित मात्रा में बिना पूरो करें वो या पास संतुलित आहार कह देवाए नहीं। एक हुआ भाई लोग जीवन निर्वाह खातर जिको आहार हुआ है वो आहार हुआ है जिका कि अपने नाम ही समझ मान लाग रहे है कि भाई सिर्फ बिना चालन फिरन खातर और जीवन खातर जिको आप आहार देवा वो जीवन निर्वाह आहार हो जाए। उत्पादन आहार वो है भाई लोग जिका कि बिंग दूध उत्पादन बढ़ाने खातर या और भी आपा की भी प्रकार को अगर आपा कोई पशु उत्पादन ले लाग रहे हैं तो बिना बढ़ाने खातर अलग आप दे देवा जिको वो उत्पादन आहार हो गयो। एक भाई लोगों कह दे वहाँ पर प्रजनन आहार जब अपनों पशु है जिको वो ब्याह नाल हो तो भी टाइम पे भी ने जिको अलग आहार दियो जावे वो प्रजनन आहार आपा भी ने कह दे वहाँ। अब भाई लोगों कुछ आपा आवश्यक पोषक तत्व है बंग ऊपर जब आपा बात करें तो जिमें सबों पहले आपा देखा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भाई लोग मुख्य है तो आपा देखा तो अनाज में और जिको चारो है भी में ही आपा ने मिले हैं। इन मुख्य काम के हुए जिको अपने पशुओं ने वो ऊर्जा प्रदान करे और सागे सागे जिको प्रोटीन और वसा है भी ने भी पचान में मदद करे। वसा ने देखा भाई लोगों आपा तो वसा के अपने जिको पशुओं में ऊर्जा प्रदान करने खातर सारू जरूरी है और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ढाई गुना ज्यादा ऊर्जा पशुओं ने वसा दे देवे। प्रोटीन पे भाई लोगों आप बात करें तो अपने जिकी पशुधन की कोशिका है बिना बनाने खातर प्रोटीन को मुख्य योगदान है। प्रोटीन की बात करें तो अपने दाला में बांगे छिलका में दाल वाली जिकी फसल है बांगे चारो तेल वाली जिकी फसल है बांगी खड़ी में पायो जाए। दूध उत्पादन बढ़ाने खातर और बीमारियों बचाने खातर प्रोटीन भी बहुत महत्वपूर्ण है। खनिज और लवणों के ऊपर जब आप बात करें तो अपने पशुओं ने मुख्य रूप में 15 खनिज तत्वों की जरूरत होवे है। इमू की तो यह है जिका आपा ने ज्यादा मात्रा में पशु ने देना हुआ है जिन्हें आपा मुख्य खनिज लवण भी कह देवा जिया कैल्शियम हो गयो पोटेशियम हो गयो फास्फोरस सोडियम क्लोरीन मैग्नीशियम सल्फर और कई ऐसा खनिज तत्व है जिका आपा थोड़ी मात्रा में बाने दे देवा तो बाना आपा गौण खनिज लवण भी कह देवा जिया आयरन हो गयो कॉपर हो गयो मैग्नीज हो गयो जिंक हो गयो कोबाल्ट हो गयो आयोडीन हो गयो और सिलिकन। खनिज तत्व जिका हुआ है वह अपने पशु के शरीर खातर बहुत ही जरूरी हुआ है। पशुओं की हड्डी और दांत है जिका वह खनिज तत्वों में बनेडा हुआ है और जिकी खून की कोशिका हुआ है बा में आंगो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हुआ है। जिका खनिज तत्व हुआ है वह अपने पशु की दूध की मात्रा के सागे सागे बिंग दूध की गुणवत्ता ने भी बढ़ावे। अब भाई लोग अपने पशुओं ने जितना पोषक तत्व की जरूरत हो बीहू ज्यादा महत्वपूर्ण आप बात करें तो पानी की जरूरत हो। यदि अपने पशु के शरीर में वसा 10% कम हो जाए और प्रोटीन 50% टाइम भी कम हो जाए तो भी आपने पशु है जिको वो जिंदा रह सके। लेकिन अगर आपने पशु के शरीर में पानी है जिको वो 10% भी कम हो जाए तो आपने जिको पशु है भींगी मौत हो सके। पशुओं ने जिकी पानी की जरूरत हो बांगे शरीर के हिसाब हूँ और जी हिसाब को वो चारों खान लाग रहे हैं जितो बिंगो दूध उत्पादन है और के हिसाब को मौसम है बैंग ऊपर निर्भर करें। पशु की जिकी आम आवश्यकता हो बिंग अलावा 1 किलो दूध उत्पादन खातर गाय या भैंस ने 4-5 किलो पानी रोज की जरूरत हो। पानी है जिको वो शरीर में

0: कई काम करे हैं, जिया शरीर की कोशिका है बाने मजबूत बनावे है, बामे लचीलोपन ले गावे, सागे सागे जितनी भी रासायनिक क्रिया है बा सारी पानी के सागे ही हुए हैं। अब आप बात करा कि आपनों जिको पशु आहार है तो बिंगी के विशेषता होनी चाहिए जिको आप अपने पशु ने देन लाग रहे हैं, तो सब जरूरी बात तो इनमें हर तरीका का पोषक तत्व है वह उचित मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। इनके सागे सागे जिको भोजन है वो पाचक होने के सागे सागे जिको पौष्टिक भी होना बहुत जरूरी है। तो किसान भाइयों ऐसी सारी बातों को आप सगड़ा ने ध्यान रखना है, पर अब तो टाइम ही तो यह आज्ञा दियो। राम राम सा राम राम।
1: खेती अवस्थी कार्यक्रम में अभी किसान भाई जानकारी सुन रहे थे पशुओं के लिए संतुलित आहार विषय पर। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। लीजिए सुनिए लोक भजन। कलाकार हैं भगत सही राम।

अभी आप लोग भजन सुन रहे थे, कलाकार थे भगत सही राम। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मानसगान, भाग संख्या है 308।

मैं जानता हूं कि तुम परम चतुर हो। शत्रु से ऐसी बात करना जिससे हमारा उद्देश्य पूरा और उसका कल्याण हो। श्री राम का ये वचन हृदय में धारण कर अंगद लंका में प्रवेश करते हैं। राह में रावण के एक पुत्र से भेंट होती है जो इनके समान ही अतुलनीय बलशाली है। बातों बातों में दोनों में झगड़ा हो जाता है। रावण पुत्र ने क्रोध में इन्हें मारने को जो लात उठाई तो अंगद ने वही लात पकड़ उसे मार गिराया। पूरी लंका में भय और आतंक छा गया। बालीपुत्र अंगद तब रावण की सभा में उपस्थित होते हैं। परिचय पूछे जाने पर अंगद कहते हैं, मैं श्री राम का दूत हूं। मेरे पिता बाली तुम्हारे मित्र थे, अतः मैं तुम्हारे कल्याण की बात करने आया हूं। पुलस्त्य ऋषि के पौत्र होने के नाते तुम उत्तम कुल के वंशज हो। सभी लोकपालों तथा राजाओं को तुमने जीता है, लेकिन मदांधतावश तुम जगत जननी सीता को हर लाए हो। अब अपनी करनी के पश्चाताप स्वरूप मेरी सलाह मानकर श्री राम की शरण जाकर उनसे क्षमा प्रार्थना करो।

अभी आप मानस गान सुन रहे थे, भाग संख्या थी 308। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुप्रभात। सुप्रभात सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। दोस्तों, सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वह सामाजिक नियमों का पालन करे, सामने वाले व्यक्ति से ऐसा व्यवहार करे जिससे अपनत्व की भावना जागृत हो। हम जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करेंगे, दूसरा भी वैसा ही व्यवहार हमारे साथ करेगा। जीवन रूपी गाड़ी को सही तरीके से चलाने के लिए सद्व्यवहार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरों की भावनाओं को समझना, उनकी कदर करना और उनके साथ सच्चाई और स्नेह से व्यवहार करना व्यवहार कुशलता कहलाता है। व्यवहार कुशलता से व्यक्ति अपने लिए तो तरक्की करता है, साथ ही समाज पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। अपने से बड़े व्यक्ति का सम्मान करना, छोटों के प्रति प्रेम की भावना रखना, किसी को अपमानित न करना, लड़ाई झगड़ों से दूर रहना, मुस्कुराहट के साथ मिलना, गलती मान लेना और आगे के लिए सावधानी बरतना, ये सब गुण एक व्यवहार कुशल व्यक्ति में पाए जाते हैं।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: दोस्तों, अब हम आपको सुनवा रहे हैं भेंट वार्ता आहार विचार और आयुर्वेद विषय पर। वार्ताकार हैं लीलाधर शर्मा और इनसे भेंट कर रहे हैं नवीन सिसोदिया।
2: श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं, आज हमारे आकाशवाणी सूरतगढ़ के स्टूडियो में उपस्थित हैं वैद्य लीलाधर शर्मा। आप सेवानिवृत्त जिला आयुर्वेद अधिकारी हैं और पिछले 55 वर्षों से आप आयुर्वेद चिकित्सा द्वारा लोगों के स्वास्थ्य को जो है वो ठीक करने का कार्य कर रहे हैं। बहुत ही लंबा जो अनुभव है इनका आयुर्वेद चिकित्सा में है और हम इनके अनुभव को आप सभी श्रोताओं से साझा करना चाहेंगे। इनके जो ज्ञान और अनुभव है उससे हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार हम हमारे स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रख सकते हैं और रोगों को दूर भगा सकते हैं। सबसे पहले वैद्य लीलाधर शर्मा जी, आपका हमारे आकाशवाणी सूरतगढ़ के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद
2: वैद्य जी। हम सबसे पहले आपसे यही जानना चाहते हैं कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति जो है वो क्या है, इसका जो उद्भव है उसकी अगर हम बात करें तो वो कब हुआ, किस प्रकार हमारे ऋषि मुनियों की जो ज्ञान परंपरा है उसको हम आज आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के रूप में देखते हैं, थोड़ा विस्तार से हमारे श्रोताओं को आप ये बताइए।
3: आयुर्वेद बहुत पुरानी चिकित्सा पद्धति है और चिकित्सा पद्धति नहीं, हम तो इसे आयुर्वेद विज्ञान के रूप में मानते हैं
2: जी।
3: 5000 साल या उससे पुराना जब समुद्र मंथन हुआ तब वहाँ ये चीज भी भगवान धन्वंतरी भी प्रकट हुए थे
2: जी,
3: और उन्होंने आयुर्वेद की धीरे धीरे फैलाया, अपने शिष्य बनाए और इस चिकित्सा का गहन अध्ययन भी किया, अनुसंधान भी किया, जड़ी बूटियों ला करके रोगियों पर उसका प्रयोग भी किया
2: जी।
3: बहुत ही अच्छी पद्धति है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जीवन के अंदर ये जल्दी ही अपना रिजल्ट दे देती है।
2: हम जब आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की बात करते हैं तो तीन शब्द हम सामान्यतः सुनते हैं, वात, पित्त और कफ। हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप इन्हें बताइए कि वात क्या है, पित्त क्या है और कफ क्या है।
3: आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार तीन ही मूल इसकी बातें हैं बीमारी को पकड़ने के लिए, वात, पित्त और कफ। ये रोगी का चेहरा देख करके, नाड़ी की गति देख करके, दो चार बातें पूछ करके इसका पता लगाया जा सकता है। जैसे वात का रोगी रुखी सुखी चमड़ी होगी, बहुत ज़्यादा बोलने वाला होगा, बहुत जल्दी जल्दी काम करने वाला होगा
2: जी,
3: और अपने आप में एक जगह स्थिर बैठ नहीं सकेगा
2: जी, ये वात का रोगी होगा।
3: ये वात का रोगी हाँ, और इसके नाड़ी की जो गति है वो थोड़ी तीव्र होगी
2: जी,
3: जैसे हार्ट की गति होती है वैसे ही इसकी गति तीव्र होती है
2: जी।
3: इसी तरीके से पित्त का जो रोगी है उसकी चमड़ी पतली होगी, चमड़ी का रंग थोड़ा वाइट सफेद टाइप में होगा
2: जी,
3: और आंखें बड़ी होंगी और वो रोगी जल्दी ही अपने आप को थकान महसूस करेगा, भोजन को जल्दी ही

0: पचा नहीं पाएगा, और अंट संट खाने के बाद उसको गैस की और एसिडिटी की ये जल्दी बीमारी जकड़ लेती है।
1: जी
0: अब आते हैं अपने कफ पे। कफ का रोगी, उसके जो चमड़ी है वो चिकनी होगी,
1: जी
0: आंखें हैं वो बड़ी होंगी, बाल हैं जो काले और गुंगरालू होंगे, और बोलने में थोड़ा सा मुंह में थूक ज़्यादा आएगा
1: जी
0: और शरीर मोटा होगा। उसको हम दो चार बातें पूछ के प्राय करके कफ का रोगी सुबह पेट साफ नहीं होता, ये एक देखने वाली बात है। इसलिए भोजन जो है वो भी उसका जल्दी से हजम नहीं होता, क्योंकि उसका शरीर भारू होता है तो टाइम लगता है, इसलिए वो आदमी जल्दी पकड़ में आ जाता है।
1: जी
0: तो वात पित्त कफ तीनों को हम सामंजस्य अगर शरीर में बैठ जाए तब तो आदमी ठीक रहता है, प्रसन्न रहता है, काम करने मन रहता है, और इनका अगर सामंजस्य बिगड़ जाए तो फिर कहीं न कहीं
1: जी
0: सिर में दर्द है, कमर में दर्द है, पेट साफ नहीं होना है, भूख नहीं लगना है, तेजाब बनना है, खट्टी डकारें आनी है, जलन होना है, ये चीज़ें लगी रहती हैं जीवन के साथ।
1: जी वैद्य जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताई है। हम ये जानना चाहेंगे कि वात पित्त और कफ जो है वो क्या किसी भी इंसान में बचपन से ही बना होता है? जैसे मान लीजिए अगर कोई इंसान पैदा होता है तो क्या वो बचपन से ही वात प्रवृत्ति का है, पित्त प्रवृत्ति का है और कफ प्रवृत्ति का है, जो भी है, या फिर समय के साथ उसमें परिवर्तन भी हो सकता है? मान लीजिए आज कोई वात प्रवृत्ति का इंसान है, वो कल कुछ समय बाद हो सकता है पित्त प्रवृत्ति का हो जाए, क्या ऐसा भी होता है?
0: प्रकृति प्राय प्राय माँ के पेट में ही बन जाती है,
1: जी
0: बाद में इसको बदलना बहुत ही असंभव है। फिर भी कुछ दिनचर्या या योग या प्राणायाम या संयमी आदमी हो, चिंता फिक्र कम हो, परिवार छोटा हो, तो थोड़ा सा 10% बदलाव आ सकता है, नहीं तो
1: जी
0: ये प्रकृति है माँ के पेट में ही बन जाती है,
1: जी
0: इनको बाद में बदलना बहुत ही असंभव है।
1: जी जैसा आपने बताया कि वात पित्त और कफ के जो प्रवृत्तियां हैं वो सब आपने अलग अलग हमें समझाई,
0: और ये
1: लेकिन
0: माँ के खान पान से ही
1: अच्छा
0: बनती है
1: जी, तो क्या ऐसा भी है कि इनमें से कोई भी प्रवृत्ति किसी की ना हो?
0: ना, ऐसा कुछ नहीं है।
1: मतलब इन तीनों में से एक प्रवृत्ति तो होती ही है,
0: हाँ, एक तो होगी ही।
1: लेकिन जो शरीर में रोग जब पनपते हैं तो क्या वही प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ जाती है या बिगड़ जाती है?
0: वो ज़्यादा बिगड़ जाती है, और बिगड़ती है खान पान से,
1: हाँ जी
0: रहन से, चिंता से, नींद नहीं आने से, बार बार कोई चीज़ की फिक्र करने से, परिवार की थोड़ी सी व्याधियों से आदमी ग्रसित हो जाता है, बार बार एक चीज़ का सोचना, बार बार सोचना, तो उससे ये अपने आप पहले पित्त बिगड़ता है,
1: जी
0: फिर वात और फिर कफ का नंबर आता है।
1: क्या ये तीनों एक साथ एक ही शरीर में भी बिगड़ सकते हैं?
0: नहीं, ऐसा कुछ नहीं है,
1: हाँ जी
0: कम ज़्यादा होती है, कोई 20-30% होती है, कोई 60-70-80% होती है, ऐसा।
1: जी बिल्कुल वैद्य जी, आपका जो अनुभव है वो 50-55 साल का अनुभव है, और आप स्वयं जैसा हम बता पा रहे हैं, हमारे श्रोताओं को बताना भी चाहेंगे, आप 76 ईयर्स के हैं
0: हाँ जी,
1: और अभी भी एकदम स्वस्थ हैं, ये बहुत बड़ी बात है, और आपके पास इतना आयुर्वेद का ज्ञान है। हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आज जो है हमारी जनरेशन जो है वो 30 साल 40 साल की होती है तो उनके घुटनों में दर्द हो गया, हाथ पैर में दर्द है, थकान रहने लगती है, किसी को चक्कर आते हैं, ऐसी कौन सी दिनचर्या है जिससे हम हमारे इन सभी प्रवृत्तियों को शुद्ध रख सकते हैं, संतुलित रख सकते हैं? एक अच्छी दिनचर्या जो है वो आपके नज़र में क्या है?
0: मैंने 76 साल की उम्र में जो अनुभव किया
1: जी
0: वो सबसे पहला अनुभव है परिवार का। अगर परिवार का तालमेल सही रहे,
1: जी
0: कल की चिंता नहीं करें, तो मैं समझता हूँ आदमी सुखी रहता है, अच्छी नींद आती है, अच्छी भूख लगती है, और अच्छा समय टाइम पास होता है।
1: जी
0: लेकिन प्राय कहते हैं कि लोग पारिवारिक झमेलों में उलझ के रह जाते हैं, तो फिर उसमें उम्र आयु भी घट जाती है आदमी की, खान पान भी बदल जाता है, खान पान भी कम हो जाता है, तरह तरह की बीमारियां, जिसमें सबसे पहले पेट साफ नहीं होना और नींद नहीं आना,
1: जी
0: एक ही चीज़ को बार बार सोचना, तो वहाँ फिर भूख की भी कमी हो जाती है।
1: जी
0: मैंने मेरे जीवन में जो देखा है, सुबह जल्दी उठना, उठने से पहले प्रभु का नाम लेना, जमीन की भूमि की तरफ देखना, बार बार प्रभु का नाम लेना, ये आदमी को एक तरह से संबल देती हैं ये चीजें।
1: जी जैसा आपने बताया कि व्यक्ति की जो सोच है, उसके आसपास का जो वातावरण है

0: उसके पास जो माहौल है वो भी उसके स्वास्थ्य को जो प्रभावित करता है। तो योग को अगर हम बात करें, क्या योग के द्वारा आयुर्वेद के अनुसार ये जो प्रवृत्तियां हैं इनको सुधारा जा सकता है? क्या आयुर्वेद और योग एक दूसरे के संबल हैं?
1: हाँ, योग आयुर्वेद से ही एक तरह से देखें तो निकला है, उसी का एक पार्ट है। और अगर उसको ढंग से किया जाए, थोड़ी सी देर भी किया जाए,
0: जी
1: तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अभी एक 70 साल का रोगी आया था, सर दर्द कह रहा था,
0: जी
1: बीपी देखा तो बीपी नहीं मिला, तो
0: हाँ
1: मैंने उसको वहीं शीर्षासन करवाया,
0: हाँ जी
1: चद्दर का बना के घुमुंडिया सा, और उसको दीवार के पास मुंदा उंदा लटका दिया। मैंने कहा
0: 70 वर्ष की उम्र में आपने उनसे शीर्षासन करवाया?
1: हाँ, शीर्षासन करवाया,
0: जी
1: और बगैर दवाई, हल्की फुल्की दवाई से वो आदमी, उसको नींद भी आने लग गई, सर दर्द भी ठीक हो गया। और फिर मैं उसको मेरे साथ सुबह सुबह गौशाला ले जाने लगा।
0: जी
1: उसके घरवाली ने कहा, आपने तो कमाल ही कर दिया, ये तो चारपाई नहीं छोड़ रहे थे और आप इनको 2 किलोमीटर तक ले जा रहे हो।
0: क्या
1: मैंने कहा, देखो मैंने कैसा परिवर्तन कर दिया इस आदमी में। तो
0: जी
1: ये बहुत ही जरूरी है, योग की तरफ अगर हम थोड़ा ध्यान देवें,
0: जी
1: कहीं ना कहीं जीवन में अपने को फायदा ही देता है योग।
0: जी लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि आजकल जो सभी जो व्यस्त बहुत रहते हैं, नौकरी पर जाना हो, बच्चों को स्कूल जाना हो या कॉलेज जाना हो, तो ऐसे कौन से व्यायाम जो हैं हम हमारी दैनिक दिनचर्या में सम्मिलित कर सकते हैं, जिनको हम रोज करें और कम समय में हो जाएं और वो हमारे स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाएं?
1: सबसे पहले सूर्य नमस्कार से शुरू करना चाहिए,
0: जी
1: उसके बाद प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है,
0: जी
1: भस्त्रिका, इनसे शरीर और फेफड़े, बुढ़ापे में जो अपने फेफड़े हैं जिनमें ऑक्सीजन कम जा पाती है,
0: जी
1: उसमें बहुत बड़ा इस चीज़ का रोल है। और प्राणायाम तो बहुत ही गजब की चीज़ है। मेरे पास जो एलर्जी वाले आते हैं,
0: हाँ
1: मैं उनको सबसे पहले प्राणायाम की ही हिदायत देता हूँ, या बैठ के उनको प्राणायाम करवाता हूँ कैसे करना है आपको, और उससे लाभ भी है उन लोगों को, ऐसी बात नहीं है।
0: जी बिल्कुल। योग के साथ हम बात करना चाहेंगे वैद्य जी आहार की। आहार का चूंकि आयुर्वेद में बहुत जगह वर्णन किया जाता है कि आहार ही आदमी के स्वास्थ्य को बनाता है या बिगाड़ता है, और विपरीत आहार, सम आहार, इनकी भी बहुत चर्चा आयुर्वेद में हम सुनते हैं, तो इनके बारे में भी आप बताइए कि कौन से विपरीत आहार हैं जो आयुर्वेद के अनुसार बिल्कुल ही वर्जित हैं?
1: जैसे मूली के साथ दही लेना,
0: जी
1: छाछ लेना
0: लेकिन मैं रोकना चाहूंगा, लोग मूली का रायता खाते हैं आजकल।
1: बस वो लग गए बनाने, उससे अच्छा तो घी का रायता खाओ ना, बढ़िया रहेगा,
0: ठीक
1: कितना
0: है
1: ही
0: हाँ
1: शरीर में पित्त को शांत करेगा, भोजन को जल्दी हजम करेगा,
0: जी
1: इसलिए वो है।
0: हाँ
1: खीर के साथ भूल के भी छाछ न ले, में
0: जी
1: ये नुकसान करती है। ये जो अपना आहार विहार है, इसी पे सारा शरीर टिका हुआ है।
0: जी
1: अगर इसको हम ढंग से समझ लें, टाइम से सुबह जल्दी उठना, रात को खाना खा करके सरकने तो का भी है, भोजनांते सत पदम गच्छेत, भोजन करने के बाद 100 कदम चलना चाहिए।
0: जी
1: अगर 100 कदम चल लोगे तो वो थोड़ा सा जल्दी वहाँ से आमाशय से नीचे आंत में चला जाएगा, लीवर की तरफ चला जाएगा, तो आपको जल्दी नींद भी आ जाएगी और ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी।
0: जी
1: तो आहार विहार का तो बहुत ही, खैर बुढ़ापे में तो इसका कहना ही क्या है,
0: हाँ
1: अगर
0: हाँ
1: हम इसको अपना लें, थोड़ा समझ लें, थोड़ा सा इसको करने लग जाएं, तो बहुत बड़ा फायदा मिलेगा।
0: बिल्कुल वैद्य जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि कोई भी अगर रोगी आपके पास आता है और वो आयुर्वेद दवाइयाँ जो है आप अगर उसको लिख कर देते हैं, वो शुरू करता है, तो आयुर्वेद दवाइयों में जो मुख्य परहेज जो होते हैं वो बहुत मायने रखते हैं, तो क्या मुख्य परहेज जो है आयुर्वेद दवाई लेने वाले को ध्यान में रखने चाहिए?
1: आजकल जो ये तली भुनी चीज़ें हैं, चटपटी चीज़ें हैं,
0: जी
1: इनसे थोड़ा आदमी बच जाए, या बाज़ार की जो बनी हुई चीज़ें हैं, समोसे हैं और हैं भुजिए हैं, इनसे अगर आदमी थोड़ा बच जाए, क्यों इसमें घटिया से घटिया पाम ऑयल का प्रयोग किया होता है, तो इससे अच्छा तो हमारा सरसों का तेल बहुत ही गजब का फायदा करता है। घर पे बना लिया जाए तो उसका कहना ही क्या है, वो तो बहुत ही
0: जी
1: बढ़िया
0: जी
1: चीज़
0: जी
1: है, A1 चीज़ बनेगी।
0: बिल्कुल वैद्य लीलाधर जी, आपने जो बातें बताई है निश्चित रूप से वो बहुत ही जरूरी हैं, और इनका हमारे दैनिक जीवन में अगर हम अनुसरण करें तो हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होगी। आपसे हम हमारे श्रोताओं के लिए अंत में यही जानना

0: चाहेंगी, कोई एक संदेश जो आप चाहें कि वो अपनी जीवन शैली को किस प्रकार अच्छा करें, आहार विहार को किस प्रकार अच्छा करें कि वो एक स्वस्थ जीवन जी पाए।
1: सुबह जल्दी उठें,
0: जी
1: पानी पिएं, उसके बाद चाय दूध पिएं, फिर घूमने निकल जाएं, थोड़ा सा व्यायाम करें, सूर्य नमस्कार जरूर करें और गौशाला में घुस जाएं।
0: जी
1: वहाँ आपको तरह तरह की गायें मिलेंगी, तरह तरह के पक्षी मिलेंगे, तरह तरह का वातावरण मिलेगा, पेड़ पौधे मिलेंगे, शांति मिलेगी। इससे आदमी की आयु भी लंबी बढ़ेगी और बीमारियों से भी बचाव हो जाएगा और टाइम पास भी हो जाएगा सुबह का 2 घंटे।
0: जी जी जी
1: लेकिन मोबाइल लेके न जाएं।
0: ये तो बहुत ही मुश्किल बात आपने बता दी, मोबाइल ना लेकर जाने वाली। बिल्कुल वैद्य जी, आप हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो में आए, हमारे श्रोताओं को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद आपका।
2: अभी आप वार्ता सुन रहे थे आहार विचार और आयुर्वेद विषय पर। वार्ताकार थे लीलाधर शर्मा और इनसे भेंट कर रहे थे नवीन सिसोदिया। दोस्तों, हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए साफ सफाई बेहद ज़रूरी है। स्वच्छता से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। दोस्तों, ये एक अच्छी आदत है जो हमेशा हमें खुश रखती है। सफाई को हमें अच्छे स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन के लिए भी अपनाना चाहिए। साफ सफाई से हमें रहने के लिए अच्छी जगह मिलती है, सांस लेने के लिए साफ हवा मिलती है और पीने के लिए साफ पानी मिलता है। अगर साफ सफाई से रहते हैं तो समाज में हमें सम्मान भी मिलता है। दोस्तों, हम गली मोहल्लों को भी साफ रखें तो बीमारियां और मच्छरों से भी बचाव होगा। साफ सफाई का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है।

दोस्तों, भारत की महिमा का गुणगान केवल हमारे देश में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में इसके समृद्ध इतिहास, विविधता और सांस्कृतिक मूल्यों के कारण किया जाता है। यहाँ ज्ञान, आध्यात्मिकता और कला का अनूठा संगम है। ये भूमि वेदों, उपनिषदों, योग और आयुर्वेद की जननी है। जहाँ वसुधैव कुटुंबकम् यानी पूरी पृथ्वी ही एक परिवार है की भावना सर्वोपरि मानी जाती है। भारत में विभिन्न धर्म, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध आदि सभी साथ मिलकर रहते हैं, जो इसकी सबसे बड़ी ताकत है। एक ओर हिमालय जैसे विशाल पर्वत इसकी रक्षा करते हैं, वहीं दूसरी ओर इसके पास सदियों पुरानी धरोहरें और विभिन्न प्राचीन मंदिर हैं। हमारा देश प्राकृतिक सौंदर्य से भी परिपूर्ण है। भारत के योग, शून्य की खोज, अहिंसा के मार्ग ने पूरे विश्व को प्रेरित और प्रभावित किया है। भारत ने कभी हथियारों के बल पर दुनिया को नहीं जीता, बल्कि यहाँ के सम्राटों ने राजपाट त्याग कर भिक्षु का जीवन अपनाया और धर्म के माध्यम से लोगों के दिल को जीता। भारतवासियों ने हमेशा दूसरों को दया और शांति का संदेश दिया, कभी किसी की संपत्ति या अधिकार नहीं छीने।

0: आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रातः के 8 बजने वाले हैं। अब आप समाचार सुनेंगे। समाचारों को हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ।

0: मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, दो नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की भी शुरुआत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात मियामी में तीसरे स्थान के लिए फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से कल 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1575 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है।
2: अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। जब आप यहाँ जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अंबाला रेल सेवा और अमृतसर छेहरटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नागरिक देवो भवः के मंत्र के साथ कार्य कर रही है।
2: हम नागरिक देवो भवः इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस से बेस सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को रवाना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर दूसरी राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। सभी मंत्रालयों और विभागों के नोडल अधिकारी और सलाहकार कार्यशाला में भाग लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वे राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म मृत्यु पंजीकरण से जुड़े मामलों की भी समीक्षा करेंगे। शाम को वे कोलकाता रवाना होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700

0: करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। इन तीन परियोजनाओं में खराड़ी जंक्शन और शिरूर बाईपास के बीच 53 किलोमीटर से अधिक लंबी 6 लेन की सड़क शामिल है, जो 246 किलोमीटर लंबे पुणे संभाजीनगर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का पहला चरण है। इसके अलावा हटपसर और यवत के बीच करीब 32 किलोमीटर की सड़क और तालेगांव चाकन शिकरापुर के बीच करीब 54 किलोमीटर की सड़क का भी शिलान्यास किया जाएगा। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार, यात्रा समय में कमी और यातायात जाम में कमी आने के साथ साथ पुणे क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। श्री तुर्क ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और हिंसा की घटनाओं के लिए जवाबदेही तय करने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच शांति बनाए रखने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पिछले महीने से चुनावों से पहले जारी प्रदर्शनों के दौरान कई लोगों की मौत हुई है। उच्चायुक्त ने सभी मौतों की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजनाओं को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सोशल मीडिया पर की गई कुछ टिप्पणियां व्यक्तिगत राय पर आधारित हैं और तथ्यों से मेल नहीं खाती। उन्होंने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। चाबहार बंदरगाह के संबंध में विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीका की ओर से दी गई छूट कुछ समय पहले समाप्त हो गई थी और इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित पक्षों के साथ बातचीत जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है।
2: मैं यह कहना चाहूंगा और हम लोगों ने हमेशा से यह कहते आए हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज जो पूरा क्षेत्र है, ये भारत का अंग है, भारत का अंग था, भारत का अंग रहेगा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गत स्काहकना से राजधानी टालिन में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता के सफल समापन के बाद नए अवसरों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। भारत एस्टोनेशिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि क्षमता और बड़े विनिर्माण आधार को विश्व स्तरीय उत्पादन के साथ जोड़कर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया जा रहा है।
3: Working to strengthen each other's...
4: हम एक दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने और यूरोपीय संघ के सभी लोगों और भारतीयों के लिए साझा समृद्धि और बेहतर भविष्य की दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं। हमने एफ्टा के साथ समझौते किए हैं जो पिछले साल 1 अक्टूबर से लागू हुए। ब्रिटेन के साथ समझौता 15 जुलाई को लागू हुआ और 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के साथ समझौता 2027 की पहली तिमाही में लागू होगा। इन समझौतों के साथ हम पूरे यूरोप के साथ कई क्षेत्रों में दोतरफा व्यापार के लिए तैयार होंगे।
1: पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडवार्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मिलेंगे। भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए जांजीबार के राष्ट्रपति डॉ हुसैन अली मिवनई आज नई दिल्ली

0: पहुंच रहे हैं। कल उन्होंने चेन्नई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 63वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। हमारी श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आगामी कड़ी में हम रामवीर तंवर से बातचीत करेंगे। श्री तंवर ने जल संरक्षण और जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक कार्य किया है। उन्हें आमतौर पर पॉन्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है।
1: मेरा भतीजा आया था कि अंकल आपका नाम टीवी में आ रहा है, और मैं भगा भगा नीचे गया। जब तक नीचे गया तो मन की बात प्रोग्राम तो चल रहा था, बट मेरा वाला जो पार्ट था वो खत्म हो गया था। तो मैं वापस गया अपने कमरे में, जब लेकिन वहां जाके देखा तो मेरा मोबाइल बज रहा था। मैंने उठा के देखा तो बहुत सारे ढेरों सारे मैसेज थे। पक्षी तालाब किनारे पे तो बैठ नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं, तालाब के बीच में एक आईलैंड बनाते हैं मिट्टी का, उस पर बैठने की व्यवस्था करते हैं। अभी तक 100 से ज्यादा आईलैंड बनाया।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। आप इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी है। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी नोकुहारा के हटने के बाद अंतिम चार में पहुंची हैं। और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं मृगनयनी पांडे।
3: हॉकी इंडिया आज से देश भर में कोचिंग और रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी देना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉ. दिलीप तिर्की ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आयोजित ये कार्यशालाएं देश में हॉकी की मजबूत नींव तैयार करने और खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अब अगर बात करें फीफा विश्व कप की, तो फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार 2:30 पर शुरू होगा। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार 12:30 पर शुरू होगा। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: मौसम विभाग ने उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी कल तक तेज वर्षा हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज।
4: धन्यवाद जागृति। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, न धुआं न प्रदूषण, रेलवे में हरित परिवहन की शुरुआत। प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया की सबसे लंबी और ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, हाइड्रोजन की ताकत, स्वदेशी तकनीक, पटरी पर दौड़ी देश की ऐसी पहली ट्रेन। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर नागरिकता का प्रश्न उठाते हुए लिखा है, समस्या ये है कि अपने देश में नागरिकता सिद्ध करने वाला कोई सुनिश्चित प्रमाण पत्र नहीं है। हिंदुस्तान ने SIR से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, SIR में नाम कटने से नागरिकता नहीं जाती। 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट अगले साल आ सकते हैं, लिखता है दैनिक भास्कर। पॉलीमर शीट कंपनियों से निविदाएं मंगाई, 18 अगस्त को टेंडर। जनसत्ता ने RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा का बयान दिया है, कमजोर मानसून आर्थिक वृद्धि के लिए जोखिम।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, 2 नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की शुरुआत भी करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम संजय मट्टू। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi inaugurates 75 redeveloped railway stations across the country under Amrit Bharat scheme. Also flags off 2 new train services. Home Minister Amit Shah to visit BSF border outpost in

0: वजीर दाखिला अमित शाह आज मगरबी बंगाल में बीएसएफ की बाहरी सरहदी चौकी का दौरा करेंगे। वो हिफाजत इंतजाम का जायजा लेंगे और तरक्याती इकदाम का आगाज करेंगे। अकवाम मुत्तहदा की इंसानी हकूक से मुतालिक एजेंसी ने पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली बेचैनी पर तशवीश जाहिर की है। उसने मुजाहिरीन की अमवात की तफ्तीश के लिए आवाज़ उठाई है। टोक्यो में जापान बैडमिंटन ओपन में पीवी सिंधु खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में पक पहुंच गई हैं और फीफा आलमी कप में आज रात मायामी में तीसरे मुकाम के प्लेऑफ मैच में फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल शाम पंजाब के शहर जालंधर से 20 रियासतों के 75 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल वसीले से इफ्तिताह किया। इन स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन स्कीम ABSS के तहत जदीद बनाया गया है। ये प्रोग्राम स्टेशनों को जदीद बनाए जाने के दुनिया के सबसे बड़े प्रोग्रामों में शामिल है। मुसाफिरों की सहूलतों के लिए की गई इन स्टेशनों की जदीदकारी पर तकरीबन 1,570 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। इन स्टेशनों को विरासत भी विकास भी के जज्बे के साथ नए सिरे से तैयार किया गया है और इस अमल में मकामी सकाफत विरासत और फन तामीर का खास तौर पर ख्याल रखा गया है। इस मौके पर जनाब मोदी ने करतौली अम्बाला ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया जिसे पंजाब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के रबते में इजाफा होगा। वजीर अजम ने अमृतसर और वाराणसी के दरमियान संत रविदास एक्सप्रेस को भी झंडी दिखाकर रवाना किया जिसकी वजह से भारत के सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम रूहानी और सकाफती दो मराकज़ के दरमियान बराह रास्त रेल खिदमात शुरू हो गई हैं। वजीर अजम ने चार लेन वाले ग्रीनफील्ड दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे के 30.9 किलोमीटर के छठे पैकेज का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर जनाब मोदी ने कहा कि इन 75 तजदीद शुदा रेलवे स्टेशनों से भारतीय रेलवेज के जरिए पिछले कुछ बरसों में की गई अक्सर तब्दीली की अक्कासी होती है।
1: अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। साथियों, जब आप यहाँ जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है।
0: इससे पहले दिन में वजीर आजम मोदी ने हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली मुसाफिर ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन जिंद और सोनीपत रेलवे स्टेशन के दरमियान चलेगी और 79 किलोमीटर का फासला महज 2 घंटे में तय कर लेगी। जनाब मोदी ने जिंद में तकरीबन 14,700 करोड़ रुपए के बहुत से कौमी तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और उन्हें मुल्क के लिए वक्फ किया। वजीर आजम ने चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपये से ज़्यादा लागत के तरक्याती कामों का आगाज़ किया जिसमें हिफ्जान सेहत, तालीम और सड़क बुनियादी ढांचा शामिल है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज मगरबी बंगाल के जुमागच इलाके में बीएसएफ की 18वीं बटालियन की बाहरी सरहदी चौकी का दौरा करेंगे। ये चौकी भारत बांग्लादेश सरहद के करीब वाक़ है। वो बीएसएफ से मुतालिक बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। वजीर दाखिला सिलीगुड़ी में एक मीटिंग की सदारत भी करेंगे जिसमें रियासत में सरहद पर बंदोबस्त और सिक्योरिटी से मुतालिक मामलात का जायजा लिया जाएगा। तफसील हमारे नामनिगार से।
2: जनाब अमित शाह मगरबी बंगाल के 3 रोज़ा दौरे के लिए कल रात बागडोगरा पहुंचे। आज वो शुमाली बंगाल में सरहदी हिफाजती दस्तों के 2 कैंपों का दौरा करेंगे और एक प्रहरी सम्मेलन से खिताब करेंगे। शुमाली बंगाल के सरहदी इलाकों से मुतालिक मामलात पर उत्तराखंड में कई मीटिंगों का इनेकाद करेंगे। वज़ीर आला सुविंदो अधिकारी और रियासती सरकार के सीनियर अफसरान इन मीटिंग में शिरकत करेंगे। जनाब शाह आज शाम कोलकाता चले जाएंगे। कल वो सीनियर पुलिस अफसरान के साथ एक मीटिंग में रियासत में नज़्म व ज़ब्त की सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। वो कौमी लाइब्रेरी में एक तकरीब में शिरकत करेंगे और बिस्वा बंगला कन्वेंशन सेंटर से धौलागढ़ में अमूल डेयरी प्लांट की संग बुनियाद रखे जाने की एक तकरीब में भी शिरकत करेंगे। कोलकाता से संदीप उन्नास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल ने कल टेलिन में एस्टोनिया के खारजी उमूर के वजीर मार्गस सखना से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, सरमायाकारी, डिजिटल तब्दीली, साइबर सलामती और उभरती हुई टेक्नोलॉजियों के शोबों में भारत एस्टोनिया इश्तराक को मजीद मुस्तहकम करने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने भारत यूरोपीय यूनियन आज़ादाना तिजारती माहिरे

0: बारिश और अलग अलग जगहों पर इंतहाई दर्जे की बारिश के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में कल तक शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे ने साहिली आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बस्ती महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में अगले दो दिन के दौरान गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज़ हवाओं की पेशगोई की है। इस दौरान आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में गर्मी और नमी का इम्कान है। मैक्सिको के जनूबी साहिल पर कल 7.4 शिद्दत का ताकतवर जलजला आया। मैक्सिको के सदर क्लॉडिया शेनबॉर्न ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जलजले के बाद किसी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। ताहम उन्होंने कहा कि हिफाजती इंतजाम कर लिए गए हैं। जंजबार के सदर और इनकलाबी काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर हुसैन अली मोइनवी, जो भारत के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर हैं, आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। इससे पहले सदर मोइनवी ने कल चेन्नई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 63वें तकसीम असनाद में मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि IIT मद्रास के पहले बैन अवी कैंपस IIT मद्रास जंजीबार का क्याम तालीमी संगमील से कहीं ज़्यादा की नुमाइंदगी करता है। मारूफ भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु जापान ओपन के खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने दुनिया की चौथे नंबर की खिलाड़ी चीन की शेन यूफी को शिकस्त दी। सिंधु कल खेले गए क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की साबिक आलमी चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के दस्तबरदार होने के बाद सेमीफाइनल में पहुंची थीं। फीफा आलमी कप में आज रात मायामी स्टेडियम में यूरोपीय हरीफ फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा मुकाम हासिल करने के लिए प्लेऑफ मैच होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 2:30 बजे शुरू होगा। तीसरे मुकाम के लिए प्लेऑफ मैच को आलमी कप के हिस्से के तौर पर साल 1934 में टूर्नामेंट के दूसरे एडिशन में शामिल किया गया था। इसके बाद से सिर्फ साल 1950 के एडिशन में ये मैच नहीं हो सका था। इस दौरान कल रात न्यूयॉर्क के न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान फीफा आलमी कप का फाइनल मैच होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे शुरू होगा। हॉकी इंडिया आज से मुल्क भर में मुल्कगीर सतह पर कोचिंग और इंतजामी उमूर के तौर तरीकों से मुतालिक वर्कशॉप का आगाज करेगा, ताकि मुल्की सतह पर हॉकी के फरोग के लिए इको निज़ाम को मुस्तहकम किया जा सके। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं असलम बेग।
1: शुक्रिया। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों मुल्क की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किए जाने की खबर को शह सुर्खी बनाया है। ये ट्रेन हरियाणा के जिंद से सोनीपत तक चलेगी। फॉरेस्ट सर्विस के अफसरान महज जंगलात के मुंतजिम नहीं हैं, बल्कि कुदरती विरसे के भी मुहाफिज हैं। इस बात का इजहार ख्याल सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ट्रेनी अफसरान से मुलाकात के दौरान किया। इस खबर को रोजनामा प्रताप ने पहले सफ़े पर जगह दी है। सतीश गोलछा की जगह अनुराग कुमार को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर बनाए जाने की खबर को रोजनामा इनकलाब समेत दीगर अखबारों ने खसूसी तौर पर शाये किया है। खबरों के मुताबिक वजारत दाखिला का हुक्म जारी होते ही उन्होंने चार्ज संभाल लिया है, जबकि रोजनामा इनकलाब ने अमरीका और ईरान की तरफ से एक दूसरे के ठिकानों पर हमले जारी रहने की खबर पर तवज्जो मरकूज की है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्कीम के तहत पूरे मुल्क में 75 रेलवे स्टेशनों का इफ्तिताह किया, जिनकी हाल ही में जदीदकारी की गई है। वजीर आजम ने दो नई रेलगाड़ियों को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। वजीर दाखिला अमित शाह आज मगरबी बंगाल में BSF की बाहरी सरहदी चौकी का दौरा करेंगे। वो हिफाजत इंतजाम का जायजा लेंगे और तरक्याती इकदाम का आगाज करेंगे। अकवाम मुत्तहदा की इंसानी हकूक से मुतालिक एजेंसी ने पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली बेचैनी पर तशवीश जाहिर की है। उसने मुजाहिरीन की अमवात की तफ्तीश के लिए आवाज़ उठाई है। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। और फीफा आलमी कप में आज रात मायामी में तीसरे मुकाम के प्लेऑफ मैच में फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।
2: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कुछ भजन। कलाकार हैं जगजीत सिंह।

अभी आप भजन सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का गार्डन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रातः के 9 बजने वाले हैं। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

मुख्य समाचार। देश के पहले निजी तौर पर विकसित प्रक्षेपण यान विक्रम 1 का पहला कक्षीय प्रक्षेपण आज होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, किसान की समृद्धि और आत्मनिर्भरता से ही देश और प्रदेश का समग्र

विकास संभव है। केंद्र ने जल जीवन मिशन 2.0 के तहत राजस्थान को मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 537 करोड़ 70 लाख रुपए की सहायता स्वीकृत की और प्रदेश का पहला संवेदनशील गवाह केंद्र पाली जिला न्यायालय परिसर में शुरू किया गया। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। स्काई रूट एरोस्पेस आज भारत के पहले निजी तौर पर विकसित प्रक्षेपण यान विक्रम 1 का पहला कक्षीय प्रक्षेपण करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस मिशन को भारत की अंतरिक्ष यात्रा में नया ऐतिहासिक अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि चार चरणों वाले इस रॉकेट को त्वरित और मांग के अनुसार प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मिशन देश के युवाओं की प्रतिभा, दृढ़ संकल्प और उद्यमशीलता की भावना को दर्शाता है, साथ ही ये भी दिखाता है कि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में

0: समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। स्काई रूट एरोस्पेस आज भारत के पहले निजी तौर पर विकसित प्रक्षेपण यान विक्रम 1 का पहला कक्षीय प्रक्षेपण करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस मिशन को भारत की अंतरिक्ष यात्रा में नया ऐतिहासिक अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि चार चरणों वाले इस रॉकेट को त्वरित और मांग के अनुसार प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह मिशन देश के युवाओं की प्रतिभा, दृढ़ संकल्प और उद्यमशीलता की भावना को दर्शाता है। साथ ही ये भी दिखाता है कि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में किए गए सुधार नवाचार और उद्यम के लिए नए अवसर खोल रहे हैं। श्री मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने युवाओं से इस ऐतिहासिक मिशन पर नजर रखने और हैशटैग इंडिया विथ विक्रम 1 का उपयोग करके स्काई रूट टीम की सफलता के लिए शुभकामनाएं देने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि किसान की समृद्धि और आत्मनिर्भरता से ही देश और प्रदेश का समग्र विकास संभव है। नागौर जिले के डेगाना के तिलानोश गांव में आयोजित ग्राम विकास चौपाल में उन्होंने किसानों, पशुपालकों और युवाओं से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को आधुनिक तकनीक, सिंचाई, वित्तीय सहायता और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि के साथ ही राज्य सरकार अतिरिक्त 3,000 रुपए की सहायता दे रही है। श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
1: और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हमारा किसान आगे बढ़े, हमारा किसान आत्मनिर्भर बने, हमारा किसान के जीवन में बदलाव हो, हमारा किसान सशक्त बने, उनको भविष्य की भी चिंता है कि आने वाली पीढ़ियां भी हमारी सुरक्षित रहे। और आपने देखा है कि जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी केंद्र में सरकार आई थी तो उन्होंने किसान को भरोसा दिलाया था और उन्होंने ये कहा था कि आप चिंता मत करिए, हम किसान की आय भी बढ़ाएंगे, किसान को सशक्त भी कराएंगे।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री ने गांव में ही राजीविका से जुड़ी महिलाओं से भी संवाद किया। संसद के सोमवार से शुरू होने वाले मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे सघन मातृ स्वास्थ्य सेवा अभियान के दौरान चिन्हित हर हाई रिस्क गर्भवती महिला का नियमित फॉलोअप किया जा रहा है। जन स्वास्थ्य मिशन के निदेशक डॉ. रवि प्रकाश शर्मा ने कल जयपुर में राज्य स्तरीय अभियान को लेकर बैठक की। बैठक में गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जाँच, उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की पहचान, ट्रैकिंग, उपचार, रेफरल और संस्थागत प्रसव कराए जाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने अधिकारियों से सभी गर्भवती महिलाओं का समय पर पंजीकरण, आवश्यक जांच, टीकाकरण तथा आयन और कैल्शियम की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। विभाग ने गर्भवती महिलाओं से अपील की है कि वे नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य संस्थान में नियमित प्रसव पूर्व जांच कराएं और चिकित्सकों की सलाह के अनुसार आवश्यक जांच और उपचार कराएं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। जल जीवन मिशन 2.0 के तहत केंद्र सरकार ने राजस्थान को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 537 करोड़ 70 लाख रुपए की केंद्रीय सहायता स्वीकृत की है। जल जीवन मिशन के निदेशक राजन विशाल ने बताया कि ये राशि ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा किए गए खर्च की भरपाई के रूप में मिलेगी। इससे ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता मिलेगी और हर घर जल अभियान को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

0: उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 2212 से अधिक गांवों को हर घर जल प्रमाणित किया जा चुका है, साथ ही 93% योजनाओं के लिए सुजलम भारत आईडी तैयार हो चुकी है। सहकारिता विभाग में डिजिटाइजेशन से सूचनाओं का संकलन आसान हो गया है, साथ ही सहकारी योजनाओं की प्रभावी निगरानी की जा रही है। विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने कल जयपुर में आयोजित समीक्षा बैठक में राज्य सहकार पोर्टल, एमएसपी खरीद और ऑनलाइन इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने राज्य सहकार पोर्टल के बाकी मॉड्यूल निर्धारित समय सीमा में पूरे करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सहकार पोर्टल का मोबाइल ऐप भी जल्द ही प्ले स्टोर पर उपलब्ध होगा। इसके माध्यम से अधिकारियों को कार्य निष्पादन में और अधिक सुविधा मिलेगी तथा आमजन को सहकारी सेवाएं ज्यादा सुगमता से उपलब्ध हो सकेंगी। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा है कि पंच गौरव कार्यक्रम हर जिले की विशिष्ट पहचान को विकास का आधार बनाने की राज्य सरकार की पहल है। विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में उन्होंने जिला कलेक्टरों और स्थानीय उत्पादों, कृषि, पर्यटन, खेल और वन संपदा के संरक्षण, संवर्धन और ब्रांडिंग पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के लिए समयबद्ध लक्ष्य तय किए जाएं तथा जनभागीदारी, विभागों के आपसी तालमेल और विभिन्न योजनाओं के प्रभावी उपयोग से इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सभी जिला कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। प्रदेश का पहला संवेदनशील गवाह केंद्र पाली जिला न्यायालय परिसर में शुरू किया गया है। राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने इसका उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये केंद्र अदालती मामलों में संवेदनशील गवाहों को सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराएगा, साथ ही पूरे प्रदेश के लिए एक मॉडल होगा और भविष्य में राजस्थान के अन्य जिलों में भी ऐसे केंद्र स्थापित किए जाएंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: अति संवेदनशील गवाह बयान केंद्र, जिसे वनरेबल विटनेस डिपोजिशन सेंटर भी कहा जाता है, न्यायिक प्रक्रिया को अधिक संवेदनशील बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस केंद्र में पॉक्सो सहित अन्य संवेदनशील मामलों के पीड़ितों और गवाहों के बयान सुरक्षित, सम्मानजनक और भय मुक्त वातावरण में दर्ज किए जाते हैं। इसका उद्देश्य गवाहों और पीड़ितों पर मानसिक दबाव कम करना तथा उन्हें बिना किसी भय या प्रभाव के अपना पक्ष रखने की सुविधा उपलब्ध कराना है। समाचार कक्ष से जयकिशन शर्मा।
0: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने उदयपुर में अपना पहला निवासी केंद्रित आधार सेवा केंद्र शुरू किया है। सांसद डॉ. मन्नालाल रावत ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये केंद्र डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने में सहायक होगा। उदयपुर में केंद्र शुरू होने के साथ ही राजस्थान में आधार सेवा केंद्रों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। UIDAI के अनुसार सितंबर तक राज्य में 19 और केंद्र शुरू किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के पहले निजी तौर पर विकसित प्रक्षेपण यान विक्रम 1 का पहला कक्षीय प्रक्षेपण आज होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, किसान की समृद्धि और आत्मनिर्भरता से ही देश और प्रदेश का समग्र विकास संभव है। केंद्र ने जल जीवन मिशन 2.0 के तहत राजस्थान को मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 537.70 करोड़ रुपए की सहायता स्वीकृत की और प्रदेश का संवेदनशील गवाह केंद्र पाली जिला न्यायालय परिसर में शुरू किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मरुमंगल। कलाकार हैं सदीक खां और साथी।

मरुमंगल में अभी आप सदीक खां और साथियों को सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ युगल गीत। आइए सबसे पहले सुनते हैं काला पत्थर फिल्म का गीत, आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की हैं।

0: अब सुनिए जंजीर फिल्म का गीत। आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की हैं, गीत गुलशन बावरा ने लिखा है और संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।
1: जाए

ये फिल्मी नग में आप सुन रहे हैं कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। अब सुनिए हीरो फिल्म का नगमा, आवाज़ें अनुराधा पौडवाल और मनहर की हैं।

अभी आप कुछ युगल गीत सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। दोस्तों, आज हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की पुण्यतिथि है। आज हम उन्हीं पर फिल्माए गए कुछ नगमे आपको सुनाएंगे। राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर में हुआ था। उनके पिता का नाम हीराचंद खन्ना और माता का नाम चंद्र रानी खन्ना था। उनके पिता स्कूल में टीचर थे। देश के विभाजन के बाद उनका परिवार अमृतसर में बस गया। विभाजन के कारण उनके पिता की नौकरी चली गई, जिस वजह से उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। इसी वजह से 6 साल के राजेश खन्ना को मुंबई में रहने वाले रिश्तेदार को सौंप दिया गया।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: दोस्तों, राजेश खन्ना का वास्तविक नाम जतिन खन्ना था। 1965 में यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर द्वारा आयोजित ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट जीतकर उन्होंने फिल्मों में कदम रखा। उनकी पहली फिल्म आखिरी खत ऑस्कर में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि थी। उन्हें पहचान 1969 की ब्लॉकबस्टर फिल्म आराधना से मिली।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: राजेश खन्ना अपने रोमांटिक अंदाज, आंखों के हाव भाव के लिए जाने जाते थे। प्रशंसकों में उनकी दीवानगी सर चढ़ के बोलती थी, आनंद कटी पतंग, अमर प्रेम, सच्चा और झूठा, हाथी मेरे साथी उनकी यादगार फिल्मों में शामिल हैं।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: राजेश खन्ना ने 1969 से 1971 के बीच लगातार 15 सोलो हिट फिल्मों का उनका रिकॉर्ड आज भी कायम है। उन्होंने अभिनय के क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ी।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: राजेश खन्ना को प्यार से काका कहा जाता था। इनका स्टारडम इस कदर था कि बॉलीवुड में एक कहावत आम थी कि ऊपर आका और नीचे काका। करीब 20 साल तक बॉलीवुड पर अकेले राजेश खन्ना छाए रहे।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: ये फिल्मी नग में इस समय आप सुन रहे हैं कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से फिल्म संगीत कार्यक्रम के तहत। आज हम आपको सुनवा रहे हैं सुपरस्टार राजेश खन्ना पर फिल्माए गए गीत।

इस बात का पता चला तो उन्होंने किशोर कुमार से इस गीत को गाने की ज़िद्द की और कहा कि अगर आप नहीं गाएंगे तो इस गीत को फिल्म से हटा दिया जाएगा। आखिर राजेश खन्ना की ज़िद्द के आगे किशोर कुमार को झुकना पड़ा और उन्होंने यह गीत गाया।

दोस्तों, फिल्म दुश्मन का एक गाना वादा तेरा वादा, जब इस गीत के लिए किशोर कुमार को चुना गया तो किशोर कुमार ने मना किया और कहा कि ये गाना रफ़ी साहब बेहतर गा सकते हैं। जब राजेश खन्ना

दोस्तों, राजेश खन्ना ने अपने फिल्मों में कई बेहद लोकप्रिय संवाद बोले हैं जो स्वतंत्रता और जीवन के फलसफे को दर्शाते हैं। बाबू मोशियाई, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है, जहां पना उसे ना तो आप बदल सकते हैं और ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा कोई नहीं जानता।

0: कभी तो हंसाए।
1: जब राजेश खन्ना किसी फिल्म में नज़र आते थे तो उनकी एक ख़ास फरमाइश होती थी कि उनकी फिल्मों के गाने किशोर कुमार से गवाए जाएं। यही वजह थी कि 1987 तक राजेश खन्ना की अधिकतर फिल्मों के गाने किशोर कुमार ने गाए। दोनों ने 132 फिल्मों में एक साथ काम किया।

राजेश खन्ना को भारतीय सिनेमा में अद्वितीय योगदान के लिए कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, जिनमें 3 फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार और 2013 में मरणोपरांत भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी नवाजा गया।

दोस्तों, कैंसर के कारण 18 जुलाई 2012 को इस महान अभिनेता का मुंबई में निधन हो गया। इनके अभिनय का

आज भी इनकी याद हमें दिलाता है। राजेश खन्ना को हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा।

हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 11 बजे हैं। फिल्म संगीत में आइए सुनते हैं लता मंगेशकर को। फिल्म का नाम है दिल तुझको दिया। गीत राजेश रोशन का है, संगीत भी राजेश रोशन का है।

लीजिए आप सुनते हैं बाबू फिल्म का ये गाना, आवाज़ लता मंगेशकर की है, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी हैं और संगीतकार राजेश रोशन।

गीत के बोल गुलशन बावरा के थे और संगीत कल्याण जी आनंद जी का। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम में आशा भोंसले की आवाज़ में फिल्म समाधि का ये नगमा। गीतकार मजरू हैं और धुन बनाई है आर डी बर्मन ने।

मुकद्दर का सिकंदर। लीजिए सुनते हैं इस फिल्म का ये गाना। आवाज़ लता मंगेशकर की है, गीतकार अनजान है और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

लता मंगेशकर के साथ आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी को। गीत के बोल साहिर के हैं, धुन राज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, और फिल्म का नाम है इज्जत।

लव इन टोक्यो, इस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। आवाज़ लता मंगेशकर की थी, गीत के बोल हसरत जयपुरी के थे और संगीत शंकर जयकिशन का। कार्यक्रम में आगे सुनते हैं लता मंगेशकर को। फिल्म का नाम है लोफर, गीतकार आनंद बख्शी हैं और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: दुल्हनियां लबों से नाम नहीं लेती, पर मन ही मन कितनी बार पुकारती है, कितनी बार आंगन छोड़ती है और कितनी बार चौखट छू के लौट आती है। बार बार सिंगार करती है, गहने पहनती है, दहेज के संदूक से जोड़ा निकालती है, ओढ़ के देखती है, मुआ आईना भी तो नहीं घर में, परात में पानी भर के मुंह देखती है तो माथा खिल उठता है।
1: आशा भोसले के गाए इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत को अब यहीं विराम देते हैं। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 12 बजे हैं। लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम विवरण।

आज दिन में 12:05 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम अनुरोध गीत। सुगम संगीत में कुछ गजलों का आनंद आप लेंगे 12:30 पर। किसान भाई सुनेंगे कार्यक्रम खेत खलियान 12:50 पर। हिंदी में प्रादेशिक समाचार का समय रहेगा दिन में 1:00 का। 1:05 पर बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत, प्रस्तुतकर्ता होंगी किरण कुमारी। समाचार का समय रहेगा दोपहर 2:00 का। 2:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत और दिन में 3:00 आप सुनेंगे उर्दू सर्विस।

शाम 5 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम युवाणी का। कार्यक्रम विवरण आप सुन सकते हैं शाम को 6 बजे। 6:05 पर आप सुनेंगे सराय की हिंदी में प्रादेशिक समाचार का समय रहेगा 6:30 का। जिले की चिट्ठी ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:40 पर। राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार का समय रहेगा

6:45 पर शाम को 7 बजे का समय है कार्यक्रम चौपाल का। 7:45 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, एक ही फिल्म से जानकारी और गीत। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 8 बजे। 8:30 पर आप सुनेंगे स्पोर्ट्स स्कैन।

8:45 का समय रहेगा समाचार संध्या का। सुगम संगीत में कुछ गजलों का आनंद आप लेंगे 9:15 पर। राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:30 पर, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात 10 बजे आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, और हिंदी में समाचार का समय रहेगा रात्रि 11 बजे का।

का। सुगम संगीत में कुछ गजलों का आनंद आप लेंगे 9:15 पर। राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:30 पर, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात 10 आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, और हिंदी में समाचार का समय रहेगा रात्रि 11 का।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 12:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनते हैं फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम अनुरोध गीत।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रश्मि छाबड़ा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं फिल्म भीगी पलकें का ये नगमा। आवाज़ लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की है और इस गीत की फरमाइश लिख भेजी है पार्थ रेडियो क्लब छात्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। सिद्धार्थनगर दरियापुर बाभली से गजानन येले, नवदीप, विश्वदीप, अशोक येले। गांव खोखरा वाली से विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास, रोशनी और शगुन बारासा। गांव नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा, अलका मिड्ढा। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित, खुशी गोस्वामी। हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से इस गीत को सुनना चाहा है रज्जाक मोहम्मद खान ने, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, जिशान खान।

कार्यक्रम में आगे सुनते हैं बेमिसाल फिल्म का ये नगमा। आवाज़ें लता मंगेशकर, किशोर कुमार और सुरेश वाडेकर की है और इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी ने। बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता, संजय और बेबी किट्टू ने, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, सादुल शहर से रामकुमार रिवाड़, चंद्रकला रिवाड़, गांव अरायन से डॉक्टर बनवारी लाल, जयपाल, बिमला, सोनू, ममता, दिशा, मोक्ष, सुशांत, विक्रम, विक्रम जयपाल, पूनम, गांव पीपरलोड से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद डूडी, सौरभ डूडी, तहसील भादरा अनूप शहर से गजानंद सारस्वत, डॉक्टर ताराचंद सारस्वत, सोनू, पवन कुमार, साहिल, राघव, मुरली लाल शर्मा, अशोक कुमार, उपेश कुमार, ममता, मितू, किन्नू, मदन लाल, फुरसा रमिल, महावीर लोहरा और सूरतगढ़ से इसी गीत को सुनना चाहा है रमेश चंद्र माथुर और प्रभा माथुर ने।

कार्यक्रम में आगे सुनते हैं लता मंगेशकर के साथ मोहम्मद रफ़ी को। फिल्म का नाम है जीवन मृत्यु और ये सुनना चाहा है आप सभी ने। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़, गांव न्योला रामपुरा से सुरेंद्र, सकीला, संदीप, अनवर, अक्कू बावरा, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा, हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैज़ल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीज़ा प्रवीण और जोहानुला हुदा, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, कपिल चिंपा, ईशान चिंपा, पूजा परिहार, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया।

फिल्म कामचोर में आइए सुनते हैं किशोर कुमार और अलका याग्निक को, और इस गीत के लिए पत्र हमें भेजे हैं चक 14 PSB से कुलदीप सिंह, राजविंदर कौर, संदीप सिंह, जसकरण सिंह, हरदीप सिंह, मंडराक विरक, गांव कलमंडी, खुर्द, जिला झालावाड़, राजस्थान से अनूप सिंह नाथावत, धीरज सिंह, सागर पंवार, भानु प्रताप सिंह पंवार और समस्त राजपुताना परिवार ने, गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु, पार्वती, हिमांशु गोदारा, सरवन रिणवा, हंसराज भाटिया, मनीराम, रणजीत राम किरोड़ीवाल, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना, आशीष राजा, चैतन्य और मेघा मस्कीन ने, संभाजीनगर महाराष्ट्र से अनिल कुमार, वैशाली, प्राजक्ता, वैष्णवी, गायत्री, यज्ञेश, रावल करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से इसी गीत को सुना जा रहा है ताज मोहम्मद अंसारी ने, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, केसरी सिंहपुर से राजकुमार ठठई, कमल ठठई, मगनलाल सोमानी, बिंदा टेलर, मुंशीराम महिंद्रा, हीरा लाल गजरा, अशोक मित्तल, ताराचंद जायमा, नई बस्ती गज गजडुंडवारा से मोहम्मद

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं लता मंगेशकर को। फिल्म का नाम है आरजू और इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है धनोरी तोलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद, बेबी आलिया, आयान बाबू, शेरवानी स्कूल गजडुंडवारा से आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी, फाजिलका रोड मलोट से कुलवंत गिल, जसवंत गिल, रमन गिल, बलजीत, दिशा मोहला, जगदार जग्गा, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से रेनू शर्मा, दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा, चक 10 SDP लालगढ़ जाटान से जिला श्रीगंगानगर से श्री रामेश्वर जी निरानिया, सुमन, दिव्या, नूतन, पंकज, मेहरचंद, हेमू, मनीषा और श्री ब्रजलाल जी निरानिया, अलीका तहसील डब्वाली से रूप सिंह, करमजीत लाखोत्रा, सरबजीत लाखोत्रा और रानी सोनू रजनी ने।

लता मंगेशकर के गाए इसी गीत के साथ फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम अनुरोध गीत यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 12:30 हुए हैं। लीजिए सुनते हैं सुगम संगीत।

0: सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की गाई कुछ गज़लें। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 12:50 हुए हैं। अब किसान भाई सुने कार्यक्रम खेत खलियान। जानकारी का विषय है असली नकली खाद की पहचान कैसे करें।
1: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों बातें करा खेती पाती की, और आज मैं थाने एक बात बताऊँ। अब मावा होनी तो राम आंती वारी मारला बद्री काको मिल गया। अर बद्री काको यहाँ दिखा उदास सा जान जिया केठा कोई तकड़ो घाटो ला गयो। काका ने पूछो राम रूमी करी हालचाल पूछो। जद कह बला के बतावा कह आजकल तो कह हर जगह ठगी ठोरी होने लाग रही है। और किसानी में तो आप देखा या देखो कई बार आप मार पड़े ने जब चारों पासों पड़ जाए मौसम की पड़ जाए यार कई बार ऐसी ठगी ठोरी हो जाए जब तो जमा ही काम हो जाए। तो पूछो काका के बात होगी। जद कह गए खाद ले आया बेटा कह नकली निकल गई फसल होगी खराब क्या बढ़वार अच्छी होगी को नहीं। तो देखो किसान भाइयों आपने ई तरह की कोई ठगी ठोरी से बचन खातर और या फिर आप मान लिया कि बीए अपनी जानकारी में आपने रहने चाहिए कि आपने कोई खाद है बीज है तो बिंगी कोई असली है या नकली है अच्छी तरह बिंगी गुणवत्ता किसी की है तो बिंगी पहचान भी आपने होनी चाहिए। बिया तो देखो किसान भाई जी का है आप कद छुई सदा छुई अपना काका बाबा दादा सगला खेती करते ही है अपन पहचान तो है ही है। पर फिर ही कई बार की है कि आजकल होशियारी घनी ज़्यादा हो रही है तो भी अपन की है कि आपने जिका डाक दर्जी है वह बताया है कि वहाँ देखो अच्छा अच्छा तरीका भी अपन बता रखे है। तो वह तरीका क्या है बंगी आज आप बात करें कि आपने जिकी खाद है वह असली किसी है और वह नकली किसी है तो बिंगी आप पहचान जी की वह किया करा। तो किसान भाइयों पहली बात कर लें अपन डीएपी की खाद है वापा लियावा बा देखो अपन खेत में ज़रूरत तो पड़े ही है। और खादा की बात करें किसान भाइयों तो एक तो डीएपी होगी सुपर फास्फेट होगी और तीसरी होगी पोटास। तो यह तीन जिकी है यह अपन ने टेमो टेम जरूरत पड़ी और ज़्यादा जरूरत पड़ी इसमें अलावा जहाँ कई सूक्ष्म तत्व है या फिर और जगह बांध बांध का पोषक तत्व बंगे भी अपन ने जरूरत पड़े। तो अपन बात करें पहली डीएपी की अपन पहचान आप किया करा। तो डीएपी खाद जी क्या बिंगा थोड़ा सा दाना आप हाथ में ले लिया और भी मैं थोड़ा सो चुनो जिको है वो आप मिला लिया और फिर भी ना आप जोर सू मसलना मसलनों बाद में जे भी मैं बाँस आने लग जाओ और बाँस इतनी आवे कि आप सूंघी जाना तो यहाँ समझा कि बा खाद जी की है बा असली है तो वो एक पहचान हैंगी। और दूसरे तरीके की किसान भाई आप बात करा तो थोड़ा सा दाना जिका ले गया अपने तोया गोपर बन आप ताता कर लिया और बन ताता कर से तो भी बाद में वे दाना जिका है वे फूल जासी तो बा खाद भी असली मानी जे दाना जिका फूलना जरूरी है। इसके अलावा किसान भाइयों डीएपी जिकी है इंगी असली की जिकी पहचान है।

है कि दाणा जेका है बे थोड़ा कठोर हुआ है, सख्त हुआ है, और दाणा को जो रंग है वो भूरो कालो और बदामी रंगा हुआ है। और आपा जे ने तोड़ा मान लियो नू तोड़ा या बिया पींच गया आपा ने तोड़ा तो टूटा को नहीं किसान भाई, जल्दी सी सख्त दाणा हुआ आंगा। तो आप ये एक पहचान है कि देखो आपा इंगा रंग छू और इंगी बनावट छू भी आपा पहचान कर सका हाँ। इस अलावा जिका दो तरीका अपने का नो रह गया, एक तो परताता कर लें और दूसरों रगड़ गए चूनों में लागे बीसू भी आपा इंगी पहचान कर सका, तो आपा ने असली नकली को आपा ने बेरो लाग जाए। अगली आप बात करें किसान भाइयों, तो आप बात कर सें सुपर फास्फेट जी की है। ये देखो अपन ने टेमोटेंग इमगी भी अपन ने बहुत घनी जरूरत पड़े है, तो इंगा जी का दाना है वह भी सख्त हुआ है और ए भी जल्दी से टूटे को नहीं, और इंगो जी को रंग हुआ वो भूरो कालो और बिदामी रंगो हुआ। और इंग सागे सागे इंगा जी का दाना है वे तवे पर आप गर्म करा तो वह दाना जी का वह फूले को नहीं जल्दी सी, तो आ जी की एक इंगी पहचान है असली होनेगी। तो देखो अभी आप डीएपी की बात करिए, अब आप बात करा सुपर फास्फेट की, तो देखो डीएपी में तो दाना फूल जाए और इम में जिका दाना फूलना नहीं चाहिए, तो दोनों में फर्क है। कई बार आप भड़को रह जाए भी हम तो दाना फूलिया को नहीं, अभी में दाना फूल गया, तो इनको आप विशेष रूप से अपन इनको ध्यान रखना है कि सुपर फास्फेट ने अगर आप गर्म करा तो दाना जिका फूल सी को नहीं, बा खाद है बा असली खाद हो सी। इंग सागे सागे किसान भाइयों एक और अपन अच्छी तरह ध्यान रखना है कि देखो जो डीएपी खाद है बिंगे जिकी बनतर है और बिंगो जो रंग है वो रंग जिको है वो अपने सुपर फास्फेट सागे थोड़ा सो मिलते जुलते हो रहेंगे। सागे सागे जिको एनपी के आपा जिको मिक्सचर लियावा आपा बाजार से, तो बिंगो भी इंग मिलावट की संभावना रहे, तो मिलावट भी आप अच्छी तरह जिकी है दाणा की अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लेंगे, मिलावट भी जिकी है नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रंग शू कई बार की है कि आपन ब्लेखो भी पड़ सके, क्योंकि रंग जिको है लगभग एक जिसो सो ही हो, तो इंगो भी अपन ध्यान रखा इंगी आप पहले अच्छी तरह पहचान कर लें। किसान भाइयों बात करें आप पोटास की, तो देखो पोटास की जिकी असली पहचान बताइए कि जो को धोड़ो कड़ाको हुआ है वही असली इंगी पहचान हुआ है, और इंगे सागे सागे इंगो जो को मिक्सचर हुआ है किसान भाइयों, तो आपा नहीं दिखा कि जी आपने नून मिर्च आपा रला लिया नहीं, कई बार आपा खेत में दो फारो करा रोटी खावा, जद क्या है कि किसान भाई नून मिर्च लगा के और ऊपर घी गाल के आपा रोटी खावा तो वो मिक्सचर है नहीं, वो बीत रहा दिखा है पर वो थोड़ा सो गिल्लो हो जाए नहीं, तो ऐ दाना जिके आपस में चिपना नहीं चाहिए, जे दाना चिप जाए तो मतलब वो है कि पोटास जिकी अब नकली है, तो ऐ दाना जिके आपस में चिपना नहीं चाहिए, आ एक इंगी पहचान है। और दूसरों के पोटास पानी में आपा घोड़ा तो इंगो जो को लाल रंग वालो जो को हिस्सो है वो आपन ऊपर पानी में तिरन लाग जाए तो वो दिखन लाग जाए, तो इंगो मतलब वो है कि आज की पोटास है आ एकदम असली है और आ अपने खेत में पूरी अच्छी तरह काम कर सी। तो ऐ देखो ऐ आपा अपने जी की आएंगी पहचान है, इतने ही अपना बाकी भी जी की खाद है अबंगी भी आपने पहचान करनी चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों अपन अगर बात करें देखो आजकल आपने इन बिनू भी सुनने मिलते ही रहे कि फलाने सागे ठगी होगी, बीन जगह ठगी होगी, आ चीज़ ले आया नकली निकल गई, इमें पैसा ज़्यादा ले लिया, तो देखो इमें आपनों ही नुकसान है, ई करके सावचेती जी को है वही समाधान है, तो ऐ जी की सावचेती आप जरूर रखें। और इंगे सागे सागे और भी बातें जी की आप बाजारों लेवा, चाहे आप तो खाद की आप बात कर ली और आप बाजारों अपन और बहुत सारी अपन है सामान लेना पड़े खेती का तर, चाहे वह कोई रे स्प्रे है इंगे अलावा बीज आप लेवा या फिर आप कोई और पोषक तत्व लेवा, तो अंगों भी आप ध्यान रखा, तो इंग में क्या कि पहला तो आप जिकी भी कोई बीज लेवा या दूसरी चीज़ लेवा तो बिंग ऊपर पैकेट जी को अपन वो देवे भी पैकेट के ऊपर सील है अच्छी तरह लागेड़ी होनी चाहिए, और प्रिंटिंग जिकी है जो छपाई करड़ी हुए तो बिंग ऊपर आप तारीख देख लें, बिंग ऊपर आप भाव देख लें और बिंग में बीज गमा और के चीज़ है तो बे अच्छी तरह आप देख लें, ऐ मतलब धुंधली नहीं होनी चाहिए या कोई कि बिंग ऊपर लिखेड़ा हुआ है बे बंग ऊपर कोई कट्टेड़ो नहीं होना चाहिए, और इंग ऊपर पूरा सारो देखो बिंग ऊपर लाइसेंस जिको हुआ है बिंगो भी नंबर हुआ तारीख भी हुआ है सारी चीज़ें हुआ तो बे आप अच्छी तरह पहला जाँच कर लें, और एक जिको है पैकेट वो खुलो नहीं होना चाहिए, सील की जरूर जाँच कर लें। दूसरी बात कोई भी सामान लेवा बिंगो पक्को बिल आपने जरूर लेना चाहिए है भी बिल के ऊपर आपने खाद की मात्रा बिंगा जी का भाव है वह और कि किसी आपा खाद उर के लिया है और वह कद लिया है और वह कद तई अच्छी तरह काम कर सी, तो यह सारी जी की जानकारी है बिल के ऊपर होनी जरूरी चाहिए। ब्यू बाद गए माँ पैकेट को जिको वजन है आपा जितो भी सामान लेवा चाहे आप 5 किलो लेवा 10 किलो लेवा 2 किलो लेवा चाहे 100 ग्राम लेवा, तो वो जिको वजन है वो आप अच्छी तरह जाँच करके चेक करके और फिर ही आप लेवा, कई बार किया कि वजन कम आ जाए तो भी मैं भी आपने घट तो पड़ जाए। इस अलावा आप खाद का जिका भांत भांत के जिकी अच्छी अलग अलग जिकी वैरायटी हो जिका ना आप कह दें कि मान लो आप यूरिया लियावा या डीएपी लियावा या एनपीके लियावा कोई भी चीज़ आप लियावा तो बा भी आप अच्छी तरह एकदम देख लें कि जिकी चीज़ आपने चाहिए भाई आपने ले गया आनी चाहिए। इंगे सागे सागे आप कई बार देखा कि बाजार में आपने आप इन बिन्नू सुन लिया कह फलानियो दुकानदार तो कह सस्ती देवे या आधे रेट में देवे, तो देखो इन बात ही आप विश्वास कर लिया कि वो अपने सागे ठगी हो सी, देखो कोई भी चीज़ लेवा

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। भारत के पहले निजी रूप से विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 ने आज अपनी पहली परीक्षण उड़ान भरी। इसे हैदराबाद की कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने बनाया है। ये रॉकेट मिशन आगमन के तहत सुबह 11:30 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। विक्रम 1 का ये प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ये पहली बार है जब किसी भारतीय निजी कंपनी ने देश में ही डिजाइन और तैयार किया गया ऑर्बिटल क्लास रॉकेट लॉन्च किया है। इस रॉकेट का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रॉकेट के सफल प्रक्षेपण के बाद इसे तैयार करने वाले वैज्ञानिकों से बात की और उन्हें बधाई दी। श्री मोदी ने कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में नए अवसर पैदा होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है, बल्कि भारत अपने इस रुख पर दृढ़ता के साथ कायम है। ये बात श्री सिंह ने नई दिल्ली में आज फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में कही। उन्होंने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा। श्री सिंह ने कहा कि देश का रक्षा उत्पादन लगभग 1,78,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जबकि 2014 में ये लगभग 40,000 करोड़ रुपए था। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस वर्ष रक्षा उत्पादन में 2,00,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज नागौर जिले के तिलानेश गांव में रात्रि विश्राम के बाद प्रातः भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने खेतों में किसानों से चर्चा की तथा गांव की गलियों में महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने श्री चारभुजानाथ जी और वीर तेजाजी मंदिर में दर्शन किए और तालाब के किनारे पौधा लगाया। उन्होंने गांव में पुस्तकालय सह अटल ज्ञान केंद्र, रामसरी गांव से जोबनेर बुटाटी राज्य राजमार्ग तक 1,18,00,000 रुपए की लागत से डामर सड़क निर्माण तथा तालाब के सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार की घोषणा की। राज्य सरकार ने भरतपुर शहर की पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए करीब 81,14,00,000 रुपए स्वीकृत किए हैं। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिशासी

अभियंता केशव पांडे ने बताया कि अमृत 2.0 योजना के तहत शहर में लगभग 326 किलोमीटर लंबी पेयजल पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसके साथ ही 10 नई पानी की टंकियों का निर्माण और 22,000 नए पेयजल कनेक्शन जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि परियोजनाओं के लिए निविदाएं जारी कर दी गई हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षाएं 28 जुलाई को आयोजित होंगी। बोर्ड की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार विज्ञान, वाणिज्य और कला संकाय की परीक्षाएं एक ही दिन में

0: की 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षाएं 28 जुलाई को आयोजित होंगी। बोर्ड की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार विज्ञान, वाणिज्य और कला संकाय की परीक्षाएं एक ही दिन में होंगी। परीक्षा सुबह 10:30 बजे शुरू होंगी। कुछ विषयों की परीक्षा दोपहर 12:30 बजे तक और बाकी विषयों की परीक्षा दोपहर 1:30 बजे तक चलेगी। राज्य के पहले परमवीर चक्र विजेता कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत के शहादत दिवस पर आज उन्हें याद किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्री शर्मा ने लिखा कि मेजर पीरू सिंह शेखावत का जीवन सभी को राष्ट्रभक्ति, कर्तव्य निष्ठा और देश सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। झुंझुनू स्थित मेजर पीरू सिंह स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम में जिला कलेक्टर डॉ. अरुण गर्ग और अन्य गणमान्य नागरिकों ने पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उनके शौर्य और बलिदान को याद करते हुए युवाओं से प्रेरणा लेने का आह्वान किया गया। गौरतलब है कि मेजर पीरू सिंह ने 1948 के भारत पाकिस्तान युद्ध में टीथवाल सेक्टर में अद्वितीय वीरता का परिचय दिया था। उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 1:05 हुए हैं। अब बहने सुने अपना कार्यक्रम महिला जगत।

कार्यक्रम सुनने वाली मेरी प्यारी सखियों को किरण का नमस्कार। सखियों, आज के इस कार्यक्रम में हमारी चर्चा के विषय हैं सोशल मीडिया पर वाद विवाद, समय की बर्बादी, परिवार में संवाद का महत्व, सीलन और कीड़ों से अनाज की सुरक्षा और पेट को ठंडक और जीव को स्वादी चटपटे फलाहार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोशल मीडिया पर वाद विवाद, समय की बर्बादी। सखियों, आज का समय एक ऐसा समय है जहाँ हर इंसान अपना जीवन का कुछ समय मोबाइल पर बिताता है। सोशल मीडिया से हर इंसान वाकिफ है, लेकिन सोशल मीडिया पर वाद विवाद में उलझना समय और ऊर्जा की भारी बर्बादी है। यह प्लेटफॉर्म लोगों को सार्थक चर्चा के बजाय अंतहीन बहसों, ट्रोलिंग और नकारात्मकता में धकेलते हैं। इसके बजाय इस डिजिटल समय का उपयोग रचनात्मक कार्यों, सीखने और वास्तविक जीवन के रिश्तों को मजबूत करने में किया जा सकता है। सखियों, सोशल मीडिया पर ज़्यादातर बहसें बिना किसी ठोस आधार या तथ्य के होती है। लोग केवल अपनी बात मनवाने के लिए अड़े रहते हैं, जिससे कोई निष्कर्ष ही नहीं निकलता। तीखे वाद विवाद, कमेंटबाजी और ट्रोल्स के संपर्क में आने से मानसिक शांति भंग होती है और बेवजह का मानसिक तनाव बढ़ता है। सखियों, जब हम किसी ऑनलाइन बहस में फंसते हैं तो हमारा समय और ध्यान पूरी तरह से भटक जाता है, जिससे हमारी महत्वपूर्ण कार्य पीछे छूट जाती है। एक बहस के बाद दूसरी बहस में उलझना एक चक्रव्यूह की तरह है, कब घंटों का समय निकल जाता है इसका पता ही नहीं चलता। सखियों, सोशल मीडिया पर बेकार के बहसों में भावनात्मक रूप से ऊर्जा खर्च होती है, जिससे हम वास्तविक जीवन में रचनात्मक और सकारात्मक कार्यों के लिए ऊर्जाहीन महसूस करते हैं। सखियों, बातें और भी करेंगे, लीजिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

सखियाँ, सोशल मीडिया का इस्तेमाल पूरी तरह बंद करना ज़रूरी नहीं, लेकिन इसकी लत से बचना ज़रूरी है। याद रखें, जो दिख रहा है वह पूरी सच्चाई नहीं है। असली ज़िंदगी स्क्रीन के पीछे नहीं, हमारे आसपास चल रही है। सखियों, एक समय था जब लोग सुबह अखबार पढ़कर दिन की शुरुआत करते थे, लेकिन अब सुबह आँख खुलते ही सबसे पहले मोबाइल की स्क्रीन देखी जाती है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप जैसे ऐप्स हमारी आदत ही नहीं, ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। सखियों, एक आम व्यक्ति हर दिन लगभग 3 घंटे सोशल मीडिया पर बिताता है। अगर दिन के 24 घंटों में से 7 से 8 घंटे की नींद, 2 से 3 घंटे रोज़ के ज़रूरी काम और 8 से 9 घंटे पढ़ाई या फिर नौकरी में निकल जाते हैं, तो इंसान के पास अपने लिए समय ही नहीं बचता। ऐसे में जो थोड़ा बहुत समय होता है वह भी स्क्रीन पर चला जाता है। सोशल मीडिया पर वक्त बिताना एक आदत ही नहीं, लत बन चुका है। यह आदत न सिर्फ समय की बर्बादी है, बल्कि हमें उस असली दुनिया से भी दूर ले जा रही है, जहां लोग सामने से मुस्कुराते हैं, बातें करते हैं और साथ बैठते हैं। सखियों, आज के समय में हर कोई मोबाइल में खोया हुआ है। एक घर में यदि 4 से 5 सदस्य हैं, तो वे भी आपस में एक दूसरे के साथ समय नहीं बिताकर अपना समय मोबाइल पर बिताते हैं। सबका जीवन मोबाइल तक सीमित हो गया है। कई बार तो कई कई दिनों तक एक ही परिवार के सदस्यों की आपस में बातें तक नहीं होती। सखियों, सोशल मीडिया ने सबके जीवन को प्रभावित किया है। लीजिए सुनते हैं एक और गीत।

0: जोकर।
1: सखियों, हम सब जानते हैं कि परिवार हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। मम्मी पापा, भाई बहन, हर रिश्ते का एक अलग एहसास होता है। परिवार में संवाद रिश्तों को मजबूत बनाने, आपसी दूरियों को मिटाने और एक खुशहाल माहौल बनाए रखने की रीढ़ है। सखियों, नियमित बातचीत से परिवार के सदस्यों के बीच आपसी

समझ, विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ता है। खुलकर बातें करने से गलत फहमियाँ दूर होती है और मन के द्वेष समाप्त होते हैं। माता पिता द्वारा बच्चों से संवाद करने से उनका आत्मसम्मान बढ़ता है और वे मानसिक रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं। परिवार में मिलकर चर्चा करने से बड़ी समस्याओं का हल आसानी से निकल जाता है। सखियों, परिवार एक ऐसी कड़ी है जो सबको जोड़कर रखता है। हम सब मिलकर जो काम कर सकते हैं वह अकेला व्यक्ति कतई नहीं कर सकता। इसीलिए सखियों, हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय परिवार में बिताना चाहिए। पहली बात तो सभी को साथ बैठकर खाना खाना चाहिए और भोजन करते समय मोबाइल या टीवी से दूरी बनाकर आपस में समय बिताना चाहिए। अपने विचार सांझे करने चाहिए। एक दूसरे की बात को ध्यान से सुनना और सम्मान देना चाहिए। दिन भर की गतिविधियों और अनुभवों को एक दूसरे के साथ साझा करना चाहिए। अपनी खुशी में भी सबको शामिल करना चाहिए और अगर कोई समस्या है तो उसका भी मिलकर हल निकालना चाहिए। लीजिए, सुन लेते हैं एक और गीत।

सखियों, मजबूत और स्वस्थ पारिवारिक संबंधों के निर्माण में संवाद सबसे आवश्यक है। माता पिता और बच्चों के बीच यह विश्वास भावनात्मक विकास और दीर्घकालिक बंधनों की नींव का काम करता है। जब संवाद खुला और प्रभावी होता है तो बच्चे न केवल यह महसूस करते हैं कि उनकी बात सुनी जा रही है, उन्हें महत्व दिया जा रहा है, बल्कि उनमें आत्मविश्वास और कौशल भी विकसित होते हैं जिनकी उन्हें अपने आसपास की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए आवश्यकता होती है। सखियों, माता पिता और बच्चों के बीच संवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू सहानुभूति है। बच्चों को स्कूल, दोस्ती और व्यक्तिगत विकास में कई तरह के दबावों का सामना करना पड़ता है। जब माता पिता अपने बच्चों को चुनौतियों पर चर्चा करने और मिलकर समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो वे कठिनाइयों से निपटने के रचनात्मक तरीके सिखाते हैं। यह तरीका बच्चों को जिम्मेदारी सिखाता है और साथ ही उन्हें यह भी बताता है कि जीवन की चुनौतियों का सामना करने में वे अकेले नहीं हैं। सखियों, माता पिता और बच्चों के बीच में अच्छा संवाद केवल शब्दों के आदान प्रदान तक सीमित नहीं है। यह विश्वास, सम्मान और प्रेम पर आधारित एक अटूट बंधन बनाने के बारे में है। यह बच्चों के भावनात्मक स्वास्थ्य को पोषित करता है, उन्हें लचीलापन प्रदान करता है और पारिवारिक एकता को मजबूत करता है। जो माता पिता सुनने, सहानुभूति दिखाने और खुलकर बोलने के लिए समय निकालते हैं, वह न केवल अपने बच्चों का बचपन और किशोरावस्था में मार्गदर्शन करते हैं बल्कि जीवन भर चलने वाले स्वस्थ संबंधों की नींव भी रखते हैं। लीजिए, सुनते हैं एक और गीत।

सखियों, घर की सीलन और कीड़ों से अनाज को बचाना बहुत ज़रूरी है ताकि वे लंबे समय तक खराब ना हो। सखियों, अक्सर बरसाती मौसम में किसी भी प्रकार का अनाज हो उसमें कीड़े पड़ने लगते हैं। सीलन की वजह से अनाज खराब होने लगता है, जैसे कि अनेकों प्रकार की दालें, चावल, चने, गेहूं इत्यादि, इनमें सीलन की वजह से कीड़े पड़ने लगते हैं। सखियों, और अनाज तो हम फिर भी ज़रूरत के हिसाब से खरीद लेते हैं, लेकिन गेहूं तो हम साल भर के लिए स्टोर करना पड़ता है और दालें भी लगभग हम लोग स्टोर करते रखते ही हैं। अनाज को सीलन से बचाने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे सखियों, अनाज को डिब्बे में भरने से पहले उसे धूप में अच्छे से सुखाना चाहिए। अनाज को हमेशा हमेशा हवा बंद प्लास्टिक या स्टील के बर्तनों में ही रखना चाहिए। अनाज के बोरों या डिब्बों को सीधे फर्श पर नहीं रखें, उनके नीचे लकड़ी का पटरा या प्लास्टिक की बोरी जरूर बिछाएं। डिब्बों को दीवार से सटाकर न रखें, क्योंकि दीवारों से सीलन अनाज में आ सकती है। सखियों, अनाज निकालते समय हमेशा सूखे हाथों या सूखे चम्मच का ही इस्तेमाल करना चाहिए। लीजिए सुनते हैं एक और गीत।

सखियों, बारिश के मौसम में नमी की वजह से अनाज और दालों में कीड़े पड़ने लग जाते हैं। सखियों, अनाज को कीड़ों से बचाने के लिए हमें कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए, जैसे अनाज के डरमे या डिब्बे में नीचे, बीच में और ऊपर सूखी हुई नीम की पत्तियां डालनी चाहिए। अनाज के डिब्बे में माचिस की कुछ डिब्बियाँ रख दें। माचिस की तीली में मौजूद फास्फोरस के गंध से कीड़े दूर रहते हैं। इसके अलावा चावल और दालों में कुछ तेज पत्ता और 10 से 12 लौंग डाल देने से कीड़े नहीं लगते। सखियों, लहसुन की कलियां डालने से भी कीड़े नहीं लगते। गेहूं या चावल में सूखी लाल मिर्च डालने से उसकी तीखी गंध के कारण कीड़े भाग जाते हैं। दालों को कीड़ों से बचाने के लिए उन पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगाकर रखने से भी कीड़े नहीं लगते। एक सूती कपड़े में थोड़ा सा कपूर बांधकर अनाज के डिब्बे में रख दे। और हाँ सखियों, सबसे ज़रूरी बात, जहाँ अनाज रखा हो उस कमरे में वेंटिलेशन, हवा का आना जाना अच्छा होना चाहिए। अगर किसी अनाज में कीड़ा लग चुका है तो उसे तुरंत बाकी अनाज से अलग करें और उसे तेज़ धूप में सुखाएं। लीजिए सुनिए अगला गीत।

सखियों, गर्मियों में सबकी इच्छा होती है कि कुछ ऐसा खाया जाए जिससे पेट को ठंडक और शांति मिले, पेट में भारीपन महसूस ना हो। इसीलिए हम गर्मियों में लिक्विड ज़्यादा लेते हैं कुछ खाने की वजह। सखियों, पेट को ठंडक और जीभ को चटपटा स्वाद देने के लिए हम पुदीना छाछ, नींबू, सिकंजी और हल्के मसालेदार चटपटे फल जैसे चाट मसाला डालकर खीरा या अमरूद का सेवन कर सकते हैं। दोपहर में पुदीना मिलाकर ठंडी छाछ पिए, यह पेट को अंदर से शांत रखती है। नारियल पानी शरीर की गर्मी दूर करने और पेट को ठंडक देने के लिए सबसे बेहतरीन है। सौंफ को रात भर भिगोकर सुबह उसका पानी पीने से पेट की जलन

शांत होती है। सखियों, जीभ के चटपटे स्वाद के लिए हमें क्या चाहिए? हेल्दी चाट, ककड़ी, खीरा, चुकंदर या मखाने को हल्का भूनकर उस पर काला नमक, जीरा पाउडर और नींबू का रस मिलाकर भी खा सकते हैं। यह पेट को नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा और स्वाद भी मिलेगा। पुदीना धनिया की चटनी खाने के साथ कम मिर्च वाली पुदीने और हरी धनिया की खट्टी मीठी चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इमली या नींबू का पानी, हल्का खट्टा मीठा पानी या घर की बनी जलजीरा ड्रिंक जीभ के स्वाद को तरोताजा रखती है। लीजिए सखियों, अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्षेपण के लिए स्काईरूट एरोस्पेस की टीम को बधाई दी और इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 सफलतापूर्वक आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है। ये प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इसे हैदराबाद की एक निजी कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने बनाया है। एक रिपोर्ट।
1: भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम 1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम 1 में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। ये अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस उपलब्धि के लिए स्काईरूट एरोस्पेस को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को आगे आकर नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने विक्रम 1 की टीम को उनसे मिलने का निमंत्रण भी दिया। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ऐतिहासिक उपलब्धि भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ती है। उन्होंने कहा कि निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि यह अभियान भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि उपलब्धि अंतरिक्ष अन्वेषण में वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।

0: इन स्पेस और इसरो को इस शानदार सार्वजनिक निजी भागीदारी और सफल प्रक्षेपण के लिए बहुत बहुत बधाई। इस सहयोग को अनुकूलित करने के लिए इसरो को बधाई। आज के सफल प्रक्षेपण ने वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में भारत की स्थिति को और मजबूत कर दिया है।
1: इन द हाईली कॉम्पिटिटिव एरिना ऑफ स्पेस इकोनॉमी।
2: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उपलब्धि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में हुए सुधारों, स्वदेशी नवाचार और उद्यमशीलता की भावना की मजबूती को दर्शाती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वर्चुअल माध्यम से नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस नई रेल सेवा के शुरू होने से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच रेल संपर्क को और मजबूती मिलेगी। ये रेलगाड़ी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आने वाले पर्यटकों और वन्य जीव प्रेमियों के साथ साथ रामनगर के निकट स्थित मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी लाभदायक होगी। रेल मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में कहा कि ये रेलगाड़ी सप्ताह में 2 दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी।
3: कुमाऊं और गढ़वाल उत्तराखंड के दो बहुत ही मजबूत पोल्स हैं। इन दोनों पिलर्स को जोड़ने वाली ये आज की गाड़ी है जो कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ेगी। इसका ये एक नया सेतु बनेगी कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में, और इसके लिए प्रयास लगातार होता रहा है। और आज इन प्रयासों का एक जो फल निकला है वो ये है कि आज कम से कम हफ्ते में 2 दिन ये गाड़ी स्टार्ट हो पा रही है। बहुत अच्छी बात है। कुमाऊं के लोग आराम से गढ़वाल जा पाएंगे, देहरादून कैपिटल तक जा पाएंगे और कई तरह के जो काम राजधानी में ही होते हैं वो सब यहाँ पर कर पाएंगे।
2: ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है, बल्कि ये आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। नई दिल्ली में आज फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
4: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
2: श्री सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है।
4: ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में टेक्नोलॉजिकल वारफेयर का एक शानदार नमूना था। इस ऑपरेशन में आकाश तीर, आकाश मिसाइल सिस्टम और ब्रह्मोस जैसी एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम के साथ साथ अनेक लेटेस्ट इक्विपमेंट का भी उपयोग किया गया। इसने साबित किया है कि हमारी सेनाएं बदलाव को समझ भी रही हैं और उसे आत्मविश्वास के साथ उसका उपयोग भी कर रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता भारत के उद्योगों पर विश्वास का प्रमाण है।
2: श्री सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश की रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भरता को कम करने का भी संकल्प लिया है।
4: नई डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के माध्यम से बाई इंडियन आईडीडीएम जैसी व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी गई। सेनाओं के आधुनिकरण के लिए निर्धारित बजट का 75% भाग भारतीय उद्योगों से खरीद के लिए सुरक्षित किया गया। इस साल हम नया डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर लेकर आ रहे हैं जिसके कारण देश में डिफेंस प्रोडक्शन को एक नई रफ्तार मिलेगी और एक नई ताकत भी मिलेगी।
2: गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास

0: करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केस 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से मिलेंगे। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने करीब 4,25,00,000 रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सर गारफील्ड सोबर्स के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवार और दुनिया भर में क्रिकेट जगत के उनके प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूचना और प्रसारण तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को उनके जन्मदिवस पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री वैष्णव देश के प्रमुख बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, जो विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय ने भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से युवा शोधार्थियों के लिए एक देशव्यापी शोध लेख प्रतियोगिता आयोजित करने की घोषणा की है। ये पहल 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्टों के आधार पर छात्रों को मौलिक शोध के लिए प्रोत्साहित करते हुए सार्वजनिक वित्त, सुशासन, वित्तीय संघवाद, सामाजिक क्षेत्र के व्यय और सतत विकास जैसे विषयों पर शोध एवं सार्थक विमर्श को बढ़ावा देना है। संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने इनोवेट इंडिया माईगव मंच पर इंडिया पोस्ट शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है। प्रतिभागियों को माईगव पोर्टल के माध्यम से एक मौलिक शुभंकर डिजाइन, उसके लिए उपयुक्त नाम और संक्षिप्त अवधारणा पत्र जमा करना होगा। प्रतियोगिता में प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 15 अगस्त है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल खबरों के साथ हैं अक्षित वैद्यान।
1: पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यू फी के खिलाफ पहला सेट 21-19 से जीता। दूसरे सेट में चेन यू फी ने चोट के कारण मुकाबले से हटने का निर्णय लिया। फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई है। 31 वर्षीय सिंधु ने वर्ष 2026 की शुरुआत विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान से की थी। महिला सिंगल्स के फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। स्पेन से हार के बाद फ्रांस का विश्व कप अभियान समाप्त हो गया। हालांकि किलियन एम्बाप्पे ने 8 गोल और 3 असिस्ट के साथ शानदार प्रदर्शन किया है। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कल तक मूसलाधार वर्षा तथा कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में आज कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान है। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, माहे, ओडिशा तथा पूर्वोत्तर के राज्यों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कल तक अलग अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आज गर्म तथा उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। ईरान ने आज कुवैत पर मिसाइलों और ड्रोन से बड़े पैमाने पर हमले किए। हमलों के बाद कुवैत ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया और

0: उड़ान सेवाएं निलंबित कर दीं। ईरान से दागी गई मिसाइलों के कुवैती हवाई क्षेत्र में प्रवेश के बाद अधिकारियों ने लोगों को घरों के अंदर रहने तथा सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की सलाह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्षेपण के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस की टीम को बधाई दी और इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

लता मंगेशकर के साथ किशोर कुमार को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था रामपुर का लक्ष्मण, गीत मजरूह का था और संगीत आर डी बर्मन का। इन्हीं आवाज़ों में आइए सुनते हैं एक और नगमा। फिल्म का नाम है आंधी, गीतकार गुलजार हैं और संगीतकार राहुल देव बर्मन।

रूप तेरा मस्ताना, इस फिल्म का ही नगमा अभी आपने सुना। आवाज़ें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की थी। कार्यक्रम में आगे सुनते हैं लता मंगेशकर के साथ अमिताभ बच्चन को। गीत के बोल जावेद अख्तर के हैं, संगीत शिवहरि का, और फिल्म का नाम है सिलसिला।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरा होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दोपहर के 3 बजे हैं। लीजिए अब सुनते हैं उर्दू सर्विस।

ये आकाशवाणी है, मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस के साथ हम हाजिर खदमत हैं। नजर डालेंगे इस मजलिस में नशर होने वाले आज के प्रोग्रामों पर। अब से थोड़ी ही देर के बाद यानी 3:05 पर खबरें नशर की जाएंगी। 3:15 पर मेरी पसंद प्रोग्राम में आप सुनेंगे फिल्मी नगमे। 3:30 पर सूबाई लोकगीतों के प्रोग्राम में आज हम आपको डोगरी लोकगीत सुनवाएंगे। 4 बजे से आप फिल्मी नगमों का लुत्फ ले सकेंगे। ये प्रोग्राम शाम के 4:50 तक जारी रहेगा। शाम 4:50 पर खबरें नशर होंगी और 5 बजे आज की दूसरी मजलिस का वक्त ख़त्म हो जाएगा। ये थी एक नज़र इस मजलिस में नष्ट होने वाले प्रोग्रामों पर।

मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप उर्दू सर्विस की नशरियात सुन रहे हैं। अब खबरें नशर की जाएंगी।

आदाब, ये आकाशवाणी है। अब आप हबीब रहमान से खबरें सुनिए। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा से सतीश धवन खलाई मरकज से रॉकेट विक्रम 1 ने कामयाबी के साथ उड़ान भरी और इसे पहली बार निजी शोबे ने तैयार किया है।

आजम नरेंद्र मोदी ने इस कामयाबी के लिए इस प्रोजेक्ट से वाबस्ता टीम को मुबारकबाद दी है और कहा है कि यह भारत के खलाई सफर में एक दूरस और तारीखी तब्दीली लाएगा। वजीर दफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की भारत की पॉलिसी महज कोई बयान नहीं है, बल्कि यह सख्त कार्रवाई का अजमे मुसम्मम है। अक़वामे मुत्तहिदा के इंसानी हकूक से मुतालिक इदारे ने पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में फैली हुई बेचैनी पर तशवीश का इजहार किया है और मुजाहिरीन की अमवात की छानबीन की ज़रूरत पर जोर दिया है। और पीवी सिंधु जापान के शहर टोक्यो में जारी बैडमिंटन के खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। मिशन आगमन के तहत भारत का पहला निजी तौर पर तैयार करदा मदार में जाने वाला रॉकेट विक्रम 1 इंजन का आखिरी मरहला मुकम्मल करने और 450 किलोमीटर बुलंद मदार में पेलोड्स पहुंचाने के बाद कामयाबी के साथ मदार में दाखिल हो गया है। इस रॉकेट को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में वाकई सतीश धवन खलाई मरकज से आज दोपहर 12:05 पर भेजा गया। इस कामयाबी के साथ भारत निजी शोबे के जरिए मदार में रॉकेट लॉन्च करने की सलाहियत हासिल करने वाला दुनिया का तीसरा मुल्क बन गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले निजी तौर पर तैयार करदा रॉकेट विक्रम 1 की कामयाबी पर स्काई रूट एरोस्पेस की टीम को टेलीफोन पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा है कि यह तारीखी कामयाबी मुल्क के नौजवानों को आगे बढ़ने और इख्तरा में अपना रोल अदा करने के लिए हौसला अफजाई करेगी। वजीर आजम ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि स्काई रूट की टीम में ज्यादातर नौजवान माहिरीन शामिल हैं। उन्होंने विक्रम 1 की टीम को मुलाकात के लिए मदऊ भी किया। बाद में एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम ने कहा कि यह कामयाबी भारत के खलाई सफर में एक तारीखी और फैसलाकुन लम्हा है। उन्होंने कहा है कि खलाई शोबे में निजी कंपनियों की बढ़ती हुई शमूलियत नई राहें हमवार कर रही है और इख्तरा की रफ्तार को तेज कर रही है। मिशन आगमन के तहत तैयार किया गया यह रॉकेट कम लागत और पायदार अंदाज में छोटे सैटेलाइट्स को खला में भेजने के लिए बनाया गया है। भारत के खलाई प्रोग्राम के बानी डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखे गए इस रॉकेट में ठोस ईंधन पर मबनी 3 मराहिल हैं, जबकि मदार में एडजस्टमेंट मॉड्यूल में रकीक ईंधन से चलने वाला रमन इंजन नसब है, जो रॉकेट को दुरुस्त मदार में दाखिल करने और मदार में मतलूबा तब्दीलियां अंजाम देने में मदद फराहम करता है। यह रॉकेट जमीन की सतह से तकरीबन 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर की बुलंदी पर वाकई मदार में पेलोड्स पहुंचाने की सलाहियत रखता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कल से मालदोवा, शिमाली मकदूनिया और रोमानिया के सरकारी दौरे पर रवाना होंगी। नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए वजारत खारिजा में मगरबी उमूर के सेक्रेटरी सीबी जॉर्ज ने बताया कि यह सरकारी दौरे जमहूरिया मालदोवा, जमहूरिया शुमाली मकदूनिया और रोमानिया के सुदूर की दावत पर किए जा रहे हैं, जो इस महीने की 25 तारीख तक जारी रहेंगे। उन्होंने कहा है कि यह दौरा तारीखी अहमियत का हामिल है, क्योंकि यह किसी भारतीय सदर जमहूरिया के जरिए जमहूरिया मालदोवा और शिमाली मकदूनिया के लिए अव्वलीन बाहिमी दौरे होंगे। वजीर दफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की पॉलिसी सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि एक वाज़ह, दो टोक और मजबूत मौकफ है। आज नई दिल्ली में मुनाकिदा फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि भारत दहशतगर्दों को सिर्फ अपनी सरहदों पर नहीं, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी निशाना बनाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसका बखूबी मुशाहिदा किया, जो जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी जंग की एक नुमाया मिसाल थी। वजीर मौसूफ ने उजागर किया कि पिछले 12 बरस के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने दफा के शोबे के एहया और इसे मजबूत बनाने को अपनी अव्वलीन तरजीहात में शामिल रखा। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने न सिर्फ भारत की दिफाई तैयारियों को मजबूत बनाने, बल्कि दिफाई जरूरियात के लिए दरामदात पर इन्हिसार कम करने का भी आजम किया है। वजीर मौसूफ ने कहा है कि मुसल्ला फौज की जदीदकारी के लिए मुख्तस बजट का 75% हिस्सा भारतीय सनद से दिफाई साजो सामान की खरीदारी के लिए महफूज रखा गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने आज वर्चुअल

0: तरीके पर नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस तरह उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के दरमियान रेल राब्ता बढ़ जाने का एक नया दौर शुरू हो गया है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए रेलवे के वजीर जनाब वैष्णो ने कहा कि रेलगाड़ी हफ्ते में 2 बार चला करेगी और उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल खित्तों के दरमियान भी राबते की सहूलत फराहम होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक से मुतालिक इदारे ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में फैली हुई बेचैनी पर तशवीश का इजहार किया है। उसने मुजाहिरीन और हिफाजती दस्तों के अहलकारों के मारे जाने की तफ्तीश का भी मुतालबा किया है। इंसानी हकूक से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर ओल्कर तुर्क ने पाकिस्तान के हुक्काम पर जोर दिया है कि वह तहम्मुल से काम लें, बुनियादी हकूक का तहफ्फुज़ करें और इलाकाई इंतखाबात से पहले तशद्दुद के वाक़यात की जिम्मेदारी तय करें। वहाँ इस महीने के आखिर में इलाकाई इंतखाबात होने हैं। जनाब तुर्क ने अमन सुकून की अपील की क्योंकि खित्ते में कशीदगी फैली हुई है। इसी दौरान वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा है कि सरकार हमेशा से कहती रही है कि लद्दाख और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम पूरा जम्मू कश्मीर का इलाका भारत का अटूट अंग है। अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन समझौते के नाकाम होने के बाद अमरीकी फौजों ने कल लगातार 7वीं रात ईरान पर हमले जारी रखे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि यह हमले कमांडर इन चीफ की हिदायत पर ईरान की फौजी सलाहियतों को कम करने के लिए किए जा रहे हैं। ईरानी मीडिया ने खबर दी है कि अमेरिकी फौज के फजाई हमलों की शुरुआत के कुछ ही देर बाद कल रात जुनूबी बंदरगाही शहरों बंदर अब्बास और सेरीक में कई धमाके सुने गए। दूसरी जानिब ईरान ने कहा है कि उसके ड्रोन्स ने खित्ते में अमरीकी मोर्चों के खिलाफ अपने ऑपरेशन के हिस्से के तौर पर उर्दुन और कुवैत में अमरीकी फौजी मराकज़ को निशाना बनाया है। वेनेजुएला में तबाहकुन जलजले से मरने वालों की तादाद बढ़कर 5,069 तक पहुंच गई है। कौमी असम्बली के सदर जॉर्ज रोड्रिग्स ने बताया कि 16,740 अफराद जख्मी हुए हैं जबकि 6,462 अफराद को बचाया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि 21,235 अफराज राजधानी काराकास और वस्ती रियासतों लागुएरा मिरांडा और अरागोआ में आरजी तौर पर बनाए गए 107 कैंपों में रह रहे हैं। पनामा के वजीर खारजा हावेर मार्टिनेज आचावास केस कल से भारत के 5 रोजा सरकारी दौरे पर होंगे। वो अपने दौरे में पीर को नई दिल्ली में तजारत व सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे। उसी रोज वो हैदराबाद हाउस में वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। खबर मिली है कि चीन के जुनूब मगरबी चोंगकिंग शहर में मिट्टी के तोदे गिरने के वाकये में 8 अफराद की जान तलफ हो गई जबकि 34 अफराद लापता बताए जाते हैं। सरकारी ज़राए अब्लाग का कहना है कि 10 अफराद को मलबे से निकाला गया है जिनमें से 2 शदीद जख्मी हुए हैं। बैडमिंटन में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी और ओलंपिक में 2 मरतबा तमगा जीतने वाली पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में 4थे नंबर की चीनी खिलाड़ी चेन जूफी मैच के दूसरे सेट के दौरान जख्मी होने के बाद रिटायर हो गई जिसके बाद पीवी सिंधु को फातिह करार दे दिया गया। कल फाइनल में सिंधु का मुकाबला जापान की खिलाड़ी अकाने यामागुची से होगा। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा के सतीश धवन खलाई मरकज से रॉकेट विक्रम 1 ने कामयाबी के साथ उड़ान भरी और इसे पहली बार निजी शोबे ने तैयार किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस कामयाबी के लिए इस प्रोजेक्ट से वाबस्ता टीम को मुबारकबाद दी है और कहा है कि यह भारत के खलाई सफर में एक दूरस और तारीखी तब्दीली लाएगा। वजीर दफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की पॉलिसी महज कोई बयान नहीं बल्कि ये सख्त कार्रवाई का अज़्म मुसम्मम है। अक़वामे मुत्तहिदा के इंसानी हकूक से मुतालिक इदारे ने पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में फैली हुई बेचैनी पर तशवीश का इजहार किया है और मुजाहिरीन की अमवात की छानबीन की ज़रूरत पर जोर दिया है। और पीवी सिंधु जापान के शहर टोक्यो में जारी बैडमिंटन के खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में पहुँच गई हैं। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं।

उर्दू सर्विस की नशरियात। पेश है प्रोग्राम मेरी पसंद। आज के इस प्रोग्राम में आकाशवाणी की उर्दू सर्विस चंद नगमे भूपेंद्र की आवाज में लेकर हाजिर है। ये है इस खूबसूरत और मखमली आवाज के मालिक भूपेंद्र के नाम हमारा खिराज अकीदत।

मेरी पसंद प्रोग्राम में आपने सुनी भूपेंद्र के गाए हुए नगमे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सुबह लोकगीतों के प्रोग्राम में आज हम आपको डोगरी लोकगीत सुनवा रहे हैं।

सुबह लोकगीतों के प्रोग्राम में आज आपने डोगरी लोकगीत सुने। अब आज का सुबह लोकगीतों का ये प्रोग्राम ख़त्म हुआ। ये आकाशवाणी है, मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर।

द ट्रेन फिल्म का नगमा अभी आपने मोहम्मद रफी की आवाज में सुना। प्रोग्राम की अगली पेशकश किशोर कुमार की आवाज में है। फिल्म है आन मिलो सजना।

किशोर कुमार की आवाज में नगमा भी आपने सुना। फिल्म का नाम था मेरे जीवन साथी। फिल्मी नगमों के प्रोग्राम की अगली पेशकश मोहम्मद रफी की आवाज में समात फरमाइए। फिल्म का नाम है महबूब की मेहंदी।

एक सफर है सुहाना।

0: उस फिल्म का नगमा भी आप सुन रहे थे किशोर दा का गाया हुआ। अगली पेशकश अमर प्रेम फिल्म से।
1: क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाए।

0: देर पहर।
1: फिल्मी नगमों के प्रोग्राम में सामीन आज आपने सुने अदाकार राजेश खन्ना पर फिल्माए हुए कुछ फिल्मी नगमे। ये था आकाशवाणी की उर्दू सर्विस की जानिब से इस अजीम अदाकार के नाम एक खराज अकीदत। आज का ये प्रोग्राम यही खत्म हुआ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशर होंगी।
2: ये आकाशवाणी है। अब आप मुदम्मार से खबरें सुनिए। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन खलाई मरकज से रॉकेट विक्रम 1 ने कामयाबी के साथ उड़ान भरी और इसे पहली बार निजी शोबे ने तैयार किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस कामयाबी के लिए इस प्रोजेक्ट से वाबस्ता टीम को मुबारकबाद दी है और कहा है कि भारत के खलाई सफर में एक दूररस और तारीखी तब्दीली लाएगा। वजीर दफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करना।

ने की भारत की पॉलिसी महज कोई बयान नहीं है बल्कि ये सख्त कार्रवाई का अज़्म मुसम्मम है। अक़वामे मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ से मुतालिक़ इदारे ने पाकिस्तान के ज़ेर क़ब्ज़ा जम्मू कश्मीर में फैली हुई बेचैनी पर तशवीश का इज़हार किया है और मुज़ाहरीन की अमवात की छानबीन की ज़रूरत पर ज़ोर दिया है। अमरीका और ईरान के दरमियान लड़ाई जारी है और ईरान ने आज कुवैत में ड्रोन और मिज़ाइल से ताबड़तोड़ हमले किए हैं। पीवी सिंधु जापान के शहर टोक्यो में जारी बैडमिंटन के खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। मिशन आगमन के तहत भारत का पहला निजी तौर पर तैयार करदा मदार में जाने वाला रॉकेट विक्रम 1 इंजन का आखिरी मरहला मुकम्मल करने और 450 किलोमीटर बुलंद मदार में पेलोड्स पहुंचाने के बाद कामयाबी के साथ मदार में दाखिल हो गया है। इस रॉकेट को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में वाक़ सतीश धवन खलाई मरकज से आज दोपहर 12:05 पर भेजा गया। इस कामयाबी के साथ भारत निजी शोबे के जरिए मदार में रॉकेट लॉन्च करने की सलाहियत हासिल करने वाला दुनिया का तीसरा मुल्क बन गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले निजी तौर पर तैयार करदा रॉकेट विक्रम 1 की कामयाबी पर स्काईरूट एयरोस्पेस की टीम को टेलीफोन के जरिए मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि यह तारीखी कामयाबी मुल्क के नौजवानों को आगे बढ़ने और इख्तिरा में अपना रोल अदा करने के लिए हौसला अफजाई करेगी। वज़ीर आज़म ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि स्काई रूट की टीम में ज़्यादातर नौजवान माहिरीन शामिल हैं। उन्होंने विक्रम 1 की टीम को मुलाकात के लिए भी दावत दी। बाद में एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर आज़म ने कहा कि यह कामयाबी भारत के खलाई सफ़र में एक तारीखी और फैसला कुन लम्हा है। उन्होंने कहा कि खलाई शोबे में निजी कंपनियों की बढ़ती हुई शमूलियत नई राहें हमवार कर रही हैं और इख्तरा की रफ्तार को तेज़ कर रही है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि यह कामयाबी मुल्क के बेशुमार नौजवानों को बड़े ख्वाब देखने और बेखौफ होकर नई ईजादात करने की तरगीब देगी। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी भारत के पहले निजी तौर पर तैयार करदा रॉकेट विक्रम 1 की कामयाब लॉन्च पर स्काई रूट की टीम को मुबारकबाद दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि मिशन भारत के तेजी से तरक्की करते हुए निजी खलाई शोबे के लिए एक अहम संग मील है। उन्होंने कहा कि यह कामयाबी खलाई टेक्नोलॉजी में मुल्क की बढ़ती हुई सलाहियत और फरोग पाती हुई खलाई मीशत की अक्कासी करती है। विक्रम 1 को हैदराबाद में वाक़ खलाई कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस ने डिज़ाइन और तैयार किया है। मिशन आगमन के तहत तैयार किया गया ये रॉकेट कम लागत और पायदार अंदाज में छोटे सैटेलाइट्स को खला में भेजने के लिए बनाया गया है। भारत के खलाई प्रोग्राम के बानी डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखे गए इस रॉकेट में ठोस ईंधन पर मबनी 3 मराहल हैं जबकि मदार में एडजस्टमेंट मॉड्यूल में रकीक ईंधन से चलने वाला रमन इंजन नस्ब है जो रॉकेट को दुरुस्त मदार में दाखिल करने और मदार में मतलूबा तब्दीलियां अंजाम देने में मदद फराहम करता है। ये रॉकेट जमीन की सतह से तकरीबन 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर की बुलंदी पर वाक़ मदार में पेलोड्स पहुंचाने की सलाहियत रखता है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की पॉलिसी सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि ये एक वाज़ेह दो टोक और मजबूत मौकफ है। आज नई दिल्ली में मुनक़िदा फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि भारत दहशतगर्दों को सिर्फ अपनी सरहदों पर ही नहीं बल्कि ज़रूरत पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी निशाना बनाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसका बखूबी मुशाहदा किया जो जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी जंग की एक नुमाया मिसाल थी। वज़ीर मौसूफ ने उजागर किया कि पिछले 12 बरस के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने दिफा के शोबे के अहया और इसे मजबूत बनाने को अपनी अव्वलीन तरजीहात में शामिल रखा। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने न सिर्फ भारत की दिफाई तैयारियों को मजबूत बनाने बल्कि दिफाई ज़रूरियात के लिए दरामदात पर इन्हिसार कम करने का भी अज़्म किया है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि मुसल्ह अफवाज की जदीदकारी के लिए मुख्तस बजट का 75% हिस्सा भारतीय सनअत से दिफाई साजो सामान की खरीदारी के लिए महफूज रखा गया है। सदर जमहूरी द्रौपदी मुर्मू कल से मालदोवा शिमाली मकदूनिया और रोमानिया के सरकारी दौरे पर रवाना होंगी। नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए वजारत खारजा में मगरबी उमूर के सेक्रेटरी सीवी जॉर्ज ने बताया कि सरकारी दौरे जमहूरिया मालदोवा जमहूरिया शिमाली मकदूनिया और रोमानिया के सदूर की दावत पर किए जा रहे हैं जो इस महीने की 25 तारीख तक जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि यह दौरा तारीखी अहमियत का हामिल है क्योंकि ये किसी भारतीय सदर जमहूरिया के जरिए जमहूरिया मालदोवा और शिमाली मकदूनिया के लिए अव्वलीन बाहमी दौरे होंगे। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने आज वर्चुअल वसीले से नई रामनगर देहरादून

0: देहरादून एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस तरह उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के दरमियान रेल रابطہ बढ़ाने का एक नया दौर शुरू हो गया है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए रेलवे के वजीर जनाब वैष्णव ने कहा कि रेलगाड़ी हफ्ते में 2 बार चला करेगी और उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल खित्तों के दरमियान भी रابطے की सहूलत फराहम होगी। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। अक़वामे मुत्तहिदा के इंसानी हकूक से मुताल्लिक इदारे ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में फैली बेचैनी पर तशवीश का इजहार किया है। उसने मुजाहिरीन और हिफाजती दस्तों के अहलकारों के मारे जाने की तफ्तीश का भी मुतालबा किया है। इंसानी हकूक से मुताल्लिक अक़वामे मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर वोल्कर तुर्क ने पाकिस्तान के हुक्काम पर जोर दिया है कि वो तहम्मुल से काम लें, बुनियादी हकूक का तहफ्फुज़ करें और इलाकाई इंतखाबात से पहले तशद्दुद के वाक़यात की जिम्मेदारी तय करें। वहाँ इस महीने के आखिर में इलाकाई इंतखाबात होने हैं। जनाब तुर्क ने अमन सुकून की अपील की क्योंकि खित्ते में कशीदगी फैली हुई है। इसी दौरान वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा है कि सरकार हमें हमेशा से ये कहती रही है कि लद्दाख और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम पूरा जम्मू कश्मीर का इलाका भारत का अटूट हिस्सा है। अमेरिका के साथ जारी ईरान की लड़ाई में शिद्दत आ गई है और ईरान ने आज कुवैत में ड्रोन और मिसाइल से ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इन हमलों की वजह से कुवैत को अपनी फजाई हदूद बंद करनी पड़ी, परवाजें मुअत्तल करनी पड़ी और खबरों के मुताबिक मुल्क के पानी और बिजली से मुतालिक तनसीबात को नुकसान पहुंचा है। ईरान के पासदारान इनकलाब ने बताया है कि उन्होंने कुवैत में अरिवजान ग्राउंड फोर्सेस सपोर्ट मरकज को निशाना बनाया और वहां मौजूद अमरीका के कई फौजी हलाक हो गए। उसने ये दावा भी किया है कि अमेरिका के अली असलेम अड्डे को भी, जहां रडार की तनसीबात हैं, ड्रोन से हमला किया गया। इसके अलावा ईरान की बहरिया ने भी हमले किए हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान अमन समझौता नाकाम होने के बाद अमेरिकी फौज ने भी लगातार 7वीं रात ईरान पर हमले जारी रखे। ईरान अमरीकी हमलों के जवाब में उर्दून और कुवैत में अमरीकी फौजी मराकज को निशाना बना रहा है। आज पूरी दुनिया में नेल्सन मंडेला बैन अल-अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन नेल्सन मंडेला के यौम पैदाइश की याद और इंसानियत के तई उनकी ज़िंदगी भर की खिदमात के सिले में मनाया जाता है। इस साल का मौजू है ये हमारे हाथ में है, जिसके ज़रिए गरीबी और नाबराबरी से नबर्द आजमा होने के लिए इनफरादी और इज्तमाही तौर पर निभाए गए किरदार को उजागर करना है। बैडमिंटन में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी और ओलंपिक में 2 मरतबा तमगा जीतने वाली पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन के खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में चौथे नंबर की चीनी खिलाड़ी चेन यूफी मैच के दूसरे सेट के दौरान जख्मी होने के बाद रिटायर हो गई, जिसके बाद पीवी सिंधु को फातह करार दिया गया। फीफा वर्ल्ड कप में तीसरे मुकाम के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस और इंग्लैंड का मुकाबला होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 2:30 बजे शुरू होगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन खलाई मरकज से रॉकेट विक्रम 1 ने कामयाबी के साथ उड़ान भरी और इसे पहली बार निजी शोबे ने तैयार किया है। वजीर आजम ने मोदी ने इस कामयाबी के लिए इस प्रोजेक्ट से वाबस्ता टीम को मुबारकबाद दी है और कहा है कि ये भारत के खलाई सफर में एक दूरस और तारीखी तब्दीली लाएगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की भारत की पॉलिसी महज कोई बयान नहीं है, बल्कि ये सख्त कार्रवाई का अज़्म मुसम्मम है। अक़वामे मुत्तहिदा के इंसानी हकूक से मुताल्लिक इदारे ने पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में फैली बेचैनी पर तशवीश का इजहार किया है और मुजाहिरीन की अमवात की छानबीन की ज़रूरत पर जोर दिया है। अमरीका और ईरान के दरमियान लड़ाई जारी है और ईरान ने आज कुवैत में ड्रोन और मिज़ाइल से ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्रिडिश पर आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक शाम के 5 बजने को है। दूसरी मजलिस की नशरियात का वक्त अब खत्म होता है।
2: यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। संध्या के 5 बजे हैं। युवा साथी सुनिए अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी।

वाणी लेकर आप सभी के बीच उपस्थित हैं आपका अपना साथी करण वर्मा। स्वागत है आपका हमारे 18 जुलाई के इस अंक में, जिसका आगाज हम करेंगे पाली जिले के पर्यटन स्थलों से आज की बात के साथ। श्रोताओं, पाली इतिहास प्रसिद्ध दानी भामाशाह की जन्मस्थली रहा है। इसका प्राचीन नाम पालिका था। जोधपुर के पूर्ववर्ती राज्य से अलग होकर बना पाली जिला खूबसूरत जैन मंदिरों और अन्य विस्तृत स्मारकों के रूप में अपनी समृद्ध विरासत और संस्कृति को दर्शाता है। तो मित्रों, आइए अब बात करते हैं यहाँ के पर्यटन स्थलों की, जैसे रणकपुर के जैन मंदिर। साथियों, पाली की देसूरी तहसील में स्थित रणकपुर का चौमुखा जैन मंदिर प्रसिद्ध श्वेतांबर जैन मंदिर है, जो 1444 खंभों पर खड़ा है। माद्री पर्वत की छाया में स्थित इस मंदिर को महाराणा कुंभा के काल में धरणशाह द्वारा शिल्पी देपा की देखरेख में सन 1439 ईस्वी में बनवाया गया था। ये मंदिर भगवान आदिनाथ को समर्पित है। ओम बन्ना धाम। श्रोताओं, ओम बन्ना, जिन्हें बुलेट बाबा के नाम से भी जाना जाता है, इनके बारे में कहा जाता है कि इनके पास एक 350 सीसी की रॉयल एनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल थी, परंतु इनके समाधि वाले स्थान पर ही एक एक्सीडेंट में इनका देहांत हो गया था। ये सन 1988 की बात है, जब पुलिस ने इस बाइक को अपने कब्जे में लेकर पुलिस स्टेशन के अंदर खड़ी कर दी। तब अगले दिन सुबह ये बाइक उसी स्थान पर वापस मिली और आज भी ये बाइक यहाँ मौजूद है। इस धाम पर काफ़ी श्रद्धालु आते हैं और अपने सुरक्षित यात्रा की कामना करते हैं। मूछाला महावीर। मित्रों, इनका मंदिर कुंभलगढ़ अभयारण्य में घाने राव के निकट स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 10वीं सदी में हुआ था। मंदिर परिसर में मूछों वाले महावीर स्वामी की मूर्ति स्थापित है। तो दोस्तों, चर्चा और भी करेंगे, आइए पहले चलते हैं संगीत की दुनिया में और सुनते हैं फिल्म धड़कन का ये गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: दोस्तों, हम बात कर रहे थे पाली जिले के पर्यटन स्थलों की, जैसे जवाई बांध। मित्रों, ये बांध लूणी की सहायक नदी जवाई पर ही निर्मित किया गया है। इस बांध का निर्माण जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह ने करवाया था। ये हमारे पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। इस बांध को हमारे राज्य का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। इस बांध से पाली व जोधपुर जिले को जलापूर्ति होती है। परशुराम महादेव मंदिर, साथियों, एक गुफा में स्थित भगवान शिव को समर्पित परशुराम महादेव मंदिर के बारे में एक रोचक कथा प्रचलित है। मान्यता है कि भगवान विष्णु के अवतार परशुराम ने कुल्हाड़ी से गुफा बनाकर यहां भगवान शिव की पूजा की थी। समुन्दर तल से 390 फीट से अधिक ऊपर इस मंदिर में स्वाभाविक रूप से भगवान गणेश और भगवान शिव की प्रतिमाएं हैं। निम्बोकानाथ मंदिर, श्रोताओं, फालना और सांडेराव मार्ग पर भगवान शिव को समर्पित निम्बोकानाथ मंदिर स्थित है। पौराणिक कथा के अनुसार पांडवों की मां कुंती भगवान शिव की पूजा करती थी और अपने निर्वासन काल में अधिकांश समय उन्होंने महादेव की पूजा करते हुए यहां बिताया था। पांडवों ने इस क्षेत्र में नवदुर्गा का निर्माण भी किया था। असीम शांति युक्त इस मंदिर में वर्ष भर पर्यटकों का तांता लगा रहता है। सोजत दुर्ग,

दोस्तों, सोजत का किला मारवाड़ का सीमावर्ती दुर्ग है, जो जोधपुर से लगभग 110 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। राव जोधा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र निंबा को सोजत में नियुक्त किया था, और निंबा ने नानी सिरडी नामक डूंगरी पर 1460 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। इस दुर्ग को वर्तमान स्वरूप राव मालदेव ने दिया था। तो मित्रों, ये थे पाली जिले के पर्यटन स्थल। युववाणी कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए एक बार फिर चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में और सुनते हैं फिल्म टू स्टेटस का ये गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: बदलो बदलो आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: दोस्तों आइए अब सुनते हैं एक वार्ता, प्राथमिक उपचार का महत्व। वार्ताकार है प्रांजल।
5: नमस्कार साथियों, आज हम बात करते हैं प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड की। हम सभी अपने रोजमर्रा के जीवन में कभी न कभी ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जब किसी को अचानक चोट लग जाती है, कोई जल जाता है, बच्चा खेलते खेलते गिर जाता है या किसी व्यक्ति की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। ऐसे समय में डॉक्टर या अस्पताल तक पहुंचने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन यही कुछ मिनट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यदि उस समय सही प्राथमिक उपचार मिल जाए तो कई बार चोट को गंभीर होने से रोका जा सकता है, दर्द कम किया जा सकता है और कुछ मामलों में किसी व्यक्ति की जान भी बचाई जा सकती है। इसीलिए प्राथमिक उपचार की जानकारी केवल डॉक्टरों या स्वास्थ्य कर्मियों के लिए ही नहीं बल्कि हम सभी के लिए आवश्यक है। चाहे आप विद्यार्थी हों, गृहिणी हों, किसान हों, शिक्षक हों या किसी भी पेशे से जुड़े हों, फर्स्ट एड की सामान्य जानकारी कभी भी किसी की मदद करने में काम आ सकती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्राथमिक उपचार या फर्स्ट एड होता क्या है। फर्स्ट एड का मतलब है किसी घायल या अचानक बीमार हुए व्यक्ति को डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले दी जाने वाली शुरुआती सहायता। इसका उद्देश्य बीमारी या चोट का पूरा इलाज करना नहीं होता बल्कि मरीज की स्थिति को स्थिर रखना, उसकी तकलीफ कम करना और आगे होने वाले नुकसान को रोकना होता है। अब एक सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है, क्या घर पर दिया जाने वाला फर्स्ट एड और अस्पताल में मिलने वाला प्राथमिक उपचार एक ही चीज है? पहली नजर में ये दोनों एक जैसे लग सकते हैं। घर पर दिए जाने वाले फर्स्ट एड का उद्देश्य होता है मरीज को तुरंत शुरुआती सहायता देना, उसकी स्थिति को स्थिर रखना और उसे सुरक्षित डॉक्टर या अस्पताल तक पहुंचाना। वैसे तो फर्स्ट एड कोई भी व्यक्ति जिसे फर्स्ट एड के बारे में सामान्य जानकारी हो दे सकता है, वहीं अस्पताल में दिया जाने वाला प्राथमिक उपचार डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा दिया जाता है। जरूरत पड़ने पर एक्सरे, खून की जांच और दूसरे टेस्ट किए जाते हैं। वहां उपलब्ध दवाइयां और उपकरण घर पर उपलब्ध नहीं होते। याद रखिए, फर्स्ट एड का सबसे बड़ा उद्देश्य है समय पर सही सहायता देना। कई बार घबराहट में लोग गलत कदम उठा लेते हैं, जबकि शांत रहकर और सही जानकारी के साथ की गई छोटी सी मदद भी बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकती है। अब आइए जानते हैं कि किन किन परिस्थितियों में प्राथमिक उपचार की आवश्यकता पड़ती है और ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए। असल में ऐसी बहुत सी परिस्थितियां हैं जहां थोड़ी सी समझदारी और सही समय पर की गई मदद बहुत काम आ सकती है। जैसे किसी के हाथ पर कट लग जाना, जल जाना, घर में फिसल कर गिर जाना, नाक से खून आना, किसी जानवर के काट लेने पर, बच्चों को चोट लग जाना या फिर किसी व्यक्ति की तबीयत अचानक खराब हो जाना। इन सभी सिचुएशंस में सबसे पहली बात है घबराना नहीं। सबसे पहले आसपास का माहौल देखिए, ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आप और घायल व्यक्ति दोनों सुरक्षित हैं। उसके बाद ही मदद करना शुरू करें। अब बात करते हैं कुछ सामान्य इंजरीज की जो हमारे घरों में अक्सर देखने को मिलती हैं। मान लीजिए किसी का हाथ या उंगली चाकू से कट गई। सबसे पहले घाव को साफ बहते पानी से धोइए। अगर खून निकल रहा है तो साफ कपड़े या गौज से कुछ मिनट तक हल्का दबाव बनाकर रखिए। ज्यादातर छोटे घावों में इससे खून रुक जाता है। इसके बाद एंटीसेप्टिक लगाकर साफ पट्टी बांध सकते हैं। लेकिन अगर घाव गहरा हो, खून लगातार बह रहा हो या कट किसी गंदी या जंग लगी चीज से लगा हो तो बिना देर किए नजदीकी डॉक्टर के पास जाइए। अब बात करते हैं जलने की। रसोई में खाना बनाते समय या गर्म चाय, दूध या तेल से जलना बहुत आम बात है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले जले हुए हिस्से को ठंडे बहते पानी के नीचे लगभग 20 मिनट तक रखें। इससे दर्द भी कम होता है

और त्वचा को होने वाला नुकसान भी। एक बहुत जरूरी बात, आज भी कई लोग जले हुए स्थान पर टूथपेस्ट, घी, मक्खन या हल्दी लगा देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है और बाद में इलाज भी मुश्किल हो सकता है। अगर जलन ज्यादा हो, बड़े हिस्से में हो या चेहरे, हाथों या आंखों के आसपास हो तो तुरंत अस्पताल जाएं। अब बात करते हैं छोटे बच्चों की। बच्चे स्वभाव से नटखट होते हैं, चंचल होते हैं, इसलिए वो खेल खेल में कभी गिर जाते हैं और उन्हें चोट लग जाती है। घर में छोटे बच्चे सबसे ज्यादा चोट खाते हैं, कभी दौड़ते हुए गिर गए तो कभी किसी मेज या कुर्सी से टकरा गए। अगर चोट हल्की है और बच्चा कुछ देर बाद सामान्य हो जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं। अगर कहीं से थोड़ा खून निकल रहा है तो वहाँ एंटीसेप्टिक लगाकर गौज से साफ करें और खून अगर रुक जाए तो उस पर बैंडेड लगा दें। अगर खून ज्यादा बह रहा है या रुक ही नहीं रहा तो जल्दी से जल्दी नजदीकी अस्पताल ले जाएं और इलाज करवाएं। लेकिन अगर बच्चा बेहोश हो जाए या बार बार उल्टी करे या खून बहुत ज्यादा बह जाए, बहुत ज्यादा सुस्त दिखाई दे या लगातार रोता ही रहे तो इसे हल्के में बिल्कुल ना लें, तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। बिल्कुल छोटे बच्चों यानी इन्फेंट्स के बारे में हमें और भी ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। वो हर चीज को मुंह में डालने की कोशिश करते हैं, इसलिए सिक्के, बटन, छोटी बैटरी या ऐसी कोई भी छोटी चीज उनकी पहुंच से दूर रखें। अगर किसी बच्चे के गले में कोई चीज फंस जाए और उसे सांस लेने में परेशानी हो तो ये मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन होती है। ऐसी स्थिति में बच्चे को तुरंत किसी नजदीक के अस्पताल में ले जाना चाहिए और ऐसी स्थिति में तुरंत मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। अब बात करते हैं डॉग बाइट की। ज्यादातर समय कुत्ते किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन कभी कभी डर, गुस्से या अचानक हुई किसी प्रतिक्रिया के कारण वो हमें काट लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कुत्ता काट ले, चाहे वह पालतू ही क्यों ना हो, तो उसकी प्राथमिक चिकित्सा कैसे करें? सबसे पहले घाव को साबुन और बहते पानी से कम 15 मिनट तक अच्छी तरह धोइए। इसके बाद उसे सुखाइए और पट्टी ना बांधें। अगर खून ज्यादा बह रहा है तो हल्के दबाव के साथ साफ कपड़ा लगाएं, साफ पट्टी बांधें और बिना देर किए अस्पताल जाएं। रेबीज से बचाव के टीके समय पर लगवाना बहुत जरूरी होता है। अब बात करते हैं गिरने की। गिरना एक ऐसी घटना है जो किसी के भी साथ और किसी भी उम्र में हो सकती है। घर में फिसलन भरे फर्श, सीढ़ियां, बाथरूम या खेलते समय होने वाली छोटी सी लापरवाही भी गिरने का कारण बन सकती है। कई बार चोट मामूली होती है, लेकिन कुछ मामलों में फ्रैक्चर या अंदरूनी चोट भी हो सकती है। बच्चों और बुजुर्गों में गिरने की घटनाएं अक्सर होती हैं। अगर केवल हल्की सूजन या दर्द है तो बर्फ को कपड़े में लपेटकर थोड़ी देर सिकाई की जा सकती है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा दर्द हो, हड्डी टूटने का शक हो, सिर में चोट लगी हो या व्यक्ति बेहोश हो जाए तो उसे बार बार उठाने या चलाने की कोशिश ना करें, बल्कि तुरंत अस्पताल पहुंचाएं। अब बात करते हैं पेट दर्द की। जरा सोचिए, आप अपने परिवार के साथ किसी शादी या त्योहार में गए, स्वादिष्ट खाना खाया, घर लौटे और कुछ ही देर बाद परिवार के किसी सदस्य का तेज पेट दर्द शुरू हो गया। ऐसे समय में अक्सर तुरंत लोग कोई भी दर्द की दवा ले लेते हैं या घरेलू नुस्खे अपनाते हैं। हर पेट दर्द एक जैसा नहीं होता, कई बार ये सामान्य गैस की वजह से हो जाता है, लेकिन कई बार ये किसी गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है। इसलिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि दर्द कितना गंभीर है और उसके साथ कोई दूसरे लक्षण तो नहीं। अगर दर्द बहुत तेज हो, लगातार बढ़ रहा हो, उल्टी हो रही हो, तेज बुखार हो या खून आ रहा हो तो घरेलू इलाज करने के बजाय तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। फर्स्ट एड की बात हो रही है और फर्स्ट एड किट का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये एक छोटी सी किट है जो किसी भी इमरजेंसी में हमारी सबसे पहली मददगार बन सकती है। हर घर, स्कूल, कार्यालय, फैक्ट्री, वाहन और यहाँ तक कि यात्रा के दौरान भी एक अच्छी तरह से तैयार फर्स्ट एड किट जरूर होनी चाहिए, क्योंकि दुर्घटनाएं कभी भी और कहीं भी हो सकती हैं। लेकिन केवल किट खरीद लेना ही पर्याप्त नहीं होता, उसकी देखभाल भी उतनी ही जरूरी होती है। समय समय पर जरूर चेक करें कि कोई दवाई एक्सपायर तो नहीं हो गई। इस्तेमाल हो चुका सामान दोबारा रख दें और किट को हमेशा साफ, सूखी और ऐसी जगह रखें जहां जरूरत पड़ने पर तुरंत मिल जाए। साथ ही उसे बच्चों की पहुंच से दूर रखें ताकि वो गलती से कोई दवाई ना खा लें। अगर घर के सभी बड़े सदस्यों को ये पता हो कि फर्स्ट एड किट कहां रखी है और उसका इस्तेमाल कैसे करना है तो किसी भी इमरजेंसी में बिना घबराए तुरंत मदद शुरू की जा सकती है। कई बार यही शुरुआती सहायता मरीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होती है। हर घर में एक फर्स्ट एड किट जरूर होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। एक अच्छी फर्स्ट एड किट में साफ गौज, बैंडेज, मेडिकल

0: टेप, कॉटन और दवाइयाँ जैसे कि एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, एंटीसेप्टिक क्रीम, औजार जैसे कि कैंची, चिमटी, डिस्पोजेबल ग्लव्स, थर्मामीटर, ORS के पैकेट, दर्द और बुखार की सामान्य दवाइयाँ और हैंड सैनिटाइजर जैसी चीजें होनी चाहिए। साथ ही समय समय पर ये भी देखते रहें कि कोई दवा एक्सपायर तो नहीं हो गई। अगर किट से कोई सामान इस्तेमाल हो गया हो तो उसे दोबारा रख दें ताकि जरूरत पड़ने पर किट पूरी तरह तैयार मिले। अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि फर्स्ट एड इलाज का विकल्प तो नहीं है, लेकिन सही समय पर दिया गया फर्स्ट एड किसी भी मरीज के लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। इसलिए इसकी जानकारी खुद भी रखिए, अपने परिवार को भी बताइए और हमेशा कोशिश कीजिए कि किसी इमरजेंसी में घबराने के बजाय समझदारी से काम लें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद।
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक वार्ता, प्राथमिक उपचार का महत्व। वार्ताकार थे प्रांजल। तो मित्रों, बातें और भी करेंगे, आइए एक बार फिर चलते हैं रंगमंच की दुनिया में और सुनते हैं फिल्म हंगामा का ये गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: दोस्तों, वर्तमान समय में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ती जा रही है और हम विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों की ओर ध्यान दे रहे हैं। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति है होम्योपैथी। ये एक प्राकृतिक और सुरक्षित उपचार वाली प्रणाली मानी जाती है, जिसका उद्देश्य रोग को दबाना नहीं जबकि शरीर की आंतरिक शक्ति को बढ़ाकर रोग को जड़ से समाप्त करना है। श्रोताओं, होम्योपैथी की स्थापना जर्मनी के प्रसिद्ध चिकित्सक सैमुअल हैनीमैन ने की थी। इसका मुख्य सिद्धांत है समय सम समयति, यानी जैसा रोग वैसी ही औषधि। इसका मतलब यही है कि जिस पदार्थ से किसी स्वस्थ व्यक्ति में रोग के लक्षण उत्पन्न होते हैं, वही पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में रोगी के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। मित्रों, होम्योपैथी का सबसे बड़ा महत्व यही है कि इसमें दवाइयां प्राकृतिक स्रोतों से बनाई जाती हैं और इनके दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। यही कारण है कि ये बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए भी सुरक्षित मानी जाती है। इसके अलावा ये केवल रोग के लक्षणों का ही नहीं जबकि पूरे व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्थितियों का भी ध्यान रखती है। साथियों, होम्योपैथी में उपचार धीरे धीरे होता है लेकिन ये स्थायी और गहराई से असर करता है। ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है जिससे व्यक्ति भविष्य में भी स्वस्थ बना रहता है। आज के समय में जब एलोपैथी दवाइयों के दुष्प्रभाव सामने आ रहे हैं, तब होम्योपैथी एक अच्छा विकल्प बनकर उभरी है। सही दवा और सही मात्रा का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए आवश्यक है कि होम्योपैथी का उपयोग योग्य चिकित्सक की सलाह से ही किया जाना चाहिए। वास्तव में होम्योपैथी एक सरल, सुरक्षित और प्रभावी चिकित्सा पद्धति है जो आधुनिक जीवन में स्वास्थ्य को स्वस्थ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो दोस्तों, चर्चा और भी करेंगे, अब समय एक गीत का है। लीजिए अब सुनिए फिल्म यस बोस का ये गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: दोस्तों, जीवन एक सतत यात्रा है जिसमें उतार चढ़ाव, सुख दुख और सफलता असफलता का सामना करना पड़ता है। इस यात्रा में संघर्ष का विशेष महत्व होता है। संघर्ष ही वो साधन है जो मनुष्य को मजबूत, आत्मनिर्भर और सफल बनाता है। बिना संघर्ष के जीवन नीरस और उद्देश्यहीन हो जाता है। श्रोताओं, संघर्ष मनुष्य को अपनी क्षमताओं को पहचानने का अवसर भी देता है।

जब व्यक्ति कठिनाइयों का सामना करता है तब उसे अपनी वास्तविक शक्ति और सामर्थ्य का भी एहसास होता है। यही संघर्ष उसे आगे बढ़ने की भी प्रेरणा देता है। जो लोग जीवन में संघर्ष से घबराते नहीं हैं वे ही अंततः सफलता प्राप्त करते हैं। साथियों, संघर्ष का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि ये हमें धैर्य और सहनशीलता सिखाता है। जीवन का हर कार्य तुरंत सफल नहीं होता, जबकि निरंतर प्रयास और संघर्ष से ही वो कार्य सफल होता है। संघर्ष के दौरान व्यक्ति अपनी असफलताओं से सीखता है और अपने लक्ष्य की ओर अधिक दृढ़ता से बढ़ता है। मित्रों, इतिहास भी इस बात का गवाह है कि जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं उन्होंने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया है। उनके संघर्ष ही उनकी सफलता की कहानी बन गए हैं। यदि वे संघर्ष से डरकर पीछे हट जाते तो शायद वे कभी महान नहीं बन पाते। वास्तव में संघर्ष हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। ये हमें न केवल सफलता की ओर ले जाता है जबकि एक बेहतर इंसान भी बनाता है। इसीलिए हमें संघर्ष से डरना नहीं चाहिए जबकि उसे स्वीकार कर अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। तो श्रोताओं, ये था जीवन में संघर्ष का महत्व। युववाणी कार्यक्रम में अब समय एक गीत का है। लीजिए अब सुनिए फिल्म दिलवाले का ये गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: दोस्तों, आइए अब बात करते हैं टुडेज हिस्ट्री यानी आज के इतिहास की। श्रोताओं, आज ही के दिन सन 1918 में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नेल्सन मंडेला का जन्म भी हुआ था। 18 जुलाई के दिन ही सन 1921 में अमेरिका के प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री जॉन ग्लेन का जन्म भी हुआ था, जो पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाने वाले पहले अमेरिकी भी बने थे। आज ही के दिन सन 1947 में भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को शाही स्वीकृति भी मिली थी। मित्रों, 18 जुलाई के दिन ही सन 1980 में टेलीविजन से पहला रंगीन प्रसारण मद्रास से किया गया था। आज ही के दिन सन 1861 में भारत की पहली महिला स्नातक और पहली महिला फिजिशियन कादम्बिनी गांगुली का जन्म भी हुआ था। 18 जुलाई के दिन ही सन 2012 में हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता राजेश खन्ना का निधन भी हुआ था। तो श्रोताओं, ये था आज का इतिहास। युववाणी कार्यक्रम के आखिर में आइए चलते चलते सुनते हैं फिल्म बंटी और बबली का ये गीत।

दोस्तों, इसी गीत के साथ आज का हमारा युवाणी कार्यक्रम यहीं तक। अब अपने साथी करण वर्मा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी। आकाशवाणी का यह कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर। संध्या के 6 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण, लेकिन पहले सुनिए यह संदेश।

श्रोताओं, आज संध्या 6:05 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सराय की। संध्या 6:30 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार, 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थान में प्रादेशिक समाचार आप सुन पाएंगे हमारे जयपुर केंद्र से। संध्या 7:00 ग्रामीण परिवार सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम चौपाल। आज चर्चा के विषय होंगे सोलर पैनल, सही दिशा और आंधी से सुरक्षा, किसान भाइयों के लिए ज़रूरी जानकारी, दीमक से बचाव और उपलब्ध होने पर बाजार भाव और मौसम संबंधी जानकारी भी आपको दी जाएगी। इसके अलावा आप सुन पाएंगे आज एक वार्ता, कपास की फसल में कीट रोग नियंत्रण, वार्ताकार होंगे हरजिंदर सिंह। संध्या 7:45 पर आप सुन पाएंगे फिल्मी भक्ति गीत। कार्यक्रम एक ही फिल्म से आप सुन पाएंगे आज रात 8:00।

रात्रि 8:30 पर आप सुन पाएंगे स्पोर्ट्स कैन, 8:45 पर समाचार संध्या और 9 बजे न्यूज़ एट 9। ये तीनों कार्यक्रम आप सुन पाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। सुगम संगीत आप सुन पाएंगे हमारे केंद्र से रात्रि 9:15 पर। 9:30 पर आप सुन पाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका। 10 बजे आप सुन पाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। रात 11 बजे आप सुन पाएंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। आज की ये सभा संपन्न होगी रात्रि 11:10 पर।

यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। मीडियम वेव 326.79 यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ओन एआईआर पर। संध्या के 6:05 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम सराय की

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सराय की आकाशवाणी का। यह कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। संध्या के 6:20 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार। समाचारों की कृपया प्रतीक्षा करें।

प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साइबर अपराध की रोकथाम के लिए हेल्पलाइन को प्रभावी और मजबूत बनाने को कहा। भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण पर स्काईरूट एरोस्पेस की सराहना की। राजस्थान और मध्य प्रदेश के वन क्षेत्रों को आपस में जोड़ने की महत्वाकांक्षी चीता कॉरिडोर परियोजना पर दोनों राज्यों की सहमति। और प्रदेश में मॉनसून सुस्त, अब तक सामान्य से कम बरसात हुई। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर में पुलिस हेडक्वार्टर में साइबर क्राइम और डिजिटल अरेस्ट को लेकर बैठक की। मुख्यमंत्री ने साइबर ठगी और संगठित अपराधों के पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म करने पर जोर दिया। उन्होंने अपराधियों के वित्तीय लेनदेन और सोशल नेटवर्क को तोड़ने की बात कही। बैठक के दौरान साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर R4C की प्रगति की समीक्षा

0: की गई। गौरतलब है कि ये केंद्र राज्य में ऑनलाइन ठगी और डिजिटल अरेस्ट को रोकने के लिए बनाया गया है। इसके तहत 1930 हेल्पलाइन के विस्तार और 24/7 संचालन के लिए काम किया जाएगा। साथ ही राज्य के सभी जिलों में साइबर पुलिस थाने संचालित किए जा रहे हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में राज्य में प्रसूताओं की मृत्यु और खराब स्वास्थ्य के मामले पर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई। मुख्य सचिव ने आज जयपुर के स्वास्थ्य भवन से ये वर्चुअल बैठक की। उन्होंने प्रसूताओं के स्वास्थ्य की सघन निगरानी के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान की जानकारी ली। साथ ही गर्भावस्था के अधिक जोखिम वाले मामलों की पहचान करने तथा उनका अलग रिकॉर्ड रखने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने सभी अस्पतालों में लेबर रूम में पर्याप्त जीवन रक्षक दवाइयां और अन्य व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में सभी जिला अस्पतालों के अधीक्षक और स्वास्थ्य अधिकारी तथा मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य जुड़े। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा है कि किसी भी शिक्षण संस्थान में पढ़ने वाले विद्यार्थियों से सेफ्टी टैंक की सफाई करवाना जोखिम भरा और गंभीर लापरवाही का मामला है। श्री बेढम ने डीग जिले के मीलखेड़ा स्थित मदरसे में सेफ्टी टैंक की सफाई के दौरान हुए हादसे को अत्यंत दुखद बताया है। आज भरतपुर सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में गृह राज्य मंत्री ने कहा कि घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू किया। हालांकि सेफ्टी टैंक में जहरीली गैस से एक छात्रा की मौत हो गई, वहीं एक घायल छात्रा का अलवर के अस्पताल में इलाज करवाया जा रहा है।
1: तो बच्चे हमारे यहाँ अध्ययन के लिए आते हैं और अध्ययन के लिए आने वाले बच्चों को इस तरह के काम कराया जाना, मैं समझ सकता हूँ कि व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। पुलिस ने रात को FIR दर्ज कर ली है। जो भी कानून सम्मत कार्रवाइयाँ होंगी वो निश्चित रूप से करेंगे। हमारी प्राथमिकता है कि बच्चे सुरक्षित रहें, बच्चे शिक्षण ग्रहण करें, उनकी उचित व्यवस्थाएं हो। तो उन सारी चीजों को देखते हुए सरकार ने तुरंत संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पहली प्राथमिकता बच्चों की जान बचाना, उनको सुरक्षित रखना, अच्छी शिक्षा मिले। लेकिन इस तरह का कृत्य कोई करता है तो वो शर्मनाक है और कानून में जो बनेगा निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी।
0: सीकर जिले के कटराथल स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय में आज शेखावाटी ज्ञान सभा आयोजित की गई। ज्ञान सभा का उद्देश्य शिक्षा जगत, युवाओं और समाज के बीच राष्ट्र निर्माण से जुड़े विचारों पर संवाद स्थापित करना और इसे आगे बढ़ाना है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आर्थिक प्रगति के साथ ही शिक्षा और संस्कारों पर जोर दिया।
2: आजादी के 100 वर्ष पूर्ण होने को हम एक औपचारिक समारोह तक सीमित नहीं करके विश्व भर में विकसित भारत के रूप में अपने आप को स्थापित करने मनाने की दृष्टि पर कार्य कर रहा है। अपना उद्देश्य की 2027 में हम निश्चित रूप से शिक्षा के में और विकसित भारत के दृष्टि से देश के सबसे आगे जाएंगे।
0: विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इस अवसर पर कहा कि सभी को भारतीय मूल्यों पर आधारित विकास की दिशा में बढ़ना चाहिए। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने पेंशन संबंधी विवादों का समाधान प्रशासनिक तौर पर किए जाने की बात कही है। वे आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमेबाजी पर राष्ट्रीय कार्यशाला में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इससे पेंशनधारियों को अदालत जाने के लिए मजबूत नहीं होना पड़ेगा। डॉक्टर सिंह ने कहा कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने कई तरह के सुधार किए हैं। प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए ऑनलाइन प्रणाली के जरिए पेंशन सुविधाएं शुरू की गई हैं। इस अवसर पर अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने शून्य पेंशन मुकदमेबाजी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समन्वित प्रयासों की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक चलने वाले मुकदमेबाजी के बजाय बेहतर नीति, प्रौद्योगिकी और संस्थागत तंत्रों के जरिए विवादों का समाधान किया जाना चाहिए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण पर देश भर में उत्साह है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई नेताओं ने इस महत्वपूर्ण

0: पूर्ण सफलता पर स्काई रूट एरोस्पेस को बधाई दी है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने विक्रम वन टीम की इस ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना करते हुए कहा कि ये कामयाबी देश के युवाओं को नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।
1: सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई
2: सर, वी आर वेरी वेरी प्रिविलेज्ड टू हियर यू।
1: स्काई रूट ने दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। कब से मेरा ध्यान जो गया, आपकी पूरी टीम 25-30 साल की दिखती है। आपका जो कुछ भी मिशन है, मैं इसको एक प्रकार से वंदे मातरम मिशन ही देखता हूँ कि भारत माँ की गरिमा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना, नई पीढ़ी को टेक्नोलॉजी को लाभ देना और नई पीढ़ी को टेक्नोलॉजी में आने के लिए प्रेरित करना।
0: केंद्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये सफलता अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है, साथ ही वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विक्रम वन के सफल प्रक्षेपण को देश के अंतरिक्ष इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बताया है। उन्होंने इसे भारतीय वैज्ञानिकों की तकनीकी आत्मनिर्भरता और नवाचार का प्रतीक बताते हुए कहा कि इस पर हर देशवासी को गर्व है। ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम वन का प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। ये भारत का निजी तौर पर विकसित प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद के एरोस्पेस स्टार्टअप स्काई रूट ने बनाया है। इस ऐतिहासिक मिशन को आगमन नाम दिया गया है, जो अंतरिक्ष में निजी क्षेत्र के प्रवेश के नए युग का प्रतीक है। इस सफल प्रक्षेपण के साथ ही भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के वन क्षेत्रों को आपस में जोड़ने के महत्वाकांक्षी चीता कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर दोनों राज्यों के बीच सैद्धांतिक सहमति बन गई है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA के विशेषज्ञों के दल ने कोटा और रावत भाटा क्षेत्रों के जंगलों का निरीक्षण करने के बाद पूरे क्षेत्र को चीतों के स्थायी पुनर्वास के लिए अनुकूल माना है। ये कॉरिडोर राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और मध्य प्रदेश के गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य के बीच प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीतों की बढ़ती तादाद को देखते हुए इस विशेष कॉरिडोर की जरूरत महसूस की जा रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के निर्देश और दोनों राज्यों की उच्च स्तरीय बैठकों के बाद इस परियोजना की दिशा में प्रयास तेज हो गए हैं। इस कॉरिडोर के विकसित होने से रावत भाटा और आसपास के करीब 400 किलोमीटर के क्षेत्र को चीतों के प्राकृतिक आवास के रूप में काम में लिया जा सकेगा। कांग्रेस नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने आज जयपुर के छात्रों की गूंज अभियान के तहत छात्र संविधान संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुए कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ भी शामिल हुए। इस दौरान श्री पायलट ने बढ़ती बेरोजगारी और पेपर लीक के मुद्दों को लेकर विद्यार्थियों के भविष्य पर चिंता जताई।
3: आप कोचिंग करो, ट्यूशन करो, किराया दो, मेस का किराया दो, खाने का, किताबों का, लाखों रुपए गरीब परिवार अपना पेट काट के उस पूंजी को जो बच्चे बच्चों के भविष्य में लगाता है, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। आपके पास जिम्मेदारी इस बात की है कि निष्पक्ष पारदर्शी आप परीक्षा कराएं, लेकिन मुद्दा ये है कि जवाबदेही किसकी है। लेकिन ये छात्र घर में एक या दो हो सकते हैं, लेकिन भविष्य पूरे परिवार का है। ऐसा कोई बाप नहीं है, ऐसी कोई माँ नहीं है जो नहीं चाहती कि हमारे बच्चे हमसे आगे बढ़े।
0: और अब मौसम। राज्य में मॉनसून फिलहाल सुस्त बना हुआ है और अधिकतर स्थानों पर गर्मी और उमस का असर है। जल संसाधन विभाग ने अब तक हुई बारिश के आंकड़े जारी करते हुए बताया है कि इस मॉनसून सीजन के दौरान सामान्य से कम बरसात दर्ज की गई है। किसी भी ज़िले में अब तक असामान्य वर्षा नहीं हुई है। वहीं बीकानेर, चूरू, डीडवाना, कुचामन और सलुम्बर में अधिक बारिश हुई है। 16 ज़िलों में सामान्य और 21 ज़िलों में सामान्य से कम पानी बरसा है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 21 जुलाई से मॉनसून के एक बार फिर से सक्रिय होकर रफ्तार पकड़ने के आसार हैं। इस बीच आज राज्य के 10 जिलों में हल्की बरसात हो सकती है। वहीं बीते 24 घंटों में डूंगरपुर, कोटा और अलवर में हुई बरसात से लोगों को उमस से राहत मिली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंक

0: आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति केवल एक बयान नहीं है बल्कि ये भारत की दृढ़ कार्यवाही की सूचक है। श्री सिंह आज नई दिल्ली में फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला नहीं करेगा बल्कि जरूरत पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें नष्ट करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साइबर अपराध की रोकथाम के लिए हेल्पलाइन को प्रभावी और मजबूत बनाने को कहा। भारत की अंतरिक्ष क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 के सफल प्रक्षेपण पर स्काईरूट एरोस्पेस की सराहना की। राजस्थान और मध्य प्रदेश के वन क्षेत्रों को आपस में जोड़ने की महत्वाकांक्षी चीता कॉरिडोर परियोजना पर दोनों राज्यों की सहमति। और प्रदेश में मॉनसून सुस्त, अब तक सामान्य से कम बरसात हुई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से सलूम्बर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख कमलेश कुमार झड़ूला ने तैयार किया है। पिछले एक महीने में सलूम्बर जिले में विकास, जनकल्याण, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल और पर्यावरण से जुड़े कई बड़े काम हुए। जिला प्रशासन ने गांव-गांव जाकर ग्रामीण सेवा शिविर लगाए जहां लोगों की वर्षों पुरानी समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया। इस दौरान मौसम में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला। जून के आखिर तक भीषण गर्मी और उमस से लोग परेशान थे लेकिन जुलाई की शुरुआत से ही मॉनसून ने जोर पकड़ लिया। जिले के कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई जिससे खेतों में नमी आई और खरीफ फसलों की बुवाई तेज हो गई। हालांकि एक बार फिर मॉनसून की रफ्तार कम होने से लोगों को बारिश का इंतजार होने लगा है। पिछले एक महीने में जिले की सबसे बड़ी पहल ग्रामीण सेवा शिविर 2026 रही। इन शिविरों के माध्यम से लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत मिली। गांवों में ही अधिकारियों ने लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर समाधान किया। कई ग्राम पंचायतों में आवासीय पट्टे, आबादी भूमि के पट्टे, नाम शुद्धिकरण, भूमि बंटवारा, सीमांकन, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जन्म प्रमाण पत्र, प्रॉपर्टी कार्ड, जॉब कार्ड और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए। डिंगरी ग्राम पंचायत में 20 परिवारों को आवासीय पट्टे दिए गए। चंद्रोड़ा में कालबेलिया समाज के परिवारों को आवासीय भूमि उपलब्ध कराई गई। पहाड़ी, टोड़ा और अन्य ग्राम पंचायतों में भी पात्र परिवारों को भूमि के अधिकार मिले। सराड़ा ग्राम पंचायत के प्रसाद में एक बुजुर्ग महिला की सामाजिक सुरक्षा पेंशन शिविर में ही स्वीकृत की गई। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता मिली। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जैसमंद के देवपुरा में पोर्टेबल डिजिटल एक्सरे मशीन से 80 ग्रामीणों की जांच की गई जिनमें से 10 लोग टीबी संदिग्ध पाए गए। उन्हें आगे की जांच और इलाज के लिए भेजा गया। ग्रामीणों को टीबी, मानसिक स्वास्थ्य और अन्य बीमारियों के बारे में जानकारी भी दी गई। जिले में 11 से 18 जुलाई तक विश्व जनसंख्या सप्ताह मनाया गया और परिवार नियोजन को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस क्षेत्र में बेहतर काम के लिए सलूम्बर जिले को राज्य स्तर पर तीसरा स्थान मिला। जिले के 50 किसानों का दल बांस की आधुनिक खेती का प्रशिक्षण लेने उदयपुर, कोटड़ा और सिरोही गया। कृषि विभाग और टैफे जे फार्म सर्विसेज के बीच हुए समझौते के बाद किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से ट्रैक्टर और कृषि यंत्र किराए पर उपलब्ध कराने की नई व्यवस्था शुरू की गई। वहीं खेलों के मद को बढ़ावा देने के लिए DMFT मद से स्टार्स योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत करीब 50 लाख रुपए खर्च करके खिलाड़ियों को खेल सामग्री, खेल पोशाक, आधुनिक मैदान और प्रशिक्षण की सुविधा दी जाएगी। जिले में मिशन सलूम्बर 100 और मिशन ज्ञान वैन शुरू किए गए हैं। इनके माध्यम से विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और करियर की जानकारी दी जाएगी। वीरपुरा की 58 वर्षीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता राधा देवी ने राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से 10वीं पास कर जिले के लिए प्रेरणादायक उदाहरण पेश किया है। वहीं अगर रोजगार की बात करें तो जिले के 342 युवाओं को विभिन्न विभागों में नियुक्ति पत्र और वेलकम किट दिए गए। इससे युवाओं में नई उम्मीद जगी और सरकारी सेवाओं में उनका कदम बढ़ा। खाद्य सुरक्षा विभाग ने अधकालिया

0: की एक फर्म पर कार्रवाई करते हुए करीब 7000 किलो एक्सपायर्ड चाय की पत्ती जब्त की है, जिसकी कीमत 19 लाख रुपए बताई गई है। साथ ही विवाह समारोहों और बड़े आयोजनों में अब केवल FSSAI लाइसेंस वाले केटररों को ही भोजन बनाने और परोसने की अनुमति देने के निर्देश जारी किए गए हैं। बरसात के मौसम को देखते हुए जुलाई महीने को एंटी डेंगू माह घोषित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने घर घर जाकर लार्वा सर्वे किया और चेक क्लीन एंड कवर अभियान चलाकर लोगों को डेंगू से बचाव के उपाय बताए। इसी के साथ सलूम्बर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा राज्य में साइबर अपराधानी रोकथाम सारू हेल्पलाइन असरदार और मजबूत बनावन बाबत कहो। भारतरी अंतरिक्ष हल्का माए खास उपलब्धि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश माए गैर सरकारी हल्कारो पहलो ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 कामयाबी सागर छोड़न पर अंतरिक्ष कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस री सराहना कीनी। राजस्थान और मध्य प्रदेश रा जंगलात हल्का एक दूजाऊ जोड़वारी चीता कॉरिडोर परियोजना माथे दोनों राज्यों री सहमति। और प्रदेश में चौमासा री बिरखा मंद पड़ी, हाल ताई सामान्य कम बरसात हुई। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज जयपुर रा पुलिस मुख्यालय में साइबर अपराध और डिजिटल अरेस्ट रा मुद्दा माथे विचार सारू अहलकारा सागे मीटिंग कीनी। इन दौरान साइबर अपराधान की रोकथाम बाबत राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर R4C रा कामकाज रोई जायजो लियो चियो। ध्यान जोग है कि राज्य में ऑनलाइन ठगी और डिजिटल अरेस्ट री वारदाता रोकण सारू राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाई चियो है। इन तहत 1930 हेल्पलाइन ने और बधावण और इनने 7 दिन 24 घंटा काम करण लायक बनावण सारू जतन करया जावेला। फिलहाल राज्य रा सगला जिला में साइबर पुलिस थाना काम कर रहा है। मीटिंग पाछे पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका जनताओं रकम माए तेजी बढ़ोतरी रो झांसो देवन वाला और ई भांतरा दूजा लोभ देवन वालाओं बचबारी अरज कीनी। राज्य माए लाडला दिना जापा वाली कुछ लुगाइया री मौत वेवन और कुछ री तबियत खराब वेवन रे मामला माए मुख्य सचिव वी श्रीनिवास री सदारत माए आज जयपुर माए वर्चुअल तरीका आला दर्जा री मीटिंग राखी जी। वे जापा वाली लुगाइया री तबियत री पूरी निगरानी राखण सारू चलाया जा रहा खास अभियान रे बारा माए जानकारी लीनी। मीटिंग माए जापा वाली लुगाइया री तबियत री पूरी निगरानी राखण और बत्ता जोखिम वाला मामला री पिछाण कैरर वारो न्यारो रिकॉर्ड राखण रा हुकम दिया चिया। ईसा गई सगला अस्पताल माए जापा रा कमरा माए जरूरी दवाइयां और दूजी व्यवस्थावां ते करण सारू कही जियो। मीटिंग माए सगला जिला अस्पताल रा सुप्रिंटेंडेंट और स्वास्थ्य अधिकारी और मेडिकल कॉलेजा रा प्रिंसिपल ही शामिल भया। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम कहो है कि शिक्षण संस्थान माए पढ़वा वाला विद्यार्थियों सेफ्टी टैंक री सफाई करावणो जोखिम भरियो और गंभीर लापरवाही रो मामलो है। श्री बेढम डीग जिला रा मीलखेड़ा रा मदरसा माए सेफ्टी टैंक री सफाई रे दौरान वे हादसा ने घणो दुख देवन वालो बतायो। आज भरतपुर माए खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका गृह राज्य मंत्री कहो के वाकया री जानकारी मिलता ही प्रशासन तुरंत जरूरी जतन कीना, पण सेफ्टी टैंक माए जहरीली गैस हूँ एक टाबरी री मौत वेगी जदके जख्मी हुई दूजी टाबरी रो अलवर रा अस्पताल माए इलाज चल रियो है।
2: बच्चे हमारे यहाँ अध्ययन के लिए आते हैं और अध्ययन के लिए आने वाले बच्चों को इस तरह के काम कराया जाना मैं समझ सकता हूँ कि व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। पुलिस ने रात को FIR दर्ज कर ली है, जो भी कानून सम्मत कार्रवाइयाँ होंगी वो निश्चित रूप से करेंगे। हमारी प्राथमिकता है कि बच्चे सुरक्षित रहें, बच्चे शिक्षण ग्रहण करें, उनकी उचित व्यवस्था

0: तो उन सारी चीजों को देखते हुए सरकार ने तुरंत संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पहली प्राथमिकता बच्चों की जान बचाना, उनको सुरक्षित रखना, अच्छी शिक्षा मिले। लेकिन इस तरह का कृत्य कोई करता है तो वो शर्मनाक है और कानून में जो बनेगा निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी।
1: सीकर जिला में कटराथल रा पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय में आज शेखावाटी ज्ञान सभा राखी ची। ज्ञान सभा रो मकसद शिक्षा जगत, नौजवाना और समाज बीचे देश बनावन रे बारा में विचारा रो लेन देन करनू हो। ई मौके राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े विकसित भारत बनावन सारू भणाई लिखाई और संस्कार माथे जोर तीनो। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी कहो के सगला ने देशी मूल्या माथे आधारित विकास री दिशा में आगे बढ़नु चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह पेंशन नु जुड़िया झगड़ा रो निपटारो प्रशासनिक तौर रो करण बाबत कहो है। वे आज नई दिल्ली में पेंशन नु जुड़ी मुकदमेबाजी रे बारा में राखी जी राष्ट्रीय कार्यशाला में बोल रहा हा। डॉक्टर सिंह कहो कि पेंशन नु जुड़िया काम माए साफ कोई लावण सागे दक्षता बढ़ावण सारू ऑनलाइन सिस्टम रे जरिए पेंशन रो सुबितो शुरू करी चियो है। ई मौके अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी पेंशन नु जुड़ी मुकदमेबाजी खत्म करण सारू मिलर कोशिशा करण री जरूरत माथे जोर तीनो। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रिया हो। देश में किणी गैर सरकारी कंपनी कान्यू बनाई जो पहलो ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम वन कामयाबी सागे छोड़ी जियो है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेता इन खास कामयाबी सारू गैर सरकारी कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने बधाई दीनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विक्रम वन टीम री ई ऐतिहासिक उपलब्धि री सराहना करता थका कहो के आ कामयाबी देश रा नौजवाना ने नुआ काम करण माए योगदान देवन री सीख देवेला।
2: सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई
3: सर। वी आर वेरी वेरी प्रिविलेज्ड टू हियर यू।
2: स्काई रूट ने दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। कब से मेरा ध्यान जो गया आपकी पूरी टीम 25-30 साल की दिखती है। आपका जो कुछ भी मिशन है मैं इसको एक प्रकार से वंदे मातरम मिशन ही देखता हूँ कि भारत माँ की गरिमा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना, नई पीढ़ी को टेक्नोलॉजी को लाभ देना और नई पीढ़ी को टेक्नोलॉजी में आने के लिए प्रेरित करना।
1: ई मौके केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह कहो के आ कामयाबी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी माई भारत रा बद्धता बूता रो दर्शाव करे है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ई कामयाबी ने देश रा अंतरिक्ष इतिहास रो सोना रो अध्याय बतायो है। वह इनने भारत रा वैज्ञानिका रे तकनीकी हलका माए खुद रे पाण उबावेवण और नवाचार री निशानी बताता थका कहो के ई कामयाबी माथे देश रा हर रहवासी ने नाज है। ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम वन ने आज दोपहर पाछे 12:05 पर आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा रा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र छोड़ी चियो। ईसा गई भारत ओ बूतो हासिल करण वालों तीजो देश बनक्यो है। राजस्थान और मध्य प्रदेश रा जंगलात हलका ने एक दूजा जोड़ बारी खास चीता कॉरिडोर परियोजना रे बारा में दोनों राज्यों बीच एक राय बनकी है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA रा जानकारां री टीम कोटा और रावतभाटा हलका रा जंगलां रो दौरा करया पाछे पूरा हलका ने चीता ने हमेशा सारू बसावण बाबत ठीक मान्यो है। वो कॉरिडोर राजस्थान रा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और मध्य प्रदेश रा गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य बीच बनावण रो प्रस्ताव है। मध्य प्रदेश रा कूनो नेशनल पार्क में चीता री बढ़ती तादाद न ध्यान रखता थका ई खास कॉरिडोर री जरूरत महसूस करी जा रही ही। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रा हुकम और दोनों राज्यों रा आला अहलकारा री मीटिंग पाछे ई परियोजना रा काम में तेजी लावण री कोशिशां बध की है। ओ कॉरिडोर विकसित वेवणु रावत भाटा और RSRA रा करीब 400 किलोमीटर हलका माए चीता ने कुदरती घर माए।

0: સાયાચા સકેલા. કોંગ્રેસરા આલા નેતા રાજરા પેલીવાળા ઉપમુખ્યમંત્રી સચિન પાયલટ છાત્રો કી ગુંજ અભિયાન રાતેત આ જયપુર માય રાખી જ્યા છાત્ર સંવિધાન સંવાદ કાર્યક્રમ માય સામિલ થયા. इन माय विधानसभा माय विपखरा नेता टीकाराम जूली और छात्र संगठन NSUI रा राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ी भेड़ा भया. इन दौरान श्री पायलट बढ़ती बेरोजगारी और पेपर लीक रा मुद्दा नो जिक्र करता थका विद्यार्थियों रा भविष्य जुड़ी चिंता जताई.
1: आप कोचिंग करो, ट्यूशन करो, किराया दो, मेस का किराया दो, खाने का, किताबों का, लाखों रुपए गरीब परिवार अपना पेट काटते उस पूंजी को जो बच्चे बच्चों को पैसे लगाता है, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है. आपके पास जिम्मेदारी इस बात की है कि निष्पक्ष पारदर्शी आप परीक्षा कराएं, लेकिन मुद्दा ये है कि जवाबदेही किसकी है. लेकिन ये छात्र घर में एक या दो हो सकते हैं, लेकिन भविष्य पूरे परिवार का है. ऐसा कोई बाप नहीं है, ऐसी कोई माँ नहीं है जो नहीं चाहती कि हमारे बच्चे
0: उससे
1: आगे
0: बढ़े. राज्य में चौमासारी बिरखा फिलहाल सुस्त प्रजावरण के कारण घनखर थोड़ा गर्मी और उमस रो असर बनियो है. जल संसाधन विभाग कानून मिली जानकारी रे मुजब इन चौमासा में फिलहाल सामान्य कम बिरखा भी है. बीकानेर, चूरू, डीडवाना, कुचामन और सलुम्बर में सामान्य बत्तो में वर्षियों, जबकि 16 जिला सामान्य और 21 जिला में सामान्य कम बरसात हुई. मौसम विभाग के मुजब राज्य में 21 जुलाई उजू बिरखा वेवन रा आसार है. इस बीच आज प्रदेश का 10 जिला में हल्की बरसात री संभावना है. सरकार संसद रा सोमवार न शुरू वेवन वाला पावस सत्रों पहली काल सगली सियासी पार्टियां रा नुमाइंदा ने मीटिंग बुलाई है. इनमें सगली सियासी पार्टियां दोनों सदना री कार्रवाई ठीक ढंग चलावण माय मदद री अपील करी जावेला. 13 अगस्त ताई चालन वाला इन सत्र रे दौरान कई खास बिलां माथे चर्चा वेवण अरवाने पास करावण री संभावना है. आखिर माय खास समाचार एक कर फेर सुन ली रहो. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राज्य में साइबर अपराधा री रोकथाम सारू हेल्पलाइन ने असरदार और मजबूत बनावन बाबत कहो. भारत री अंतरिक्ष हलका माय खास उपलब्धि. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश माय गैर सरकारी हलका रो पहलो ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 कामयाबी सागर छोड़न पर अंतरिक्ष कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस री सराहना कीनी. राजस्थान और मध्य प्रदेश रा जंगलात हलका एक दूजाऊ जोड़बारी. चीता कॉरिडोर परियोजना मथे दोनों राज्यों री सहमति. और प्रदेश में चौमासा री बिरखा मंद पड़ी. हाल ताई सामान्य कम बरसात हुई. इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो. नमस्कार.

यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। संध्या के 7 बजे हैं। ग्रामीण परिवार सुने अपना दैनिक कार्यक्रम चौपाल।

है तो वह जिकी सोलर वाली जिकी प्लेटा है तो बने जब आप लगावा तो भी लगाने से पहले आपने बांगी बहुत सारी जिकी है बातों को ध्यान रखना आपने चाहिए। और विशेष कर बांगी एक तो सही जिकी दिशा है बिंगो और सगे बांगी अंधी से भी आपने सुरक्षा खातर बांगना आपने ध्यान देना चाहिए। तो देखो पहला तो सोलर पैनल जिको भी आप लगवावा तो बिंगो जिको आप नीचे बनावा हाँ कंक्रीट वालों तो वो मजबूत होना चाहिए बिना अच्छी तरह आप बना के और बिंग माँ लगावा तो वो टूटे ना और वो पटीजे भी ना इन बात को अपन ध्यान रखना चाहिए। तो वो स्ट्रक्चर जो को आप बनावा वो ये ना अपन मजबूत अपन बनाना चाहिए। इन सागे सागे जिका भी आप नट बोल्ट आप लगावा बे अच्छी तरह मैंने कस के और बने एकदम फिक्स कर दिया तो बे फिर के हल है ना इनमें ना कई बार आप देखा कि माड़ो मोटो ढिलो रह जाए फिर वो हल हाल गए या तो वो नट्टी पूरा पटीज जाए या फिर वो खुल जाए तो बीच में भी नुकसान हो जाए। तो इनको भी आपने ध्यान रखना चाहिए और खास करके जठे खुल्लो आपने रकबो हुआ खेत के माँ अपन देखा कि एकदम खुल्लो रकबो पड़े हवा बहुत ज़्यादा लागे है बिंग माँ और आंधी आ जाए तो बीच में भी नुकसान हो जाए। अभी आप लेरले सा दिन आंधी देखे हो कि जब वो आंधी तूफान आयो तो आप देखो किसान भाई आगे जी वे प्लेटा लागेड़ी है तो वे इन बिना पटीज गए कहीं उड़ गई तो भी देखो नुकसान तो हो ही है। तो बिंगो आप क्या कि आप दिशा को भी सही ध्यान रखा बिया तो बतावे है जिका जानकार है कि दक्षिण दिना का नहीं आपने नीचे ने झुका के लगानी चाहिए पर फिर भी आप अपने खेत के हिसाब से या जिया हवा के हिसाब से बिंगो भी आप पहली से ही ध्यान रखा तो बिना भी हिसाब से लगावा और जठे भी है प्लेटा जठे भी आप लगावा सूरज वाली या प्लेट जट लगावा तो बैठे क्या है कि एक तो दरखत आसा पासा नहीं होना चाहिए कि या कोई अपना कोई कमरों बनेडो है या कोई और छपरो है तो बीच में क्या बिंग छियाँ भी बिंग ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। तो इनको भी आपने ध्यान रखना चाहिए क्योंकि छियाँ पड़ेगी तो फिर बिंग बाद में बा अच्छी तरह काम कौन करे बिंग ऊपर पूरी अच्छी तरह तावड़ी तब से नहीं जद्दी बिंग में पूरा झुका करंट बन सी। तो इनको भी आपा ध्यान रखा कि किसी भी दिशा से बिंग ऊपर छियाँ नहीं आनी चाहिए तो इनको भी आपने ध्यान रखना चाहिए। और इन सागे सागे जिके भी बिंग में तारा है या फिर एक कनेक्टर हो जिसका दो तारा ना आपस में जुड़े तो वह भी अच्छी तरह और वह बिल्कुल ढीला नहीं होना चाहिए बने भी अपन ध्यान अच्छी तरह रखा और कई दिन बाद में क्या वह घिस भी जाए या फिर कई बार क्या तावड़ो लाग तो रहे तो बीचों खराब भी हो जाए तो टेमो टेम बांगी सार संभाल भी आप करता रहा तो बीचों क्या कि बंग मजिया कोई आग लागनेगी या फिर कोई गर्मियों खराब होने की जिसकी संभावना है वह भी बिल्कुल खत्म हो जाए। सागे सागे जी बिरखा हुआ है या फिर पानी है तो बीचों भी आप ध्यान रखा और इन सागे सागे सारा हूँ जिकी जरूरी चीज़ वह है कि आप जिकी भी सोलर प्लेट आप लगवावा हाँ बिंग में जिकी तारा लागे या और जिको भी बिंग में सामान लगे तो वो एक अच्छी कंपनी को आपने लगवाना चाहिए जिकी गुणवत्ता अच्छी होवे तो बीच में क्या किसान भाइयों जिको नुकसान है बिंग होने की संभावना बहुत ही कम हुआ है। और हमें लगाने के माँ भी जिका एन जानकार जिका अंगा जानी जान जिका आदमी हुआ पूरा कारीगर हुआ बाँ को नहीं आपा लगवावा तो इनको भी आपा विशेष ध्यान रखा। किसान भाइयों और भी बहुत सारी बातें चीता करांगा और वार्ता भी आज थाने एक सुना से कपास के ऊपर कि बंग में कीट को रोकथाम किया करा पर आ सह सुपे लिया आपा सुना एक भजन लियो सुनो सा।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल।
2: किसान भाइयों सुनो आप भजन। किसान भाइयों आपने खेती पाती में जिका आप काम करा हाँ बिंग सागे सागे और भी अपन जिका खेती से जुड़ेड़ा काम जिका जरूरी काम है वे भी आपने टेमो टेम अपन जिका पूरा करके रखना चाहिए। जहाँ कि देखो फसल को बीमो जिको है वो आपने जरूर करवाना चाहिए। जी चूंकि कल ने कई बार आप देखा कि आपने प्राकृतिक कोई आपदा है मौसम की मार हो कई बार बारिश बिरखा छू या फिर कोई आंधी तूफान छू फसल को खराब हो जाए तो भी मैं क्या कि आपने जो मुआवजा है वो आपने बीमो क्राइड हो तो मिल जाए। तो बीचू के देखो पूरी भरपाई तो कोनी हो पर फिर भी किन की अपन ने देखो बीचू की लाभ मिले ही है तो इं करके फसल को जो बीमो है वो आप जरूर आप करवा लिया। इं सागे सागे और भी आपनों कोई नुकसान ना हो जो कि अब आप फसल में आप बीज जिका है बाजारों खरीद के लियावा कोई खाद उर खरीद के लियावा कोई और जो भी सामान आप ले गया तो बिंगो भी अपन ध्यान रखना चाहिए कि बिंग तो एक असली नकली की आज देखो दोपहर में भी आप खेत खलिहान में भी आप खाद जी की है बिंग बारे में बात करी कि असली खाद और नकली खाद की आप पहचान किया करा तो इतने ही बाकी जो को बीज है वो भी आप बिल्कुल प्रमाणित बीज लियावा और बिंगो जो को पक्को बिल है वो आप जरूर लियावा। जी सुकाल ने कोई घाट बात हो तो वो बिल अपने कन हो तो बीच अपन बेरो लाग जाए भी वो बीज कठूँ लियो और बिंग आप आगे जी की है जांच पड़ताल भी आप करवा सका हाँ तो इंगो भी अपन ने ध्यान रखना चाहिए। और इन खातर देखो सरकार का जिका है वे फोन नंबर भी दे रहा है कि अगर था नहीं लागे तो भी प्रथे शिकायत भी कर सको हो। और इंग सागे सागे आपने जिका कृषि गमा जिका यंत्र है आप चाहे कोई वे आप हल है या फिर और कोई बिजाई वाली जिकी मशीन है या इस अलावा और जिका भी आप कोई खेत में जिका यंत्र आप काम में लेवा तो अंग ऊपर किसान भाइयों सब्सिडी भी टेमो टेम जिकी है वह मिले है तो इंगे भी जानकारी आप अच्छी तरह ले गए और आपने जिका भी यंत्र है वहाँ पर आप सब्सिडी भी ले सका तो इसू किन की आपने जो है आर्थिक फायदा हो जाए कि सारो लाग जाए तो बिंगमा जल्दी आप जिका है अपना यंत्र आप ले गए और भी आप खेत में बने काम ले सका। इस तरह और किसान भाइयों भांत भांत की जी की योजना है खेती से संबंधित है तो वह किसान भाइयों खातर बहुत ही लाभदायक है तो बंगो भी आपने पूरा फायदा उठाना चाहिए तो टेमो टेम बंगी आपने जानकारी ले गए और भी बाद में आप फायदा उठा सका। जी तारबंदी की योजना भी है तो इंग ऊपर भी बतावे है कि थोड़ा बहुत जो अनुदान है वो सरकार की तरफ से मिला है पर जिकी आज की योजना आवे है कई बार क्या है कद शुरू हो कद बंद हो जाए तो इनकी जानकारी पहले आप ले लिया भी बाद में ही आप इनको फायदा उठा सका तो इनको आपन के जरूर जो है ध्यान रखना चाहिए।

0: सागे सागे आजकल थाने ध्यान ही है कि कंप्यूटर को जमानो है, तो आपने जिको जिके ना आपा बोला कि डिजिटल जिको है या फिर जिके मोबाइल के ऊपर जिकी ऐप हुआ है, अंग में भी आपन खेती से बहुत सारी जानकारी मिले। देखो खेती से जुड़ी बहुत सारी जानकारी यहाँ है, तो वह जिकी मोबाइल की ऐप है वह आप घरे बैठे आपने मिल जाए। इस तरह जी अब आप मान लो रेडियो है, पहले अपन रेडियो कन्ने रखना पड़ता, अपन अब मोबाइल का मई जिकी ऐप आ रही है पर न्यूज़ ऑन ईयर, तो भी पर आप रेडियो सुन सका, सारा कार्यक्रम जिका भी नहीं आप भी मोबाइल से आप सुन सका। ये अपने खेती की जिकी जानकारियाँ नहीं वे भी आप ऐप से जिकी है वे पूरी आप घरे बैठे बैठे आप लेस कहाँ। तो इस तरह किसान भाइयों ए खेती पाती में आपने मदद करने वाली जिकी कई बातें हैं, अंगो अपन ध्यान रखना चाहिए और आपनों जिको नुकसान है जी आप बात करी कि काल ने कोई बिरखा की मार पड़ जाए या कोई प्राकृतिक आपदा हो तो बिंग में जिको बीमो है वो बहुत ही अपने काम आवे, तो बीमो जिको फसलों आप जरूर आपने करवा के रखना चाहिए। किसान भाइयों अब आप हरजिंदर सिंह जी जिका है आपन बहुत ही अच्छी जानकारी दे सी कि कपास की जिकी फसल है बिंग में आप कई बार देखा कि बिंग में कोई कीट है रोग है बंगो प्रकोप अपन देखने ने मिले, तो आपा बाशु आपा जानकारी लेवा आओ सुना।
1: श्रोताओं नमस्कार, मैं डॉक्टर हरजिंदर सिंह, कीट वैज्ञानिक कृषि अनुसंधान केंद्र श्री गंगानगर। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उस इंसेक्ट पेस्ट ऑफ कपास, कपास के मुख्य कीट और उनका प्रबंधन। कपास सिस्टम है 60 से 70 दिन की हो चुकी है, तो इसके लिए कौन सी एडवाइजरी कब कब के अंदर स्प्रे की जाए तो इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो इसके अंदर होता है अभी इस टाइम जो है कपास के कंडीशन में देखा जाए तो कपास के अंदर इस टाइम थ्रिप्स और व्हाइट फ्लाई का अटैक हो रखा है और साथ साथ इसके पिंक बॉलवर्म भी आ रखी है। तो इसके मैनेजमेंट के लिए, थ्रिप्स के मैनेजमेंट के लिए और पिंक बलोन के मैनेजमेंट के लिए मेन काम है जो स्प्रे करनी चाहिए वो है माइप्रोफेनोफॉस 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला करके उसमें स्प्रे करनी चाहिए। अगर थ्रिप्स का डैमेज नहीं हो, थ्रिप्स का इन्फेक्शन नहीं हो और सिर्फ पिंक बलोन का इन्फेक्शन हो तो हमें एम्बामेक्टिन बेंजोएट 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से यूज करना चाहिए। इसके अलावा अगर व्हाइट फ्लाई का ETL लेवल 8 से 10 प्रति पत्ती चली जाए तो इसके बाद में स्प्रे हम कर सकते हैं उलाला की फ्लोनेका मिड की। इसकी डोज है 3 लीटर पानी में 1 ग्राम मिला करके इसकी उपयोग कर सकते हैं। अगर इसके अंदर निम्फ है के अडल्ट नहीं होकर के निम्फ है हरे हरे हैं तो इसके लिए आप पायरोप्रोक्सीफेन 10 EC इसका जो है 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। और बाकी इसके अंदर देखा जाए तो हमारे अभी पिंक बॉलवर्म का अटैक सबसे ज़्यादा हो रहा है, पिछले साल देखें तो 2-3 सालों से इसका लगातार अटैक हो रहा है। तो इसका प्रबंधन कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसका सिर्फ और सिर्फ प्रबंधन ही किया जा सकता है जो कि हमारे को इसका केयरफुली मॉनिटरिंग करना सबसे जरूरी है। सबसे पहले तो इसके अंदर 15-45 दिन की क्रॉप होने पर इसके अंदर फिरोमोन ट्रैप लगाने चाहिए, 5 फिरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टर, और उसके अंदर एक ल्यूर लगाना चाहिए जो कि फीमेल का होता है, इसके अंदर मेल अट्रैक्ट होते हैं और मेल उसके अंदर आ करके और वो अंदर आ जाते हैं। तो अगर 3 दिन लगातार 7 या 8 मौत आ जाए उसके अंदर तो ही हमें अप्लाई करना चाहिए। और इसके अलावा 10% इन्फेस्टेशन हमारे फूल अगर रोजेट फ्लावर बन जाए तो भी करना चाहिए, रोजेट फ्लावर बनते हैं चौकोर कार के फूल, अगर बॉल बन जाए तो उसके अंदर 20 बॉल के अंदर 1 या 2 बॉल के अंदर इसके अंदर वो हो जाए इन्फेस्टेशन हो तो ही हमें स्प्रे करना चाहिए। और इसके अलावा 45 दिन के बाद अगर हो गया तो उसके बाद हमें इसके 10-10 दिन बाद में अप्लाई करनी चाहिए स्प्रे, क्योंकि 10 दिन बाद में एक टिंडा फूल बनने के बाद उस बॉल बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 महीना टाइम लग जाता है। अगर उसी दौरान आपने स्प्रे कर दी तो आपकी कॉटन का अच्छा मैनेजमेंट हो सकता है, और अगर नहीं की तो इसका बहुत ही खमियाजा किसानों को भुगतना पड़ेगा। जैसा कि देख रहे हैं कि पिछले साल किसान जो है इसके इन्फेस्टेशन बहुत ज्यादा था और किसानों को पता भी नहीं चला, ऊपर ऊपर से खुश हो रहे थे, तो इसी वजह से हमारे को सिर्फ और सिर्फ इसका मैनेजमेंट बॉल खुली रहने तक ही करना चाहिए ताकि हम जो है बाहर अप्लाई स्प्रे अंदर अप्लाई कर सकें और कीट मर जाए। तो और तीसरा है इसका मैनेजमेंट, जैसे अभी अपने बॉल रोजेट फ्लावर बन जाए 100 फूलों के अंदर देखें तो रोजेट फ्लावर 5 या 10% फूलों के अंदर रोजेट फ्लावर बन जाए, चौकोर कार के फूल बन जाए, तो तभी भी इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। बाकी इसका अच्छे ढंग से अगर अपने मैनेजमेंट करना चाहें तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है अपने इसका निम्बिस्टीन आप अप्लाई कर सकते हो खेत के अंदर 60 दिन तक, तो निम्बिस्टीन नीम की निमोली को उसको उबाल करके और उसका अप्लाई कर सकते हो, या निम्बिस्टीन आता है उसको मिला करके 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से प्लस इसके अंदर 1 ml एडजुवेंट मिला करके उसके स्प्रे कर सकते हो 60 दिन बाद, 60 से 120 दिन बाद में प्रोफेनोफॉस एम्बामेक्टिन बेंजोएट, और 120 दिन बाद में ही हमें लैम्डा साई हैलोथ्रिन या उसके अंदर जाना है, क्योंकि लैम्डा साई हैलोथ्रिन और ये दूसरे जो है नेचुरल एनिमी को मार देते हैं, शकिंग इंसेक्ट के लिए जो नेचुरल एनिमी है उन बचाने के लिए ही हमें सेफ इंसेक्टिसाइड पर उपयोग करना है 120 दिन तक, उसके बाद हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर देखा जाए तो एक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट होता है, जैसे कैडमियम हो गया और पोटाश हो गया, पोटाश तो इसको कीटों से लड़ने की क्षमता पैदा करता है और कैडमियम जो बीमारियों के प्रति लड़ने की क्षमता पैदा करता है, तो इस प्रकार से न्यूट्रिशन लेवल सॉइल का सही हो तो इसके अंदर

0: इन्फेस्टेशन नहीं होगा। और अगर हमारे दो टेक्निक और नई टेक्नोलॉजी आई हुई है जैसे पिंक बॉलवर्म रोप और क्रिम्प्ट कंट्रोल लीज इमिशन मैटिंग इंट्रक्शन टेक्नोलॉजी, इसको जो है हम किसान भाई एक एक दो दो रो छोड़ करके और 5-5 मीटर पर लगा सकते हैं ताकि इसका मैनेजमेंट हो जाए। 30 दिन बाद, 60 दिन बाद, 90 दिन बाद इसको अप्लाई करना होता है ताकि इसका कंट्रोल हो जाए। और एक पिंक बॉलवर्म है, पिंक पीबी रोप है, उसको जो है 5-5 मीटर पर लगाया जाता है खेत के अंदर, तो उसका भी अच्छा मैनेजमेंट 90 दिन तक वो चलता है, तो उसका भी अच्छा मैनेजमेंट है। 90 दिन तक कोई इंसेक्टीसाइड अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उसके अलावा शकिंग इंसेक्टीसाइड सिर्फ और सिर्फ शकिंग इंसेक्टीसाइड पर रह सकते हैं। पिंक बॉलवर्म के प्रति कोई भी इंसेक्टीसाइड 90 दिन तक नहीं डालना है अगर पिंक उसके अंदर पीबी रोप लगा हुआ है तो उसके बाद में अप्लाई कर सकते हैं अपने। तो इस तरह ढंग से अच्छा मैनेजमेंट हो सकता है। किसानों को हमेशा ही ये एडवाइस की जाती है हमेशा ऑर्गेनिक खेती अपनाओ ताकि इसका मैनेजमेंट सबसे कम हो सके, इम्बेलेंस हो जाए। नेचर जो है, नेचर के साथ छेड़छाड़ जो किया गया है उसको जो है बैलेंस करके अपने को चलना है तो ही हमारा प्रोडक्शन हो सकता है। नहीं तो बीटी फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, फोर्थ आ गया, ऐसी चलती रहेगी टेक्नोलॉजी, लेकिन आगे किसानों को थोड़े दिन के लिए फायदा होकर के और आगे नुकसान पैदा होगा। इस प्रकार से किसानों को सिर्फ और सिर्फ इंसेक्टीसाइड रिकमेंडेड जो किए बताए गए हैं साइंटिस्टों के द्वारा, हमारे द्वारा या फिर किसी भी साइंटिस्ट के द्वारा, तो उसको ही अप्लाई करना है। और बाकी अगर किसान जो है ओवरडोज अप्लाई करता है तो उसका रेजिस्टेंस भी डेवलप हो जाती है कीट के अंदर, क्योंकि कीट जो है उतने दिन जैसे थायमेथोक्सम और इमिडाक्लोपाइड पहले थी तो उसको अप्लाई करते थे तो किसान क्या है उसके पजेंसी स्माइल होती थी, उसके पजेंसी उसको लगती थी वो खाने में, उस ढंग से 2-3 दिन कीट भूखा रह जाता था, तो अब आगे फिर वो होकर के फिर वो सॉलिड होकर के फिर पेश आता था। तो इस प्रकार से हमारे को अवॉइड करना है। बाकी इसका देखा जाए तो गुलाबी सुंडी को मारने के लिए सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेज, 4 स्टेज होती है इसकी लार्वल की, सेकंड स्टेज तक ही इसका अप्लाई करके अपने मार सकते हैं। थर्ड स्टेज तक जब भी पहुंच गई व्हाइट पिंक बॉलर तभी अपने इसको नहीं मार सकते, क्योंकि सेकंड स्टेज जो है ये अपने डंठल जो है कीड़ा अपने खेतों के अंदर पुराने डंठल जो पड़े हुए हैं, पुरानी रुई पड़ी हुई है या फिर पुरानी छटियां पड़ी हुई हैं, इसके अंदर 2 साल तक जिंदा रह सकती है। इसके जो है सबसे ज्यादा फेवरेबल क्लाइमेट अगर निकला है 4वीं अवस्था के बाद ये सक्रिया होकर पड़ी रहती है उसके अंदर, और अगर फेवरेबल क्लाइमेट आया तो तभी वो 72 घंटे में 2 बार एंटीना निकाल के बाहर देख लेती है क्लाइमेट के अंदर भी क्लाइमेट कैसा है तो आ जाती है बाहर, नहीं तो नहीं आती। तो इसलिए अपने को यहाँ पे भी कॉटन स्टिक रखी गई है, खेत के अंदर कॉटन स्टिक नहीं रखें, घर के अंदर लेके आए या अच्छे झड़का के रखें या अच्छे से पशु चरा के उसके बाद में हार्वेस्टिंग करें खेत की अगले, ताकि अगले सीजन में अपने को सबसे कम लॉस हो सके इसका। और अगर अपने इसका मैनेजमेंट ढंग से करना चाहते हैं तो किसानों को क्यूमुलेटिव इकट्ठे होकर के और एक जगह स्प्रे करने चाहिए, जैसे एक किसान आज कर रहा है, एक किसान अगले दिन कर रहा है, इस ढंग से सीजन में उसके चेंज होता रहता, उसमें वहां से उड़ के फ्लाई इधर आ जाएगी, मक्खी इधर आ जाएगी, तो इस ढंग से कंट्रोल नहीं होगा, मैनेजमेंट ही हो सकता है। और अभी जो फ्लश आ रखा है जैसे देसी के अंदर अभी यूरिया जा रखा है, यूरिया जा स्पोटेड बॉलर आ रखी है, तो अभी स्प्रे कर दे में इंडोक्साकार्ब की तो ही इसके अंदर अच्छा मैनेजमेंट हो सकता है। 70% किसान जो है अभी देसी कॉटन में अगर लेना चाहते हैं तो पहला फ्लश जो है बचाना बहुत जरूरी है, इसके लिए हमें इंडोक्साकार्ब स्प्रे अप्लाई करना चाहिए ताकि किसान जो है 70% अपना प्रोडक्शन ले सकें। और बाकी अगर इसको और भी अगर किसान बचाना चाहता है तो हमारे को सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कल्टीवेशन पर ही अप्लाई करना चाहिए। इसके लिए अपने को निम्बिस डीन डाल सकते हैं या फिर नमोली रख के उसको उबाल के और उसके अंदर स्प्रे मिला करके और उसकी स्प्रे कर सकते हैं तो ही इनका नहीं होगा। और अगर इसकी लाइफ साइकिल की बात करें तो 10 से 15 दिन बाद में इसका अंडा निकल करके 10 से 15 दिन बाद में हैचिंग हो जा करके अंडा, 15 से 20 दिन बाद में इसका लार्वा बनता है, लार्वा बन के फिर आगे प्यूपा अवस्था में जाता है, फिर प्यूपा से एडल्ट में जाता है। तो इस प्रकार से इसकी साइकिल जो है चलती रहती है, लगभग 4 से 5 साइकिल इसकी कंप्लीट हो जाती है। तो इस ढंग से अपने को तीसरी स्टेज जब इसकी 3 लार्वा स्टेज होती है, चौथी लार्वा स्टेज है, तीसरी लार्वा स्टेज के बाद में इसमें कलर चेंज हो जाता है, तो इस ढंग से अपने को इसका अवॉइड करना चाहिए, सेकंड स्प्रे तक ही इसको अप्लाई करना चाहिए। और बाकी इसका मैनेजमेंट अगर किसान क्यूमुलेटिव होके इकट्ठे होके स्प्रे करें तो ही इसका प्रबंधन कंट्रोल हो सकता है, मैनेजमेंट नहीं हो सकता।
1: किसान भाइयों, अभी आप डाक दर्जी हरजिंदर सिंह जी है गंगानगरों, खेती का डाक दर्जी है, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। और देखो आपने अच्छी तरह बताया है कि कीट है जिका कियाँ बने, कियाँ अपनो नुकसान करे और अंगी के अवस्था हुए कद अंडा बने और अंग आप रोकथाम कियाँ कर सकें। देखो बहुत ही साथरियाँ आपने जानकारी दी और इस जानकारी से अपन देखो खूब लाभ हो सी। और आप देखो आन दिन आप देख रही हैं कि अपने खेत के माँ कपास की जिकी फसल है बिंग ऊपर प्रकोप अपन देखने ने मिला है, तो जिया जिया अपन बताइए बिया बिया अपन इंगी रोकथाम अपन ने कर लेनी चाहिए। किसान भाइयों कर सियाँ बातें चीता और पर पहली सुना है गीत लियो सुनो सा।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: किसान भाइयों सुनियो भी आप गीत। किसान भाइयों आप देखा कि कई जगह खेत है बंग माँ दीमक को प्रकोप भी आपने देखने ने मिला है और दीमक को जो को प्रकोप है बीसू किसान भाइयों ने सब ज़्यादा नुकसान हुआ है। और वो देखो खेत में तीनों प्रकोप हो ही हुए है, घर में भी आप देखा कि बहुत प्रकोप अपन देखने ने मिला है। अब आप देखो कई बार आप बात करा कि खेत का माँ जी की खाद जी की आप गोबर की खाद देवा वाह अच्छी तरह सड़ेड़ी और एकदम गलेड़ी होनी चाहिए। तो वह आप क्यों करा वहीं खतरी करा कि जे खाद अच्छी तरह सड़ेड़ी ना होवे कच्ची होवे तो बिंग माँ दिमक लागने को जो डर है वो ज़्यादा होवे, क्योंकि दिमक को जो कि कच्ची अपने खाद होवे दिमक बिने सबों ज़्यादा और बहुत चावू खावे इं करके भी जगह दिमक जी की ज़्यादा लागे। इं करके जब भी आप खेत गए गोबर की या कोई कंपोस्ट खाद जी की काम में लेवा

है वो बहुत ही जरूरी है। तो बीज को उपचार आपा क्लोरोफायरीपाचियों या फिर और जिका रसायन है जिका भी अच्छा जिका रसायन है बाद चूँ आपा बीज को जिको उपचार है वो आपा ने जरूर कर देना चाहिए। कई किसान भैया आपा देखा कि जिका बाग बगीचा लगा रखे है तो बंग में भी दिमक को प्रकोप अपन देखने ने मिले। तो जिका फलदार जिका पौधा है या फिर दूसरा जिका पेड़ पौधा है तो बंगू जिको तनो है तो जमीन 2-3 फुट ऊंचा तई आपा बोर्ड जिको पेस्ट है बिंगो या फिर जिको चूनो है इस अलावा कॉपर सल्फेट है बिंगो लेप आपा जरूर लगा दें जिसों के दिमक की रोकथाम हो जाए। और इंगे सुरक्षा खातर तना की सुरक्षा खातर आपा जी ही आपा ने पेड़ों ऊपर पौधों ऊपर दिमक की परत दिखने लगे माटी की परत दिखे तो बीए भी ने साफ कर गए और तना ऊपर क्लोरोफायरीपास जी की है BCC है बिंगो आपा छिड़काव जरूर आपा कर दें जिसों दिमक को अपने प्रकोप जी को है पेड़ पौधों पर ना होवे और बंगो बंचारो रेवे। इंगे सागे सागे किसान भाइयों देखो खेत छू अलावा आपा घर में आपा देखा कि घर में भी आप कोई लकड़ी की कोई चीज़ है आपने कोई भी अलमारी बनेड़ी है या फिर और कोई सामान रखने वाली कोई भी चीज़ है बीच अलावा तो बंग में भी अपन दिमक को जो प्रकोप अपन देखने ने मिले तो दिमक जी की घर घर में जठे अंधेरो होवे और जठे नमी होवे बैठे दिमक जरूर लागे। तो अपन जी की नमी है बिंगो विशेष रूप से आपा ध्यान रखा कि नमी नहीं होनी चाहिए तो फिर बीच आपा दिमक को आपा छिड़काव जी को बचारो आपा कर सकें। और छिड़काव की बात करा तो इन बचाव खातर आपने रसायनों को जी को छिड़काव है वो भी आपने टेमो टेम कर लेना चाहिए। और इन सागे सागे जी का देसी आपने इलाज हो जी आप मिट्टियों तेल हो गयो या फिर नीम को तेल हो गयो तो आपा शुरुआत वाला जब लक्षण दिखा तो बी टेम ए भी उपाय आप कर सका हाँ तो बिंग में मिट्टियों तेल या फिर नीम को तेल जो है बिंग आपा लेप जो आपा जठे भी आपन दिमक दिखे बैठे आपा वो लेप जो है वो जरूर कर दें तो इसमें आपा दिमक छू अपनी जिकी फसल है या फिर घरे जिको भी सामान है लकड़ी हो तो बिना भी आपा बचा सका हाँ। किसान भाइयों कर सें बातें चीता आपा और मौसम वाली पानड़ी भी पूगती होगी पर पहली आपा सुन लिया एक गीत आओ सुना।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: किसान भाइयों, सुनो आप गीत और मौसम वाली पानड़ी पुगती है। मौसम बतावे है कि आने वाले 3-4 दिन बाद में मानसून जी को है एक फिर शू अपने आने की संभावना है, तो कट्ठे कट्ठी तो हल्की और कट्ठे कट्ठी तेज बारिश होने की संभावना है। और बाजार भावों की बात करें किसान भाइयों, तो बाजार भाव सूरतगढ़ मंडी गमा कणक गज का भाव है बैरिया 2451 लेगी और 2467 रुपया, चिणा बिकया 5490 रुपया, सरसों का भाव उगड़िया 7270 और ऊंचे में 7568 रुपया बिकी, और ग्वार का भाव 5425 और ऊंची जी की बोली लागी बाही 5770 रुपया, मूंग का भाव रिया 6440 6855 रुपया। और गंगानगर मंडी की बात करें किसान भाइयों, तो सरसों का भाव रिया 7600 और ऊंचे में 7964 रुपया, चिणा बिकया 5210 रुपयों लेगे 5435 रुपया, और कणक गो भाव रियो 2450 2771 रुपया, ग्वार बिक्यो 5350 रुपया और जोई बिकी 3315 रुपया। किसान भाइयों, बात करें रायसी नगर मंडी की, तो रायसी नगर मंडी में कणक का भाव रिया 2409 रुपयों लेगे 2776 रुपया, सरसों बिकी 7360 6681 रुपया और चिणा बिकया 5370 5568 रुपया। किसान भाइयों, ये मंडियों का भाव और अब वो सुना है गीत, लियो सुनो सा।

किसान भाइयों, सुने आपा गीत और अब तो कार्यक्रम को टाइम हो गयो है। तो आज को कार्यक्रम इतो ही। सज्जन भाई ने दियो थे अब आज्ञा। राम राम सा राम राम।

अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम चौपाल। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। संध्या के 7:45 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम फिल्मी भक्ति गीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म अवतार के इस गीत के साथ। आवाज़ें हैं आशा भोसले, नरेंद्र चंचल, महेंद्र कपूर और साथियों की।

श्रोताओं, फिल्मी भक्ति गीत आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। लिए कार्यक्रम के आखिर में सुनिए फिल्म गोपी का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत राजेंद्र कृष्ण का है और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म भक्ति गीत। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम एक ही फिल्म से। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे 1982 में रामानंद सागर के निर्देशन में बनी हिंदी भाषा की फिल्म बगावत के कुछ फिल्मी गीत। इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, रीना रॉय और अमजद खान। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले के गाए इस गीत के साथ। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और सुरों में ढाला है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: गगन को डोर समझ रहा है? नादान, मौत आई है तेरी।
1: मौत? इतनी हसीन, अरे ये नागन डसले तो क्या कहना।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम एक ही फिल्म से आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। आज की हमारी फिल्म है बगावत। लीजिए सुनिए इसी फिल्म का गीत आशा भोंसले की आवाज़ में।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोतों लीजिए सुनिए आशा भोंसले और महेंद्र कपूर की आवाज़ में फिल्म बगावत का ये प्यारा सा गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में सुनिए आशा भोसले, शबीर कुमार और साथियों को। गीत आनंद बख्शी का है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज आप सुन रहे थे 1982 में रामानंद सागर के निर्देशन में बनी हिंदी भाषा की फिल्म बगावत के फिल्मी गीत। आकाशवाणी का यह कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से स्पोर्ट्स कैन। स्पोर्ट्स कैन की कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नज़र स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची। खिताबी मुकाबले में कल अकाने यामागुची से सामना होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से। अर्जेंटीना और स्पेन कल फाइनल में होंगे आमने सामने। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के आधिकारिक शुभंकर पीको का अनावरण किया। चेन्नई शतरंज ग्रैंड मास्टर्स में अलीरेजा फिरोजा ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के उद्घाटन समारोह में ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन को भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया। और भारत और इंग्लैंड के बीच कल लॉर्ड्स में तीसरा और निर्णायक एक दिवसीय मुकाबला खेला जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से, जहां अनुभवी खिलाड़ी पीवी सिंधु ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए फाइनल का टिकट पक्का कर लिया है। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। दूसरे गेम में चेन यू फी की चोट के कारण सिंधु को वॉकओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। सुनते हैं सरफिरोजी की खास रिपोर्ट।
1: सेमीफाइनल में सिंधु पूरी तरह हावी नजर आई और वो 21-19, 15-10 से आगे चल रही थी। तभी पूर्व ओलंपिक चैंपियन चेन को हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण हटना पड़ा और सिंधु को वॉक ओवर के जरिए फाइनल का टिकट मिल गया। इससे पहले भारतीय खिलाड़ी ने मजबूत शुरुआत की और अपने आक्रामक खेल और तेज मूवमेंट से पहले गेम के बीच 4 अंकों की बढ़त बना ली। चेन ने वापसी करते हुए स्कोर 19-19 से बराबर किया, लेकिन सिंधु ने आखिरी मिनटों में संयम बनाए रखा और अपने पहले गेम पॉइंट को भुनाते हुए पहला गेम 21-19 से जीत लिया। दूसरे गेम में सिंधु ने शुरुआत से ही रैलियों पर दबदबा बनाए रखा और तेजी से 15-10 की बढ़त बना ली। इसके बाद चेन यू फी चोट से जूझती नजर आई और उन्होंने आखिर में मैच से हटने का फैसला लिया। 31 साल की पीवी सिंधु ने साल की शुरुआत वर्ल्ड नंबर 18 रैंकिंग के साथ की थी, लेकिन लगातार बेहतर प्रदर्शन के दम पर उन्होंने अपनी रैंकिंग में सुधार किया और अब वो दुनिया की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई है। जापान ओपन का खिताब जीतने के लिए लक्ष्य के

0: साथ सिंधु कल होने वाले फाइनल में जापान की अकान यामागुची का सामना करेंगी। क्वार्टर फाइनल मैच से ठीक पहले जापान की नोजोमी ओकुहारा के हटने के बाद सिंधु जापान ओपन सुपर 750 के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंची थी। 2023 में डेनमार्क ओपन के बाद सुपर 750 टूर्नामेंट में सिंधु का ये पहला सेमीफाइनल था। इस सीजन में वो 3 सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं, जिनमें मलेशिया ओपन सुपर 1000 और ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 जैसे टूर्नामेंट शामिल हैं। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
1: अब सीधे चलते हैं फुटबॉल के मैदान की ओर। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मुकाबला देर रात 2:30 बजे अमेरिका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अर्जेंटीना और स्पेन कल रात न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में विश्व कप के फाइनल में आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। सुनते हैं इन मुकाबलों पर एक रिपोर्ट।
2: फाइनल में जगह बनाने से चूकी फ्रांस और इंग्लैंड की टीमें तीसरे स्थान के लिए आमने सामने होंगी। एक तरफ लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने की फ्रांस की उम्मीदों पर स्पेनिश टीम ने पानी फेरा, वहीं दूसरी ओर मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना के खिलाफ आखिरी समय में गोल खाने के बाद इंग्लैंड को दिल तोड़ने वाली हार का सामना करना पड़ा। हालांकि सम्मान, मोमेंटम और पोडियम फिनिश अभी भी दांव पर है। फ्रांस को विश्व कप का सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा था, वहीं इंग्लैंड भी 1966 के बाद पहली बार विश्व कप जीतने के करीब पहुंचता दिख रहा था, लेकिन सेमीफाइनल में ही इनके सफर पर विराम लग गया। प्लेऑफ के इस मुकाबले में अब फ्रांस निरंतरता के साथ उतरेगा। टीम एक बार फिर किलियन एम्बापे के शानदार अटैकिंग खेल पर भरोसा कर सकती है, जो लगातार दूसरे वर्ल्ड कप गोल्डन बूट की दौड़ में बने हुए हैं। वहीं हैरी केन और जूड बेलिंगहैम की अगुवाई वाली इंग्लैंड टीम में किसी भी प्रतिद्वंदी को परेशान करने की क्षमता है, लेकिन डेस्चैम्प्स को जीत के साथ विदाई देने से फ्रांस को रोकने के लिए उन्हें और बेहतर ऑलराउंड खेल दिखाना होगा। एम्बापे और अर्जेंटीना के लियोनेल मेस्सी के 8 गोल हैं। मेस्सी ने 4 गोल में सहायता की, जबकि एम्बापे ने 3 में। इंग्लैंड के हैरी केन और जूड बेलिंगहैम के 6-6 गोल हैं। उधर विश्व कप का खिताबी मुकाबला कल अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। अर्जेंटीना इससे पहले 6 फाइनल खेल चुकी हैं, जिसमें 3 बार उन्होंने खिताब अपने नाम किया। दूसरी ओर स्पेन ने दूसरी बार फाइनल में जगह बनाई है। इससे पहले 2010 में उन्होंने नीदरलैंड्स को हराकर खिताब अपने नाम किया था। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन।
1: खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के आधिकारिक शुभंकर पीको का अनावरण किया। ये प्रतियोगिता नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 17 से 23 अगस्त तक खेली जाएगी। श्री मांडविया ने विश्व चैंपियनशिप का गीत भी लॉन्च किया। इस गीत में भारत की पूरी 16 सदस्यीय टीम नजर आएगी, जिसमें 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी शामिल हैं। श्री मांडविया ने इस अवसर पर कहा कि भारत में खेल संस्कृति का विकास हो रहा है और भारत खेलों का देश बनने की ओर अग्रसर है।
3: युवा शक्ति हमारी स्ट्रेंथ है, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड भी है। उसको हार्नेस्ट करना है तो खेल का मैदान उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी बनना चाहिए, और इसलिए देश में स्पोर्ट्स आगे बढ़े, स्पोर्ट्स के एक इकोसिस्टम बने, स्पोर्ट्स युवाओं का लाइफस्टाइल का एक कल्चर बने। इसलिए जरूरी है कि स्पोर्ट्स को सामाजिक दृष्टि से भी और सरकारी दृष्टि से भी बढ़ावा दिया जाए, एक पब्लिक मूवमेंट बने। स्पोर्ट्स को एडॉप्ट करके हम देश को स्पोर्टिंग नेशन के रूप में आगे बढ़ा सकते हैं।
1: श्री मांडविया ने कहा कि भारत 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कर रहा है और 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए भी इच्छुक है।
3: हमारा लक्ष्य क्लियर है, हमारा एजेंडा फिक्स है, रोड मैप भी तैयार है। मोदी जी ने कहा है कि 2036 में हमें देश में ओलंपिक्स आयोजित करना है, उसके लिए भारत ने ऑलरेडी बिड कर दिया है और हमने कॉमनवेल्थ के लिए बिड को जीत भी लिया है। 2030 में देश में कॉमनवेल्थ आयोजित होगा।
1: भारतीय बैडमिंटन टीम के मुख्य कोच पुलेला गोपीचंद ने दिल्ली में होने वाले इस आयोजन पर खुशी जाहिर की।
4: वी होस्ट द वर्ल्ड चैंपियनशिप अगेन, इट्स अ ग्रेट मोमेंट नॉट ओनली फॉर बैडमिंटन बट फॉर इंडियन स्पोर्ट इन जनरल। देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ पुश इन द लास्ट फ्यू इयर्स इन मेनी स्पोर्ट्स एंड बैडमिंटन एज अ स्पोर्ट हैज ग्रोन ओवर टाइम, सो इट्स ओनली फेयर एंड टाइम दैट वी होस्ट अ प्रेस्टीजियस इवेंट लाइक द वर्ल्ड चैंपियनशिप्स एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट

0: that at this moment of time, Delhi is able to host this prestigious event.
1: मुख्य कोच ने एशियन गेम्स से ठीक पहले आयोजित होने वाले इस प्रतियोगिता को भारतीय खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण बताया।
0: I think it's a wonderful event. It's also a great timing. We have the World Championships followed by the Asian Games. So the next 2 months are going to be very critical for Indian badminton. To have Sindhu reach the finals of Japan, to have Laksh, Ayush, you have Satvik and Chirag, some really good medal contenders.
1: अब चलते हैं सीधे क्रिकेट के मैदान की ओर। भारत और इंग्लैंड के बीच कल लॉर्ड्स में तीसरा और निर्णायक एक दिवसीय मुकाबला खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। तीन मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबरी पर है। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
2: बर्मिंघम में पहले मुकाबले को 6 विकेट से अपने नाम करने के बाद भारतीय टीम को कार्डिफ में खेले गए दूसरे मुकाबले में 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। अब क्रिकेट का मक्का लॉर्ड्स इस श्रृंखला के निर्णायक विजेता का फैसला करेगा। भारत के लिए कार्डिफ में हार के बावजूद विराट कोहली का लय में लौटना एक बड़ी सकारात्मक बात रही, जो 65 रनों की शानदार पारी के दौरान आत्मविश्वास में नजर आए थे। हालांकि रोहित की फॉर्म एक बड़ी चिंता का विषय बनी हुई है। पूर्व भारतीय कप्तान इस वर्ष 8 वनडे पारियों में सिर्फ एक ही अर्धशतक लगा सके हैं। विकेट कीपर बल्लेबाज KL राहुल अस्वस्थ रहने के कारण कार्डिफ में नहीं खेल सके थे। अब भारत को निर्णायक मैच में अपने इस खिलाड़ी की वापसी की उम्मीद होगी। साल 2025 की शुरुआत से राहुल भारत के सबसे भरोसेमंद वनडे बल्लेबाजों में से एक रहे हैं और उनका औसत 50 से ऊपर रहा है। हालांकि लॉर्ड्स ने भारत के कई यादगार पल देखे हैं, लेकिन मेहमान टीम साल 2004 के बाद से इस मैदान पर कोई वनडे मैच नहीं जीत सकी है। इस सूखे को खत्म करने से न सिर्फ सीरीज जीती जा सकेगी बल्कि दौरे का समापन भी यादगार होगा। दूसरी तरफ कार्डिफ में जो रूट ने 99 रन की नाबाद पारी खेलकर एक बार फिर से खुद को साबित किया है, इस पारी ने न सिर्फ रूट का बल्कि पूरी इंग्लिश टीम का आत्मविश्वास बढ़ाया है। पूर्व कप्तान के नाम अब लगातार 5 वनडे मुकाबलों में अर्धशतक है। दूसरे वनडे में जसप्रीत बुमराह के सामने रूट का संयम इंग्लैंड का हौसला बढ़ाएगा, लेकिन भारत के मुख्य तेज गेंदबाज लॉर्ड्स में इस मुकाबले को अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश करेंगे। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी विशेष। विशेष, पहला मुकाबला जहां गेंदबाजों के नाम रहा था, पिच से उनको मदद मिली थी, दूसरे मुकाबले में भी बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो क्या लगता है अगले मुकाबला में पिच किस तरफ रुख करेगी?
3: प्रशांत, अगर लॉर्ड्स की पिच की बात करें तो आमतौर पर ये तेज गेंदबाजों के लिए अच्छी साबित होती है, क्योंकि यहाँ पर गेंदबाजों को काफ़ी स्विंग देखने को मिलता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर बल्लेबाजों को जो है सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर पहली पारी के यहाँ पर औसतन स्कोर की बात करें तो 232 रन का स्कोर बनाती है जो टीम पहले खेलती है, और दूसरी टीम का जो औसतन स्कोर है वो 200 रन के आसपास का है। 89 वनडे मुकाबलों में इस ग्राउंड पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 44 मैच जीते हैं, जबकि 40 मुकाबलों में जीत रनों का पीछा करने वाली टीम के हाथ लगी है।
1: विशेष, हर एक मुकाबले में रोहित शर्मा और विराट कोहली नया कीर्तिमान रचते हैं, कल के मुकाबले में क्या कुछ नया करते नजर आएंगे दोनों खिलाड़ी?
3: जी, भारत के दिल और धड़कन कहे जाने वाले रोहित शर्मा और विराट कोहली कल 400वां इंटरनेशनल मुकाबला साथ में खेलने जा रहे हैं। कोहली और जो रोहित की जोड़ी है, इस मुकाम तक पहुंचने वाली पहली भारतीय जोड़ी बनेगी। यह दोनों इस खास लिस्ट में सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ को पहले ही पीछे छोड़ चुके हैं। सचिन और द्रविड़ ने भारत के लिए 391 मुकाबले साथ में खेले हैं।
1: और उधर क्रिकेट इतिहास के महान ऑलराउंडरों में से एक, वेस्टइंडीज के दिग्गज खिलाड़ी सर गैरी सोबर्स का कल निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे। ICC और BCCI ने इस दिग्गज खिलाड़ी को श्रद्धांजलि दी है। ICC ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि खेल को गौरवान्वित करने वाले सबसे महान क्रिकेटरों में से एक सर गारफील्ड सोबर्स का दुखद निधन हो गया है। हमारी संवेदनाएं उनके परिवार, दोस्तों और वेस्टइंडीज क्रिकेट के साथ है। हम एक ICC हॉल ऑफ फेम क्रिकेटर को अलविदा कह रहे हैं। BCCI ने भी सर गारफील्ड सोबर्स के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि उनकी असाधारण उपलब्धियों, कैरेबियाई क्रिकेट पर उनके स्थायी प्रभाव और दुनिया भर के खेल में उनके योगदान ने एक ऐसी यादगार विरासत छोड़ी है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। सर गैरी सोबर्स ने 93 टेस्ट मैचों की 160 पारियों में 26 शतक और 30 अर्धशतक की मदद से 8032 रन बनाए और 235 विकेट भी अपने नाम किए। और अब बात

शतरंज पर फ्रांस के ग्रैंड मास्टर अलीरेजा फिरोजा ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स में शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। चेन्नई में कल खेले गए दूसरे राउंड में उन्होंने भारत के मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश को 69 चालों के बाद मात देकर टूर्नामेंट में 2 अंकों के साथ बढ़त हासिल कर ली है। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन को आगामी ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया है। दोनों दिग्गज एथलीट 23 जुलाई को ओपनिंग सेरेमनी में 126 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व करते हुए तिरंगा लेकर मार्च करेंगी। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी ऊषा ने आज इसकी आधिकारिक घोषणा की। मीराबाई लगभग एक दशक से भारत की अग्रणी भारोत्तोलक रही है। उन्होंने 2021 के टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता और उसके बाद 2022 के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य और 2023 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में अलग बैठने की अनुमति दी। अहमदाबाद में पटाखों के कारखाने में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु, प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ हुर्मुज जलडमरु मध्य पर ईरान और अमेरिका का युद्ध तेज हुआ। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी। और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा की गई। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
1: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, इट विल मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है। इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, बट इट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में।
0: ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।
2: राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नमिदास और रूपश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर और वैकुम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा काडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। कल की 2898 एडी को भरपूर मनोरंजन वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। कैप्टन मिलर को राष्ट्रीय और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। श्रीकांत को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, मारन को सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म, लहरी को सर्वश्रेष्ठ उड़िया फिल्म, मिथ्या को सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म, सुनीता को सर्वश्रेष्ठ मणिपुरी फिल्म और ढोली को सर्वश्रेष्ठ गढ़वाली फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल

0: तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने कहा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना यूबीटी सांसदों के विलय को भी मंजूरी दी गई है। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा कारखाने में भीषण आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह कारखाना रामोल गात्राड रोड पर है।
1: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी वसराल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और शवों को बरामद किया। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वालों के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। उन्होंने घोषणा की कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं और उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने भी हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। यह प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद की निजी कंपनी स्काई रूट एयरो स्पेस ने किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम 1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एयरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम 1 में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। ये अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने विक्रम 1 से जुड़ी पूरी टीम को बधाई दी है।
3: टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री
4: आज देश में पहली बार एक निजी रॉकेट ने सफलतापूर्वक एक सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है और इससे युवाओं में आर्थिक विकास और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना बढ़ती है। वास्तव में ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है।
3: इट्स ए वेरी वेरी सिग्निफिकेंट मोमेंट।
0: होर्मुज जलडमरू मध्य पर संघर्ष बढ़ने के कारण अमरीका और ईरान ने आज हमले तेज कर दिए। कुवैत में हमलों से भारी तबाही होने की खबर है। वहां ईरान ने वाटर डिसैलिनेशन संयंत्र और एक तेल सुविधा केंद्र पर हमले किए। इन हमलों में कई लोग घायल हुए और बिजली उत्पत्ति बाधित हुई है। पिछले 2 दिन में डिसैलिनेशन संयंत्र पर यह दूसरा हमला था। पेयजल के लगभग 90% हिस्से का डिसैलिनेशन के जरिए आने के कारण देश में चिंताएं बढ़ गई है। कुवैत के विदेश मंत्रालय ने ईरानी हमलों

में महत्वपूर्ण नागरिक अवसंरचना को निशाना बनाए जाने की कड़ी निंदा की है। मंत्रालय ने ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। रूस पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों में 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 60 घायल हुए हैं। रूस के अधिकारियों ने बताया कि रूस के प्रमुख ऑनलाइन रिटेलर के 2 विशाल गोदामों पर यूक्रेन ने रात को ड्रोन हमले किए। एक गोदाम रूस के तांबो ओब्लास्ट क्षेत्र में और दूसरा मॉस्को में है। ओब्लास्ट क्षेत्र के कोटोवस्क में रात्रि पाली में काम करने वाले 7 श्रमिकों की मृत्यु हो गई और 25 घायल हो गए। वहीं मॉस्को के इलेक्ट्रोस्टल शहर में एक व्यक्ति मारा गया और 36 घायल हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा की पत्नी चनम्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चनम्मा अपनी विनम्रता और समाज सेवा के प्रति अटूट समर्पण के लिए जनप्रिय थीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दुख की घड़ी में उनकी संवेदनाएं श्री देवेगौड़ा और उनके पूरे परिवार के साथ हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चनम्मा शांत स्वभाव, गरिमा और परिवार के प्रति अटूट समर्पण की प्रतीक थी। वे श्री देवेगौड़ा जी के लंबे सार्वजनिक सेवा काल में एक मजबूत स्तंभ के रूप में खड़ी रहीं। श्री देवेगौड़ा HD कुमारस्वामी और पूरे शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने कामना की कि ईश्वर उन्हें इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को वर्चुअल माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना किया। रेल मंत्री ने कहा कि ये रेलगाड़ी सप्ताह में 2 दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी। श्री वैष्णव ने बताया कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तरी रेलवे ने जम्मू डिवीजन के कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम तत्काल प्रभाव से बदलकर शहीद कप्तान सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन कर दिया है। स्टेशन का नया अल्फा कोड MSKT होगा, जबकि अन्य सभी विवरण अपरिवर्तित रहेंगे। अनारक्षित टिकट प्रणाली और यात्री आरक्षण प्रणाली में स्टेशन MC सुनील कठुआ के रूप में दिखाई देगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इस निर्णय की घोषणा की और कठुआ के लोगों को बधाई देते हुए इस कदम को शहीद के बलिदान और राष्ट्र के प्रति सेवा को श्रद्धांजलि बताया। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन के को ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वज वाहक चुना गया है। दोनों दिग्गज एथलीट 23 जुलाई को उद्घाटन समारोह में 126 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व करते हुए तिरंगा लेकर मार्च करेंगी। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT ऊषा ने आज इसकी आधिकारिक घोषणा की। मीराबाई चानू लगभग एक दशक से भारत की अग्रणी भारोत्तोलक रही हैं। उन्होंने 2021 के टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता और उसके बाद 2022 के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य और 2023 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। यह मैच देर रात 2:30 बजे अमेरिका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अर्जेंटीना और स्पेन कल रात न्यू जर्सी स्टेडियम में विश्व कप के फाइनल में आमने सामने होंगे। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। PV सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। दूसरे गेम में चेन यू फी की चोट के कारण सिंधु को वॉकओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने के साथ ही PV सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं। 31 वर्षीय सिंधु ने वर्ष 2026 की शुरुआत विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान से की थी।
उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र अड़ापा विजय अनुष्ठान आज शाम पुरी के श्री गुंडिचा मंदिर में पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न हो रहा है। यह वार्षिक रथ यात्रा के सबसे आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण समारोह में से एक है। रथ यात्रा के सफल समापन

0: ये बात कल पवित्र त्रिमूर्ति को वैदिक मंत्रों, भक्ति गीतों और सदियों पुराने मंदिर अनुष्ठानों के बीच पारंपरिक पहंडे जुलूस में उनके संबंधित रथों से श्री गुंडिचा मंदिर के गर्भगृह में ले जाया जा रहा है। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरलम, माहे, उड़ीसा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में अलग बैठने की अनुमति दी। अहमदाबाद में पटाखों के कारखाने में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु, प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ होर्मुज जलडमरू मध्य पर अमेरिका और ईरान का युद्ध तेज हुआ। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी। और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. 72nd National Film Awards announced. Yami Gautam wins Best Actress Award for Article 370, Mammootty for Brahmayugam and Kartik Aaryan for Chandur Champion share Best Actor Award. 20 rebel TMC MPs who joined National Citizens Party of India get Lok Sabha Speaker's approval for separate seating in the House. Massive fire at a firecracker factory in Ahmedabad claims 5 lives. Prime Minister Narendra Modi expresses grief. US-Iran fighting over Strait of Hormuz escalates with attacks on key infrastructure and military targets. Olympic medalists Mirabai Chanu and Lovlina Borgohain to be India's flag and baton wearers at opening ceremony of Commonwealth Games in Glasgow. And in FIFA World Cup, France to clash with England for third place at Miami Stadium tonight. Hindi film Article 370 has won the Best Film Award in the 72nd National Film Awards. Announcing the awards today in New Delhi this evening, Chairman of Jury Feature Film Jairaj said Mammootty and Kartik Aaryan have won the National Film Awards in Best Actor category for their movies Brahmayugam and Chandur Champion. He said Yami Gautam will be given the Best Actress Award for her performance in the film Article 370.
2: Best actress in leading role, Article 370, Hindi film. Renowned performance that portrays a law enforcement agent's unwavering pursuit of truth and justice with sensitivity, courage and compassion. A performance that leaves a profound and lasting impact. Actress Yamini Gautam. Best actor in a leading role, Shahid. Chandu Champion, Hindi, for a performance that transcends the conventions of a sports biopic, bringing an unsung hero story to life with dignity, sincerity and lasting impact. Actor Kartik Aaryan.
1: Chairman of Jury Non-Feature Film Asim Kumar Sinha said Bhangar, directed by Sumira Roy, has bagged the Best Non-Feature Film Award. Best Short Film is Humsafar in Marathi. He said Best Direction Award will be given to Anand L. Rai for Statue of Unity Ekta Ka Pratik.
3: Best Direction is Statue of Unity Ekta Ka Pratik, Hindi, Citation, for creatively chronicling the making of the world's tallest statue through dynamic cinematic storytelling, transforming and engineering marvel into a stirring tribute to Sardar Vallabhbhai Patel, unity and national pride. Director Anand L. Rai. Best Short

श्रोताओं, कार्यक्रम सुगम संगीत आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। आज हमारे कलाकार हैं सोनू निगम।

श्रोतों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। आज हमारे कलाकार थे सोनू निगम। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए हमारे दिल्ली केंद्र से राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका। इस कार्यक्रम की कृपया प्रतीक्षा करें।

0: राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
1: साइलेंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन।

0: नमस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के इस महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय प्रेमचंद की कहानियों पर बनी फिल्में
1: रखे पतवा सर के डोले मनवा की ही में उठते ही लो।
0: स्मृति शेष में नमन फिल्म जगत की कुछ ऐसी हस्तियों को जो इस बीच हमसे बिछड़ गईं। जानी मानी अभिनेत्री और निर्देशक विजया मेहता।
2: विजया जी एक ऐसी अभिनेत्री थी जिसे दिग्गज कहना भी कम होगा। अलग किस्म के सब्जेक्ट्स ले आना, सवाल उठाना, नए नए नाटककार पेश करना, ये सारा योगदान विजया जी ने बड़े काबिलियत के साथ किया।
0: जाने माने फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी। जाने माने फिल्मकार, अभिनेता, गायक और संगीतकार के भाग्यराज।
3: संगत जंगल मिन्नुं पैंगिल ताने कुंजे अदो इनि तंजम मल्लिगै मंजम एन्रिवन तोलिल तुंजे अदो।
0: और जाने माने फिल्म निर्देशक, निर्माता, लेखक और अभिनेता भारती राजा।

सबसे पहले संपादकीय प्रेमचंद की कहानियों पर बनी फिल्में। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के शिखर पुरुष हैं। 31 जुलाई 1880 को उनका जन्म हुआ था। जुलाई का महीना प्रेमचंद की याद का महीना होता है, इसलिए संपादकीय में आज हम चर्चा कर रहे हैं उन फिल्मों की जो प्रेमचंद की कृतियों पर आधारित हैं। प्रेमचंद का लेखन भारतीय समाज, भारतीय ग्रामीण जीवन, किसानों की पीड़ा और स्त्रियों की सामाजिक स्थिति का बाकायदा यथार्थवादी चित्रण करता है। आज भी प्रेमचंद उतने ही प्रासंगिक बने हुए हैं। शायद यही वजह है कि विभिन्न भाषाओं के फिल्मकार अपनी फिल्मों के लिए प्रेमचंद की कृतियों को चुनते रहे हैं। उनकी कृतियों पर बनी फिल्मों की बातें हम आगे करेंगे, पर पहले एक दिलचस्प बात। मुंशी प्रेमचंद स्वयं भी मुंबई सिनेमा जगत से जुड़े रहे थे। असल में हंस और जागरण पत्रिकाओं के संपादन की वजह से उन्हें जो नुकसान हुआ, उसके बाद उन्होंने फिल्मों के लिए लिखने और कमाई करने का मन बनाया था। सन 1934 में आर्थिक तंगी के चलते वे बंबई आए और फिल्म कंपनी अजंता सिनेटोन में लेखक के रूप में काम करने लगे। यहां उन्होंने दो फिल्में लिखी, मिल मजदूर और नवजीवन।

समय के विख्यात फिल्मकार नानू भाई वकील ने 1934 में उनके प्रख्यात उपन्यास सेवा सदन पर इसी नाम की एक फिल्म बनाई थी जो प्रेमचंद को पसंद नहीं आई थी। उन्हें फिल्म जगत का काम करने का तरीका अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने अपना अनुबंध तक पूरा नहीं किया और साल भर के अंदर ही बनारस लौट गए। मशहूर तमिल फिल्मकार कृष्ण स्वामी सुब्रमण्यम ने सन 1938 में सेवा सदन पर तमिल भाषा में इसी नाम की एक फिल्म बनाई थी। हिंदी फिल्म के उलट तमिल फिल्म मूल कृति के प्रति ज्यादा ईमानदार थी। इस फिल्म में प्रसिद्ध गायिका एमएस सुब्बलक्ष्मी ने नायिका सुमन की भूमिका निभाई थी। प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि पर इसी नाम की फिल्म बनी सन 1941 में। मुंशी प्रेमचंद भले ही वापस लौट गए हों, लेकिन मुंबई में उनकी कृतियों पर फिल्में बनने का सिलसिला जारी रहा। सन 1959 में प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी दो बैलों की कथा पर कृष्ण चोपड़ा ने एक फिल्म बनाई हीरा मोती। इस फिल्म में बलराज साहनी और निरूपा राय मुख्य

मुंशी प्रेमचंद की अमर कृति गोदान सन 1936 में प्रकाशित हुई थी। इस उपन्यास पर सन 1963 में इसी नाम की फिल्म आई, जिसे त्रिलोक जेटली ने निर्देशित किया था। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं थीं राजकुमार, कामिनी कौशल, शशिकला और महमूद की। इस फिल्म के गाने अनजान ने लिखे और संगीत दिया जाने माने सितार वादक पंडित रविशंकर ने।

सन 1966 में ऋषिकेश मुखर्जी ने प्रेमचंद के उपन्यास गबन पर इसी नाम की फिल्म बनाई थी। कलाकार थे सुनील दत्त, साधना, मीनू मुमताज, लीला मिश्रा और कन्हैया लाल वगैरह। संगीत शंकर जयकिशन का था।

0: बांग्ला के महानतम फिल्मकारों में गिने जाते हैं सत्यजीत रे। उन्होंने पूरे करियर में सिर्फ दो हिंदी फिल्में बनाई और संयोग देखिए कि दोनों ही फिल्में मुंशी प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित थीं। सन 1977 में सत्यजीत रे ने बनाई शतरंज के खिलाड़ी। ये सत्यजीत रे की पहली हिंदी फिल्म थी जो प्रेमचंद की इसी नाम की कहानी पर आधारित थी। इसमें अवध के दो कुलीन मित्रों मीर और मिर्जा की कहानी है, जो शतरंज में इतने डूबे रहते हैं कि अंग्रेजों के हाथों अपने राज्य के पतन की परवाह तक नहीं करते। मुख्य कलाकार थे संजीव कुमार, सईद जाफरी, अमजद खान और शबाना आजमी वगैरह।
1: प्यादे तो ठीक है
2: जी,
1: तो वजीर और बादशाह भी ठीक है, लेकिन ये पीले घोड़े और रुख में गड़बड़ ना कीजिएगा।
2: तो सुन लीजिए ना, पीला टमाटर, नींबू घोड़ा, मिर्ची रुख।
0: सत्यजीत रे की दूसरी हिंदी फिल्म थी प्रेमचंद की कहानी सतगति पर आधारित इसी नाम की फिल्म। इस फिल्म में ओमपुरी, स्मिता पाटिल और मोहन अगाशे ने अभिनय किया था।
3: बिटिया की सगाई कर रहा हूँ महाराज, आप दया करके चले चलते और उसका साइड सगन बिचार दे।
4: क्या खड़ा हो गया यहाँ? बाबा यहाँ से?
5: मैं यहाँ खाली बैठा हूँ कि जब जो जहाँ बुलाए उसी दम चल पड़ो।
0: ये कहानी जातिगत शोषण की एक क्रूर और मार्मिक कथा है। बांग्ला के दिग्गज निर्देशक मृणाल सेन ने प्रेमचंद की मशहूर कहानी कफन को आधार बनाकर 1977 में तेलुगु की एक फिल्म बनाई ओका उरी कथा। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। छोटे पर्दे पर मुंशी प्रेमचंद की कहानियां खूब लोकप्रिय हुई। दूरदर्शन के सुनहरे दिनों में उनके उपन्यास पर आधारित एक धारावाहिक आया निर्मला, जिसे बहुत पसंद किया गया। इसके अलावा गुलजार ने दूरदर्शन पर प्रेमचंद की चुनिंदा कहानियों को लेकर एक धारावाहिक बनाया तहरीर मुंशी प्रेमचंद की। ये सीरियल भी काफी चर्चित रहा। इसके तहत पूस की रात, ईदगाह, ठाकुर का कुआं और नमक का दरोगा जैसी कई कहानियों को छोटे पर्दे पर शिद्दत से पेश किया गया था। भले ही प्रेमचंद को जीते जी बंबई की फिल्मी दुनिया रास नहीं आई, पर कमाल की बात यह है कि उनके जाने के बाद सत्यजीत रे और मृणाल

0: सीन जैसे कलजयी फिल्मकारों ने उनकी कहानियों को वो सम्मान और गहराई दी जिसकी वे हकदार थीं। मुंशी प्रेमचंद की स्मृति को हमारा नमन। ये था संपादकीय मुंशी प्रेमचंद की कृतियों पर बनी फिल्में। और अब स्मृति शेष। स्मृति शेष। स्मृति शेष में आज हम चार हस्तियों को नमन करने जा रहे हैं जो हमसे बीते दिनों बिछड़ गईं। सबसे पहले नमन करते हैं जानी मानी अभिनेत्री और फिल्मकार विजया मेहता को, जिन्होंने 30 जून को इस असार संसार से विदा ली। बरसों पहले की बात है, तकरीबन 90 का दशक। दूरदर्शन पर एक सीरीज आती थी, लाइफलाइन। अस्पतालों के जीवन, डॉक्टरों और इंटर्न्स के जूझने और मरीजों से जुड़े अनुभवों पर केंद्रित था ये धारावाहिक। इसकी निर्देशक थीं विजया मेहता। एक से बढ़कर एक कलाकार थे इस सीरीज में। तन्वी आजमी, के रैना, मोहन जोशी, शफी नामदार, इला अरुण, पंकज कपूर, ए के हंगल जैसी नामी हस्तियों का जुड़ाव था इस धारावाहिक से। विजया मेहता की पहचान सिर्फ लाइफलाइन टीवी सीरियल नहीं है, उन्होंने भारतीय फिल्म जगत को कुछ कालजयी और बेहद कलात्मक फिल्में दी हैं, पिस्टन जी, राव साहब और हमीदा बाई की कोठी वगैरह। उन्होंने रुपहले पर्दे पर कई बार अभिनय किया, खासतौर पर श्याम बेनेगल की फिल्म कलयुग में, गोविंद नेहलानी की फिल्म पार्टी में दमयंती राणे की उनकी भूमिका सबको याद है। उनकी निर्देशित फिल्म राव साहेब सन 1985 में आई थी और जयवंत दलवी के मराठी उपन्यास पर आधारित थी। इसी उपन्यास पर जयवंत दलवी ने बैरिस्टर नाम का एक नाटक भी रचा था। इस फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे। विजया मेहता को सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और इसी फिल्म के लिए श्याम भूतकर को मिला सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशक का राष्ट्रीय पुरस्कार। सन 1988 में विजया मेहता ने पेस्टन जी नामक फिल्म बनाई। असल में ये फिल्म मुंबई में 50 और 60 के दशक में मौजूद पारसी समुदाय की कहानी है।
1: तूने जरू की सूरत देखी है, उसकी आवाज सुनी है? 5 वर्ष ने अंदर जरू की क्या हालत बना दी तूने। बच्चा मर गया, पप्पा स्ट्रोक थी बीमार, नहीं तू सुख नहीं बात करे। उस औरत ने तेरे को इतना सेल्फिश बना दिया है, पन खुदा सब देखता है, याद रख जे।
0: इस फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम का राष्ट्रीय पुरस्कार।
2: विजया जी एक ऐसी अभिनेत्री थी,
0: जाने माने फिल्मकार और अभिनेता अमोल पालेकर,
2: इसे दिग्गज कहना भी कम होगा। रंगायन जैसी संस्था का उन्होंने निर्माण किया, अलग किस्म के सब्जेक्ट्स ले आना, अलग किस्म के सवाल उठाना, अलग किस्म के नाटक पेश करना, नए नए नाटककार पेश करना, ये सारा योगदान विजया जी ने बड़े काबिलियत के साथ किया। मैं इतना ही कहूंगा कि विजया जी मेरी सीनियर थी, क्योंकि मैं सत्यदेव दुबे ग्रुप से था, उसको राइवल ग्रुप माना जाता था। मेरी और विजया जी की एक बड़ी प्यारी सी दोस्ती थी, एक बहुत अच्छा गहरा रिश्ता था।
0: विजया मेहता को हमारा विनम्र नमन। जाने माने फिल्म निर्माता पहलाज नेहलानी का 4 जून को निधन हो गया। पहलाज नेहलानी की कहानी संघर्ष की दास्तान है। उनका जन्म 28 दिसंबर 1948 को सिंध पाकिस्तान में हुआ था। विभाजन के बाद परिवार सब कुछ छोड़कर आ गया। पहलाज नेहलानी का बचपन मुंबई के कोलाबा में बीता। घर की हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए पहलाज नेहलानी ने पढ़ाई छोड़ दी और छोटे मोटे काम पकड़ लिए। फिल्मों से बचपन से उन्हें लगाव रहा था। वे कोलाबा की टॉकीजों के बाहर घंटों खड़े रहते। जेब खर्च के लिए वो कभी कभी फिल्मों के टिकट ब्लैक किया करते थे। इसी रास्ते उनकी मुलाकात सिनेमा जगत के कुछ लोगों से हुई और वे फिल्म संसार में बतौर क्लैपर बॉय शामिल हो गए। यहां उन्हें समझ में आया कि अगर अच्छी जिंदगी बितानी है तो फिल्मों से जुड़ा कोई बिजनेस करना होगा। धीरे धीरे पैसे जमा करके उन्होंने फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू किया। वे छोटी फिल्मों के राइट्स खरीदते और उन्हें छोटे थिएटर्स में लगवाते। कुछ ही सालों में पहलाज नेहलानी बंबई और गुजरात सर्किट के एक बड़े वितरक बन गए। सन 1982 में उन्होंने अपनी फिल्म कंपनी शुरू की, चिराग दीप इंटरनेशनल। उनकी पहली फिल्म थी हथकड़ी। साल

0: 1982. हथकड़ी कामयाब रही और पहलाज नेहलानी फिल्म जगत के दिग्गज प्रोड्यूसर्स में शामिल हो गए। सन 1985 के आसपास उन्होंने विरार के एक दुबले पतले लड़के को देखा जो कमाल का डांस करता था। उसका नाम था गोविंदा आहूजा। पहलाज नेहलानी ने इस नौजवान को लेकर 1986 में बनाई फिल्म इल्जाम। इस फिल्म ने गोविंदा को सुपरस्टार बना दिया। इसके बाद उन्होंने गोविंदा के साथ कई फिल्में की। 1992 शोला और शबनम, 1993 आंखें,
1: ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता।
0: पहलाज नेहलानी की प्रमुख फिल्में हैं आग ही आग, पाप की दुनिया और अंदाज 1994।
2: किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो।
0: पहलाज नेहलानी भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे थे। विनम्र नमन। 27 जून को हमसे विदा हो गए तमिल सिनेमा के जाने माने फिल्मकार, गायक और संगीतकार के भाग्यराज। भारतीय सिनेमा, विशेषकर तमिल और हिंदी सिनेमा के इतिहास में के भाग्यराज एक वन मैन आर्मी रहे। एक ही समय में फिल्म के लेखक, निर्देशक, अभिनेता और संगीतकार, सब कुछ एक साथ। मणिरत्नम से लेकर शोमैन राज कपूर तक पटकथा की उनकी जादुई समझ का लोहा मानते थे। जब रजनीकांत और कमल हासन अपनी अपनी स्टाइल से अभिनय की दुनिया पर राज कर रहे थे, तब के भाग्यराज एक साधारण, सीधे साधे और डरपोक आम आदमी के रूप में तमिल सिनेमा में दर्शकों के दिल में उतर गए। के भाग्यराज का जन्म 7 जनवरी 1993 को तमिलनाडु के इरोड जिले के एक साधारण गांव में हुआ था। भाग्यराज का मन बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल नहीं लगता था। वे अक्सर स्कूल से भागकर सिनेमा घरों में पाए जाते थे। उनकी इस आदत से परेशान होकर उनके पिता ने एक बार हताश होकर कह दिया था, ये लड़का जिंदगी में कभी कुछ कर नहीं पाएगा। पिता की ये कड़वी बात उनके दिल को चुभ गई। उन्होंने ठान लिया कि वे फिल्मी दुनिया में नाम कमाकर सबको दिखा देंगे। कॉलेज के दिनों में असफल होने के बाद अपनी जेब में कुछ रुपए और दिमाग में ढेर सारी कहानियां लेकर वे चेन्नई आ गए। यहां भाग्यराज ने कई हफ्तों तक निर्देशकों के दफ्तरों के चक्कर काटे। उन दिनों तमिल सिनेमा में एक नए निर्देशक अपनी यथार्थवादी फिल्मों से धूम मचा रहे थे। नाम था भारती राजा। भाग्यराज जब भारती राजा से काम मांगने गए तो उन्होंने कोई भारी भरकम डायलॉग नहीं सुनाया। उन्होंने भारती राजा को अपने गांव के किरदारों और वहां के लोगों के बात करने के अजीबोगरीब लहजे को इतने मजेदार ढंग से सुनाया कि भारती राजा हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उन्होंने तुरंत के भाग्यराज को अपना सहायक निर्देशक बना दिया। के भाग्यराज ने भारतीय सिनेमा की कल्ट फिल्म 16 वैथिनीले में बतौर सहायक निर्देशक काम किया। इस फिल्म के कलाकार थे कमल हासन, रजनीकांत और श्रीदेवी। इस फिल्म में उन्होंने एक छोटा सा रोल भी किया था। 2 सालों के अंदर भाग्यराज ने अपनी काबिलियत साबित की और साल 1979 में फिल्म सुवरिल्लाद सिथी रंगल में बतौर निर्देशक और अभिनेता के रूप में एक शानदार शुरुआत की। ये फिल्म सुपरहिट रही। अस्सी के दशक में भाग्यराज का नाम फिल्म हिट होने की गारंटी बन गया था। उन्होंने तमिल सिनेमा को 2 ऐसी फिल्में दी जो आज भी फिल्म मेकिंग के छात्रों को दिखाई जाती हैं। मौन गीतोंगल, सन 1981 में आई ये फिल्म पति पत्नी के अहंकार पर बनी एक परिपक्व फिल्म थी।

सन 1987 में आई अनिल कपूर की फिल्म जुदाई के कई हिस्से इसी फिल्म से प्रेरित थे। सन 1983 में के भागीराज की फिल्म आई मुंथा नई मुदिचू। एक शिक्षक और गांव की शरारती लड़की की इस कहानी ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया।

उनकी कुछ कामयाब फिल्में हैं चिन्नावीडू और इधू नम्मा आलू। बहुत कम लोग जानते हैं कि 80 और 90 के दशक की हिंदी सिनेमा की कई हिट फिल्में के भाग्यराज के दिमाग की उपज थीं। अमिताभ बच्चन के डबल रोल वाली फिल्म थी आखिरी रास्ता। ये फिल्म असल में के भाग्यराज की फिल्म ओरू कैथियन डायरी की आधिकारिक रीमेक थी। इस फिल्म की कहानी, स्क्रीन प्ले और निर्देशन तीनों की बागडोर खुद के भाग्यराज ने संभाली थी।

अनिल कपूर की 1983 में आई फिल्म वो सात दिन असल में के भागीराज की कल्ट तमिल फिल्म अंधा सात नाटकल की हूबहू रीमेक थी।

गोविंदा की फिल्म राजा बाबू के भागीराज की सुपरहिट तमिल फिल्म रासुकुट्टी की रीमेक थी। जितेंद्र की फिल्म मास्टर जी के भागीराज की ब्लॉकबस्टर फिल्म मुथानई मुदुचू पर आधारित थी। 27 जून 2026 को भारतीय सिनेमा का ये चमकता सितारा हमेशा के लिए बुझ गया। विनम्र नमन।

कि भागीराज को याद करते हुए हमने जिक्र किया उन्हें पहला मौका देने वाले निर्देशक भारती राजा का। कैसी विडंबना है कि इसी महीने भारती राजा भी हमसे बिछड़ गए। 10 जून को उन्होंने आखिरी सांस ली। भारती राजा भारतीय सिनेमा के उन गिने चुने निर्देशकों में से एक हैं जिन्हें 6 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया। महान निर्देशक मणिरत्नम से लेकर पटकथा के जादूगर के भाग्यराज तक बहुत सारी फिल्मी हस्तियां हैं जो भारती राजा को अपनी प्रेरणा मानती रहीं। भारती राजा तमिल सिनेमा के वो क्रांतिकारी फिल्म मेकर हैं जिन्होंने बंद स्टूडियो के शीशों को तोड़कर फिल्मों को गांव की असली मिट्टी, खुली हवा और यथार्थ की खुशबू से सराबोर कर दिया था। 70 के दशक के दक्षिण भारतीय सिनेमा का मतलब था भव्य सेट और स्टूडियो के भीतर पूरी शूटिंग, लेकिन भारती राजा ने आकर तमिल सिनेमा का पूरा भूगोल बदल दिया। भारती राजा का जन्म 17 जुलाई 1941 को तमिलनाडु के थेनी जिले के एक खूबसूरत गांव अल्लीनगरम में हुआ था। उनका असली नाम था चिन्नासामी। गांव के खेतों, तालाबों, लोकगीतों और ग्रामीण संस्कृति ने उनके मानस पटल पर गहरी छाप छोड़ी। वे अक्सर गांव के लोगों के बर्ताव को बहुत बारीकी से देखते थे। फिल्मों में आने से पहले वे स्वास्थ्य विभाग में एक क्लर्क की नौकरी पर थे, पर उनका दिल थिएटर में धड़कता था। आखिरकार नौकरी छोड़कर वे चेन्नई आ गए। सन 1977 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई 16 वैथिनिले। इस फिल्म ने तमिल सिनेमा के सारे पुराने नियम तोड़ दिए। जब भारती राजा ने इस फिल्म की शूटिंग पूरी तरह से आउटडोर की तो चेन्नई के कई बड़े स्टूडियो मालिकों ने कहा, ये पागल लड़का पूरी फिल्म खराब कर देगा। आउटडोर में न अच्छी लाइटिंग होती है, ना आवाज साफ आती है। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो इसने इतिहास रच

इस फिल्म में पटकथा के बीताज बादशाह के भाग्यराज उनके सहायक निर्देशक थे। भारती राजा की फिल्में सिर्फ गांव की खूबसूरती नहीं दिखाती, वे गांव में फैली रूढ़िवादिता और जातिवाद पर करारा प्रहार भी करती हैं। किसक के पोगुम रेल 1978 में आई ये फिल्म एक बेहद खूबसूरत प्रेम कहानी है, जो अलग अलग गांवों में सामाजिक ताने बाने और रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द घूमती है। 1978 में आई सिगप्पू रोजक्कल, ग्रामीण फिल्मों के उस्ताद भारती राजा ने सबको चौंकाते हुए कमल हासन और श्रीदेवी को लेकर एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर बनाई थी। ये फिल्म बहुत कामयाब रही। 1987 में आई वेदम पुदिथु, ये फिल्म जाति व्यवस्था और धार्मिक पाखंड पर तीव्र प्रहार करती है। तमिल सिनेमा में इतिहास रचने के बाद भारती राजा ने हिंदी सिनेमा का रुख किया। 1986 में उन्होंने बनाई सवेरे वाली गाड़ी, ये उनकी तमिल कल्ट फिल्म किसक के पोगुम रेल का हिंदी रीमेक था। कलाकार थे सनी देओल और पूनम ढिल्लो।

0: सन 1980 में भारती राजा ने अपनी फिल्म सिगप्पू रोज़ाक्कल का हिंदी रीमेक किया रेड रोज के नाम से।
1: हम जिंदगी में सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन किसी से अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकते।
2: पिछले एक हफ्ते से मेरी बहन घर वापस नहीं लौटी।
0: 1984 में आई आज का एमएलए राम अवतार। इस फिल्म में राजेश खन्ना और शबाना आजमी ने काम किया था। 1983 में आई कुमार गौरव और पद्मिनी कोल्हापुरे के अभिनय वाली फिल्म लवर्स।

1984 में आई कानून क्या करेगा, सितारे थे सुरेश ओबेरॉय और दीप्ति नवल। भारती राजा को 6 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले थे। 1982 में फिल्म अनाथा रथम के लिए, 1986 में फिल्म मुथल मरियाथाई के लिए, 1988 में फिल्म वेदम पुदिथु के लिए, 1985 में फिल्म करुथम्मा के लिए, 1996 में फिल्म अंथी मंथराई के लिए और साल 2001 में कडाल पुक्कल के लिए। भारत सरकार ने सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें साल 2004 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। विनम्र नमन।

ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का जुलाई महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती के मुंबई स्थित स्टूडियोज में किया गया है।

0: ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है देवव्रत मिश्र का सितार वादन। वाराणसी के प्रतिष्ठित संगीत घराने में जन्मे देवव्रत मिश्र ने अपनी मां प्रमिला मिश्रा से संगीत की प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की और अपने पिता पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्र के मार्गदर्शन में सितार की विधिवत शिक्षा प्राप्त की। आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार देवव्रत मिश्र ने ठुमरी परंपरा और बनारस घराने के गायकी की विशिष्ट बारीकियां अपने दादाजी ठुमरी सम्राट पंडित महादेव प्रसाद मिश्र से सीखी। इस प्रभाव ने उनके सितार वादन को एक अनूठी पहचान दी। सितार वादन की शिक्षा में पोस्ट ग्रेजुएट और गोल्ड मेडल के साथ संगीत प्रवीण देवव्रत मिश्र ICCR के सूचीबद्ध कलाकार भी हैं। उन्होंने भारत और विदेशों में कई प्रतिष्ठित मंचों पर सितार वादन की सफल प्रस्तुतियां दी हैं। इनमें तानसेन संगीत समारोह, संकट मोचन संगीत समारोह, सप्तक संगीत समारोह और अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला प्रमुख हैं। उन्होंने अमेरिका, कनाडा, स्पेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी जैसे कई देशों में अपने सितार वादन से संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध किया है। देवव्रत मिश्र को नेशनल यूथ फेस्टिवल अवार्ड, स्वरमणि अलंकरण, काशी रत्न संगीत शिखर सम्मान, BHU कौस्तुभ सम्मान, जर्मन बेस्ड जैज क्रिटिक अवार्ड और वर्ल्ड म्यूजिक विजनरी अवार्ड USA से सम्मानित किया गया है। आज के कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार प्रशांत मिश्र। देवव्रत मिश्र अपने सितार वादन का आरंभ राग जोग से कर रहे हैं। विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक टुनाइट वी ब्रिंग यू सितार रिसाइटल बाय देवव्रत मिश्रा। Born into distinguished music gharana of Varanasi, Devvrat Mishra received initial music training from his mother Pramila Mishra and underwent formal training in the sitar under the guidance of his father Padmashri Pandit Shivnath Mishra. An A-grade artist of Akashvani, Devvrat Mishra received distinctive lesson of Thumri tradition and vocal style of the Banaras gharana from his grandfather, the great Thumri exponent Pandit Mahadev Prasad Mishra, an influence that lent a unique identity to his sitar playing. Postgraduate in sitar and Sangeet Praveen with gold medal, Devvrat Mishra is also an empaneled artist of ICCR. He has delivered successful sitar performances on numerous prestigious platforms, both in India and abroad. Notable among these are the Tansen Sangeet Samaro, Sankat Mochan Sangeet Samaro, Saptak Sangeet Samaro, and the International Dhrupad Mela. He has captivated audiences with his sitar.

0: आप सुन रहे थे राग जोग। देवव्रत मिश्र अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग गोरख कल्याण में सितार वादन। मध्य लय रूपक ताल में निबद्ध है और द्रुत तीन ताल में है।
1: यू जस्ट हर्ड राग जोग। देवव्रत मिश्रा इज नाउ प्रेजेंटिंग सितार रिसाइटल इन राग गोरख कल्याण। मध्य लय इज सेट टू रूपक ताल एंड द्रुत इज इन तीन ताल।

0: राग गोरख कल्याण के बाद देवव्रत मिश्र अपने सितार वादन का समापन दादरा ताल में निबद्ध राग मिश्र पीलू में धुन से कर रहे हैं।
1: आफ्टर राग गोरख कल्याण, देवव्रत मिश्रा इज कंक्लूडिंग हिज सितार रिसाइटल टुनाइट विद धुन कंपोज्ड इन राग मिश्र पीलू सेट टू दादरा ताल।

ये थी सितार पर प्रस्तुत राग मिश्र पीलू में धुन। कलाकार थे देवव्रत मिश्र। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आपके साथ तबले पर संगति की प्रशांत मिश्र ने। आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र पर रिकॉर्ड

0: इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
1: दिस वॉज धुन इन राग मिश्र पीलू प्लेड ऑन सितार बाय देवव्रत मिश्रा इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक अकंपनिंग हिम ऑन तबला वॉज प्रशांत मिश्रा अर्लियर रिकॉर्डेड एट आकाशवाणी वाराणसी दिस प्रोग्राम केम टू यू फ्रॉम दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।
2: अभी आप सुन रहे थे हमारे दिल्ली केंद्र से संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। रात के 11 बजे हैं। लीजिए सुनिए हमारे
3: 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा कर दी गई है। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
4: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, इट विल मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है। इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, बट इट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में।
3: ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई। राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नबीदास और रूपाश्री वरकरी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर को और वेकोम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा कांडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामोल गातात्र रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई।
5: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी वस्त्राल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और शवों को बरामद किया। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटना स्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने भी हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग से बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना यूबीटी सांसदों के विलय को भी मंजूरी दे दी। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। राजस्व आसूचना निदेशालय DRI ने देश में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए। इसके अंतर्गत विदेश से तस्करी कर लाया गया 15 किलोग्राम सोना और 20 किलोग्राम चांदी जब्त की गई, जिसकी कुल कीमत लगभग 22 करोड़ रुपए है। साथ ही 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा भी जब्त की गई। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन अभियानों में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर परिणाम पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार CBSE ने इस वर्ष से 10वीं कक्षा के लिए 2 बोर्ड परीक्षाएं शुरू की थी।

ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की पवित्र अड़प्पा बीजे अनुष्ठान आज पुरी के श्री गुंडीचा मंदिर में पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न हो रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच देर रात 2:30 बजे से अमेरिका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: PV Sidhu has reached the women's singles final of the Japan Open in Tokyo today. She entered the final after her opponent and world number 4, Chen Yufei of China, retired during the second game of the match. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की संध्याकालीन सभा यहीं संपन्न होती है। प्रातः 5:53 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक अनुमति दीजिए। जय हिंद।

0: PV Sidhu has reached the women's singles final of the Japan Open in Tokyo today. She entered the final after her opponent and world number 4, Chen Yufei of China, retired during the second game of the match. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की संध्याकालीन सभा यहीं संपन्न होती है। प्रातः 5:53 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक अनुमति दीजिए। जय हिंद।